0: आज की कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट
1: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
1: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए व्यक्तित्व के साथ में। जागृति जी, आज हम बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन समाज, राष्ट्र और मानव कल्याण के चिंतन को समर्पित किया। उनका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, हर वर्ष 25 सितंबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। वे एक विचारक, लेखक, संगठनकर्ता और राष्ट्र सेवक के रूप में जाने जाते थे। उनका जीवन सादगी, अनुशासन और समाज के अंतिम व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ा रहा।
0: जी हाँ,
1: उनका चिंतन विशेष रूप से अत्योदय और एकात्म मानवतावाद की अवधारणाओं के लिए जाना जाता है।
0: बिल्कुल।
1: आज के कार्यक्रम में हम उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके सामाजिक, राजनीतिक जीवन और उनके विचारों और वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता को समझने का प्रयास करेंगे।
0: बिल्कुल अंजलि, भारत का इतिहास ऐसे महान व्यक्तित्व से भरा हुआ है जिन्होंने अपने जीवन को व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के बजाय समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऐसे ही महान चिंतक, लेखक, संगठनकर्ता और राष्ट्र सेवक थे, जैसा कि आपने बताया।
1: बिल्कुल।
0: उनका जीवन सादगी, ईमानदारी, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण का उदाहरण रहा है। श्रोताओं, उन्होंने भारतीय समाज की परिस्थितियों को समझते हुए ऐसी विकास दृष्टि प्रस्तुत की जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण को विशेष महत्व दिया गया। जन्म और बाल्यकाल की बात करें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय और माता का नाम राम प्यारी देवी था। बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया, इस कारण उनका बचपन अनेक कठिन परिस्थितियों में बीता। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा के प्रति अपनी रुचि बनाए रखी। वे बचपन से ही पढ़ाई में बहुत प्रतिभाशाली थे। कठिन परिस्थितियां उनके रास्ते में बाधा बनी, लेकिन उन्होंने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से आगे बढ़ना जारी रखा।
1: बिल्कुल जागृति जी, उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत व्यक्ति को आगे बढ़ने की शक्ति देती है।
0: बिल्कुल।
1: दीनदयाल उपाध्याय पढ़ाई में अत्यंत मेधावी थे। उनका झुकाव केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं था, वे इतिहास, समाज, संस्कृति, साहित्य और दर्शन जैसे विषयों में भी रुचि रखते थे।
0: बिल्कुल।
1: उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान समाज और देश की परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया। उनकी सादगी उनके व्यक्तित्व की विशेष पहचान थी। वे दिखावे की बजाय विचार और कार्य को अधिक महत्व देते थे।
0: जी हाँ।
1: उन्होंने अपने जीवन में व्यक्तिगत सुख सुविधाओं की अपेक्षा सामाजिक कार्य और राष्ट्र सेवा को प्राथमिकता थी। अगर यही बात करें राष्ट्र सेवा की ओर उनके कदम कैसे बढ़े, तो श्रोता साथियों, युवा अवस्था में ही दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक और राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। उन्होंने संगठन के माध्यम से जागृति जी समाज में काम करना शुरू किया। उनका विश्वास था कि किसी भी बड़े परिवर्तन के लिए केवल व्यक्तिगत प्रयास पर्याप्त नहीं होता, लोगों को संगठित करके सामूहिक रूप से कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से संपर्क किया और संगठनात्मक कार्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
0: बिल्कुल।
1: उनकी कार्यशैली में अनुशासन, सादगी और निरंतर मेहनत प्रमुख थी।
0: जी हाँ अंजलि, जैसा कि उनकी कार्यशैली के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनकी कार्यशैली बहुत सरल थी। वे सामान्य लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझते थे और उनका मानना था कि राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल बड़े शहरों में नहीं बल्कि गांव, किसानों, श्रमिकों और सामान्य नागरिकों में भी निहित है।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही जैसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो दीनदयाल उपाध्याय ने कई स्थानों पर शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए अध्ययन किया। वे मेधावी विद्यार्थी थे और शिक्षा के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी उनकी रुचि बढ़ती गई। अंजलि, विद्यार्थी जीवन में ही उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ। संघ के विचारों और अनुशासन ने उनके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। आगे चलकर उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें एकात्मक मानवतावाद क्या है, तो श्रोता साथियों, दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन को समझने के लिए एकात्म मानववाद को समझना महत्वपूर्ण है। सरल भाषा में कहा जाए तो उनके विचार में मनुष्य को केवल आर्थिक आवश्यकताओं

0: वाला व्यक्ति नहीं माना जाना चाहिए। मनुष्य के शरीर के साथ उसका मन, बुद्धि और आत्मिक पक्ष भी होता है।
1: बिल्कुल।
0: इसलिए विकास का अर्थ केवल अधिक पैसा, अधिक उत्पादन या अधिक भौतिक सुविधाएं नहीं होना चाहिए। विकास ऐसा हो जिसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक पक्षों का भी ध्यान रखा जाए।
1: जी हाँ।
0: ये विचार आज भी हमें यह सोचने का अवसर देता है श्रोता साथियों कि विकास के साथ मानव मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारी को कैसे जोड़ा जाना चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि। तो जैसा कि आपने एकात्मक मानववाद का विचार बताया हमारे श्रोता साथियों को, तो आगे भी पंडित दीनदयाल जी के जीवन परिचय से हमारे श्रोता साथियों को हम अवगत करवाएंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि जागृति जी गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे थे, यही बात करें अंत्योदय की भावना की, तो श्रोता साथियों, दीनदयाल उपाध्याय के विचारों में अंत्योदय का विशेष स्थान रहा।
1: बिल्कुल,
0: अंत्योदय का सरल अर्थ है समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय और कल्याण। कल्पना कीजिए श्रोता साथियों कि किसी गांव में सड़क बन गई, बिजली आ गई, पानी की सुविधा आ गई, लेकिन गांव का सबसे गरीब परिवार इन सुविधाओं से वंचित रह गया।
1: बिल्कुल,
0: तो क्या हम कह सकते हैं कि विकास सब तक पहुँच गया? यही प्रश्न अंत्योदय की सोच को महत्वपूर्ण बनाता है। समाज के विकास का आंकलन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए जागृति जी कि कितने लोगों को लाभ मिला, बल्कि यह भी होना चाहिए और ये भी चीज देखनी चाहिए कि जो व्यक्ति सबसे कमजोर स्थिति में है, क्या वह भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ पाया है। क्योंकि विकास की यात्रा तब पूरी होती है श्रोता साथियों, जब रास्ते के आखिरी व्यक्ति तक भी अवसर और सम्मान पहुंचता है।
1: जी हाँ अंजलि, जैसे कि हम बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, तो वो सादगी और ईमानदारी के भी प्रतीक थे। दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन अत्यंत सादा था। उन्होंने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को कभी प्राथमिकता नहीं दी। वे साधारण वस्त्र पहनते थे और सामान्य जीवन जीते थे। उनका व्यक्तित्व इस बात का उदाहरण था श्रोताओं की बड़ा बनने के लिए भौतिक साधनों की नहीं बल्कि उच्च विचारों, उच्च चरित्र और सेवा भावना की आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल,
1: वे अपने व्यवहार में विनम्र और दूसरों के प्रति संवेदनशील रहते हैं। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय केवल राजनेता ही नहीं बल्कि एक अच्छे लेखक और चिंतक भी थे। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर लेखन किया। वे भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्यों को समझने तथा उन्हें आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास करते थे।
0: बिल्कुल,
1: श्रोताओं, उनकी रचनाओं और भाषणों में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक समरसता, आत्मनिर्भरता और मानव कल्याण जैसे विषय प्रमुख रहे हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, भारत की बड़ी आबादी लंबे समय से गाँव में रहती आई है। कृषि हमारे ग्रामीण जीवन की महत्वपूर्ण आधारशिला है। दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन भारतीय परिस्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास की बात करता था।
1: बिल्कुल,
0: आज जब हम किसानों की आय, सिंचाई, ग्रामीण रोजगार, स्थानीय उत्पादन और गांवों की आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि विकास का लाभ वास्तव में ग्रामीण परिवारों तक किस तरह पहुँचे। गाँव में यदि किसान को उचित जानकारी, बाजार तक पहुँच, सिंचाई तकनीक और आवश्यक सुविधाएं मिले तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। इसी तरह स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योग, हस्तशिल्प, पशुपालन और अन्य रोजगार के अवसर बढ़ाना भी ग्रामीण विकास में योगदान दे सकता है। सामुदायिक जीवन में दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को एक महत्वपूर्ण सवाल से जोड़ा जा सकता है, वह है कि क्या गांव का विकास गांव के लोगों की भागीदारी के बिना पूरा हो सकता है? क्योंकि श्रोता साथियों, गांव के विकास में ग्राम सभा की भूमिका महत्वपूर्ण है। स्थानीय समस्याओं को पहचानना, प्राथमिकता तय करना, उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करना समुदाय की भागीदारी से अधिक प्रभावित हो सकता है। यदि गांव के लोग मिलकर जल संरक्षण, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य स्थानीय मुद्दों पर काम करें तो विकास की प्रक्रिया अधिक मजबूत हो सकती है।
1: जी हाँ अंजलि, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन बहुत लंबा नहीं रहा। 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय के पास उनका निधन हुआ। उनकी मृत्यु की परिस्थितियों को लेकर लंबे समय तक चर्चा और जांच होती रही। उनके असामयिक निधन से देश के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। श्रोताओ, आज भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर चर्चा होती है, विशेष रूप से अंत्योदय, आत्मनिर्भरता, सामाजिक समरसता, ग्रामीण विकास और मानव केंद्रित विकास जैसे विचार वर्तमान समय में भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज जब विकास की चर्चा केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं रह सकती, तब ये विचार महत्वपूर्ण हो जाता है अंजलि कि विकास का वास्तविक लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी दृष्टि से दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को समझा जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन हमें बताता है श्रोताओं कि कठिन परिस्थितियां व्यक्ति के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकती हैं।
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने अपने जीवन में सादगी को अपनाया, संगठन को मजबूत किया और समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण को महत्व दिया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी अंजलि की विचार और व्यवहार में सामंजस्य हो। उन्होंने जो कहा उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। उनका जीवन राष्ट्र सेवा, अनुशासन, त्याग और सामाजिक जिम्मेदारी की प्रेरणा देता है। किसी भी राष्ट्र की सच्ची प्रगति तब होती है श्रोता साथियों, जब विकास की रोशनी उस व्यक्ति तक भी पहुंचे जो सबसे पीछे खड़ा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन इसी भावना को समझने और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान तथा कल्याण के लिए काम करने की प्रेरणा देता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, दीनदयाल उपाध्याय का व्यक्तिगत जीवन बहुत सादगीपूर्ण था। उन्होंने अपना जीवन व्यक्तिगत संपत्ति और सुख सुविधाएं जुटाने के बजाय सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित किया। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि बड़ा काम करने के लिए हमेशा बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं होती। ईमानदारी, अनुशासन, मेहनत और उद्देश्य के प्रति समर्पण व्यक्ति को प्रभावशाली बनाते हैं। इसलिए कहा गया है कि सादगी व्यक्ति को छोटा नहीं बनाती, बल्कि उसके व्यक्तित्व को दिखावे से ऊपर उठाती है।
1: जी हाँ, तो जैसा कि अंजलि, आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और अब देख पा रहे हैं कि समय उजाला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे, पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन परिचय को लेकर, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागड रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। लेकर हाजिर हूँ श्रोताओं कार्यक्रम कथा कहानी को एक नई प्रेरणादायी शिक्षा प्रद कहानी के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कहानी का शीर्षक है हमारा मानक समय यानी कि IST कैसे तय होगा। श्रोता साथी, युवाओं के लिए विज्ञान भूगोल और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर बहुत रोचक तरीके से समझाया जा सकता है हमारा मानक समय। जैसे कि हमें समय की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले इसको लेकर हम बात करें तो यात्रा, व्यापार, स्कूल, कार्यालय और संचार के लिए एक सामान्य जरूरी है समय। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, ये हम सभी जानते हैं। देशांतर रेखाओं के बारे में बात करें तो पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों का समय उनके देशांतर के अनुसार बदलता है। 360 डिग्री और 24 घंटे का संबंध यानी कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, इसलिए 15 डिग्री देशांतर का अंतर लगभग एक घंटे के समय अंतर के बराबर होता है। 0 डिग्री देशांतर को आधार मानकर

विश्व के समय क्षेत्र की गणना की जाती है, जिसे ग्रीनविच का महत्व कहते हैं। भारत की मानक देशांतर की बात करें तो भारत ने 82°30' पूर्वी देशांतर को मानक समय का आधार बनाया है। IST क्या है इसके बारे में बताएं तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारतीय मानक समय। श्रोताओ, IST और UTC, IST UTC में से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मिर्जापुर का महत्व 82°30' पूर्वी देशांतर भारत के मिर्जापुर क्षेत्र के पास से गुजरता है, इसीलिए इसे भारतीय मानक समय के आधार के रूप में चुना गया है। एक देश एक मानक समय, भारत में पूरे देश के लिए आधिकारिक रूप से एक ही मानक समय रखा गया है। पूर्व और पश्चिम के अंतर के बारे में बताएं तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय राजस्थान या गुजरात की तुलना में काफी पहले हो सकता है, लेकिन घड़ी के आधिकारिक समय समान रहता है। युवाओं के लिए सीख यही है कि घड़ी का समय केवल अंक नहीं बल्कि विज्ञान, भूगोल और देश की व्यवस्था से जुड़ा विषय है। तो दोस्तों, ये तो कुछ मुख्य बिंदु थे इस कार्यक्रम के माध्यम से। हमने आपको बताया हमारा मानक समय IST कैसे तय होता है। आगे इसकी कहानी के बारे में बताऊंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज की कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का शीर्षक है हमारा मानक समय। श्रोता साथियों, कहानी है 5 घंटे 30 मिनट के राज को लेकर। रवि नाम का एक लड़का है। रवि को हमेशा समय की बड़ी चिंता रहती थी। वो सुबह स्कूल जाने से पहले घड़ी देखता और कहता, अरे 7 बज गए, अब जल्दी करनी होगी। एक दिन भूगोल की कक्षा में शिक्षक ने पूछा, बच्चों क्या तुम्हें पता है कि हमारे देश में घड़ी का समय तय कैसे होता है? रवि ने तुरंत हाथ उठाया, कहा, सर घड़ी तो घड़ी बनाने वाली कंपनी तय करती होगी। पूरी कक्षा हंस पड़ी। शिक्षक भी मुस्कुराए और बोले, नहीं रवि, घड़ी बनाने वाली कंपनी घड़ी बनाती है, लेकिन मानक समय विज्ञान और भूगोल के आधार पर तय होता है। रवि की उत्सुकता और बढ़ गई। श्रोता साथियों, टीचर ने बोर्ड पर पृथ्वी का चित्र बनाया। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी लगभग हर 15 डिग्री देशांतर घूमने में 1 घंटे का समय लेती है। ये रवि के टीचर ने बताया। अब रवि के टीचर ने बोर्ड पर लिखा 0 डिग्री, कह रहे हैं कि ये है ग्रीनविच से गुजरने वाली प्रधान मध्यान्ह रेखा। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशांतर की गणना का आधार माना जाता है। फिर उन्होंने भारत का नक्शा बनाया और 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर निशान लगाया। भारत ने इसी देशांतर को अपना मानक देशांतर माना है और इसी के आधार पर पूरे भारत का मानक समय निर्धारित होता है। साथ ही तभी रवि ने पूछा, लेकिन सर भारत तो बहुत बड़ा देश है, अलग अलग जगहों पर सूरज अलग अलग समय पर निकलता होगा। तभी शिक्षक ने कहा, बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय राजस्थान की तुलना में काफी पहले हो जाता है, लेकिन हर राज्य अपनी स्थानीय सूर्य स्थिति के अनुसार अलग घड़ी चलाए तो देश में बहुत भ्रम पैदा हो जाएंगे। अब उसे मानक समय समझ में आ रहा था। तभी शिक्षक ने कहा, इसीलिए पूरे देश के लिए एक समान आधिकारिक समय रखा गया है IST, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। रवि ने पूछा, और IST दुनिया के समय से कितना अलग है? तभी सर ने जवाब दिया, IST UTC से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तभी कक्षा में एकदम सन्नाटा था श्रोताओं, लेकिन रवि के चेहरे पर मुस्कान थी। वो बोला, अब समझ आया सर, जब हम घड़ी में समय देखते हैं तो उसके पीछे पृथ्वी का घूमना, देशांतर रेखाएं और गणित सब काम कर रहे होते हैं। तभी रवि के शिक्षक ने कहा, बिल्कुल, यही विज्ञान की खूबसूरती है। जो चीज हमें रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत साधारण दिखाई देती है, उसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। उस दिन रवि घर गया और अपनी छोटी बहन से बोला, तुम्हें पता है हमारी घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, ये हमें पृथ्वी की गति की कहानी भी सुनाती है। तो दोस्तों, कहा गया है कि समय केवल घड़ी की सुइयों का चलना नहीं, बल्कि पृथ्वी की गति और मानव व्यवस्था का सुंदर समन्वय है। हम सभी के जीवन में समय का बहुत महत्व है। सुबह स्कूल जाने का समय, कार्यालय जाने का समय, ट्रेन पकड़ने का समय, परीक्षा का समय या किसी कार्यक्रम का समय, हर काम किसी न किसी समय से जुड़ा होता है। हम अपनी घड़ी देखकर आसानी से बता देते हैं कि अभी कितने बजे हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि भारत में हमारी घड़ी का समय आखिर तय कैसे होता है? भारत में जिस आधिकारिक समय का उपयोग किया जाता है उसे भारतीय मानक समय कहते हैं। ये समय किसी एक शहर की घड़ी देखकर मनमाने ढंग से तय नहीं किया जाता दोस्तों, जैसा कि अभी रवि के सर ने बताया था, बल्कि इसके पीछे पृथ्वी की गति, देशांतर रेखाएं, खगोलीय गणना और राष्ट्रीय आवश्यकता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो साथियों, ये थी कहानी हमारा मानक समय। आगे भी इससे जुड़ी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

के बाद हम फिर से रुक करते हैं श्रोता साथियों कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसे हम बात कर रहे थे, कहानी मैंने आपको बताई थी कि कैसे तय होता है हमारा मानक समय, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी श्रोता साथियों कि कल्पना कीजिए कि भारत के हर शहर में अलग अलग समय हो। कोई शहर कहे कि अभी 10 बजे हैं, जबकि दूसरे शहर उसी क्षण 10:30 या 11 बजे हो। ऐसी स्थिति में रेल, हवाई यात्रा, दूरसंचार, स्कूल, कार्यालय, बैंक और अन्य संस्थाओं के संचालन में बहुत सारी परेशानी हो सकती है। इसलिए बड़े देशों में एक या अधिक मानक समय निर्धारित किए जाते हैं ताकि एक निश्चित क्षेत्र के लिए घड़ी का समय समान रखा जा सके। साथ ही पृथ्वी का घूमना और समय को लेकर हम आपको बताएं तो समय की गणना को समझने के लिए हमें पृथ्वी की गति को समझना बहुत जरूरी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी को लगभग 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाने में समय लगता है। पृथ्वी का पूरा गोलाकार चक्कर 360 डिग्री का होता है। इससे गणित का एक सरल संबंध सामने आता है, 360 डिग्री भाग्या 24 घंटे बराबर 15 डिग्री प्रति घंटा, अर्थात लगभग 15 डिग्री देशांतर का अंतर एक घंटे के समय अंतर के बराबर माना जाता है। इसी कारण पृथ्वी पर अलग अलग हिस्सों में सूर्य के दिखाई देने का समय भी अलग अलग होता है। साथ ही देशांतर रेखाओं की भूमिका को लेकर हम आपको बताएं तो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। इनके माध्यम से पृथ्वी पर किसी स्थान की पूर्व पश्चिम स्थिति निर्धारित की जाती है। 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आधार रेखा माना जाता है, जिसे प्रधान मध्यान रेखा कहा जाता है। ये इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है। किसी स्थान का देशांतर जितना पूर्व की ओर होगा, वहाँ स्थानीय सौर समय उतना ही आगे होगा। पश्चिम की ओर जाने पर समय पीछे हो जाता है। भारत का क्षेत्रफल पूर्व से पश्चिम तक काफी बड़ा है, इसलिए भारत के लोग अलग अलग हिस्सों में स्थानीय सौर समय में अंतर पाया जाता है। भारत ने पूरे देश के लिए एक मानक समय रखने के लिए 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को मानक देशांतर के रूप में अपनाया है, और ये देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र के पास से गुजरता है। इसी मानक देशांतर के आधार पर भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको मानक समय के बारे में बताया। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हमारी घड़ी में दिखाई देने वाला समय वास्तव में एक लंबी वैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, 360 डिग्री का विभाजन, देशांतर रेखाएं 0 डिग्री प्रधान मध्यान रेखा और भारत का 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, ये सभी मिलकर हमारे मानक समय की व्यवस्था को समझने में मदद करते हैं। भारत का IST UTC से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, और पूरे देश में आधिकारिक समय के रूप में उपयोग किया जाता है। इसलिए श्रोताओं, अगली बार जब घड़ी में समय देखे तो केवल घंटे और मिनट न देखे। याद रखे कि उस समय के पीछे पृथ्वी की गति, भूगोल, गणित और वैज्ञानिक सोच की पूरी कहानी छिपी है। अंत में आपसे कहना चाहेंगे कि समय को समझिए, समय का सम्मान कीजिए और समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि सही समय पर उठाया गया एक छोटा कदम भी भविष्य की बड़ी सफलता की शुरुआत बन सकता है। कहा गया है कि घड़ी की हर टिक टिक कहती है समय अनमोल है, इसे व्यर्थ न जाने दो। इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। विदा लेने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज जो कहानी मैंने आपको सुनाई मानक समय को लेकर, वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी वागर रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल दे सकते हैं हमारे मेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी एक नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार।

भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में, जिसे आप सभी सुन रहे हैं आपके अपने सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि हम आपका पसंदीदा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की को लेकर जब भी हाजिर होते हैं तो आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियाँ जो आपके मन में अच्छे विचारों के बीज बोती है, साथ ही आपको कुछ नया भी सिखाती है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर हाजिर हुई हूँ। बातें हम कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों आज ढेर सारी करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियाँ तो आती है जब हमें ऐसा लगने लगता है कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, या फिर जब आसान रास्ता और सही रास्ता हमारे सामने होता है। ऐसे समय में बच्चों हमारे निर्णय ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। तो आज हम आपके लिए कार्यक्रम के माध्यम से कुछ बेहद प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आए हैं। पहली कहानी जो है वो हमें ये सिखाएगी कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, और दूसरी कहानी हमें ये बताएगी कि ईमानदारी की ताकत किसी भी धन दौलत से बड़ी होती है। तो बच्चों, बातें ढेर सारी हम करेंगे कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत के साथ हम आपको पहले मनोरंजन करवाते हैं, तो पहले आइए सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में आपकी अपनी दीदी कशिश दीदी के।

बच्चों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से मैं स्वागत करती हूँ कार्यक्रम बात नन्ही दिलों की में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि आज के इस कार्यक्रम में हमारी बेहद महत्वपूर्ण दो कहानियाँ रहने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहली कहानी जो होगी वो हमें बताएगी मेहनत और आत्मविश्वास के बारे में, यानी कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए बच्चों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली कहानी। कहानी का नाम है छोटा दीपक और बड़ा सपना। अगर इस कहानी के बारे में मैं आपको बताऊं, तो एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे बच्चों। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। गांव में एक छोटा सा सरकारी स्कूल भी था जहां दीपक पढ़ने जाया करता था। दीपक पढ़ाई में बहुत होशियार था दोस्तों, लेकिन उसके पास पढ़ने के लिए अच्छी किताबें नहीं थी, क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कई बार तो बच्चों वो अपने दोस्तों से किताबें मांगकर पढ़ता था। एक दिन क्या हुआ कि स्कूल में शिक्षक ने बच्चों से पूछा कि तुम सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। किसी ने डॉक्टर कहा तो किसी ने पुलिस अधिकारी बनने की चाह रखी, तो किसी बच्चे ने ये कहा कि गुरुजी मैं शिक्षक बनना

चाहता हूँ। लेकिन वही जब दीपक की बारी आई ना बच्चों, तो उसने कहा कि मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ सर। ये सुनकर कक्षा के बहुत सारे बच्चे हंसने लगे और कहने लगे, अरे जिसके पास नई किताबें तक नहीं है वह वैज्ञानिक कैसे बन सकेगा। बच्चों ये बात दीपक को बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस दिन उसने अपने मन ही मन में ये तय कर लिया था कि वह अपने सपने को जरूर पूरा करेगा और एक अच्छा वैज्ञानिक बनकर दिखाएगा। अब दोस्तों वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा था। स्कूल से लौटकर वह घर के कामों में माता पिता की मदद करता और फिर देर रात तक पढ़ाई करता। गांव में बिजली की समस्या भी बनी रहती थी बच्चों, कई बार घंटों बिजली नहीं आती थी। ऐसे में दीपक लालटेन की रोशनी से पढ़ता था। उसके शिक्षक उसकी लगन देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी कुछ किताबें दीपक को दे दी। धीरे धीरे दीपक की मेहनत रंग लाने लगी क्योंकि वह मेहनत कर रहा था। फिर उसने जिला स्तर की छात्रवृत्ति परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त कर लिया। अब उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए आर्थिक सहायता भी मिलने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। दीपक ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और विज्ञान के क्षेत्र में वह आगे बढ़ता गया। एक दिन क्या हुआ बच्चों, वही दीपक जो कभी लालटेन की रोशनी में पढ़ता था, आज वह देश की प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्था में वैज्ञानिक बन चुका था। जब वह वर्षों बाद अपने गांव लौटा तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। वहां वे बच्चे भी मौजूद थे जो कभी उस पर हंसा करते थे। गांव में दीपक के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसे मंच पर बुलाया गया। बच्चों मंच पर दीपक ने जाके लोगों से कहा कि सपने देखने का अधिकार हर किसी को है। सपने बड़े हो या छोटे फर्क नहीं पड़ता, केवल हमारा विश्वास बड़ा हो या छोटा ये फर्क पड़ता है। तो बच्चों ये थी हमारी छोटी सी कहानी, छोटा दीपक और बड़ा सपना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारे अंदर मेहनत और आत्मविश्वास है ना बच्चों, तो हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप भी बच्चों कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, आपका भी कुछ सपना है, तो आपको भी दीपक की तरह मेहनत करनी चाहिए। लोग तो कहेंगे, लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, क्योंकि उन्हें आपके आत्मविश्वास और आपकी मेहनत का पता नहीं होता है। इसलिए बच्चों खूब मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचिए। इन्हीं बातों के साथ, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में मेरी आपसे पहली कहानी पूरी हो गई और आगे अब मैं आपको दूसरी कहानी के बारे में बताऊंगी, तो दूसरी कहानी की ओर हम जरूर बढ़ेंगे साथियों। लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो बच्चों आप बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में, सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: बच्चों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हुए मैं बढ़ना चाहूंगी हमारी अगली कहानी की ओर। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले हम दीपक की और उसके सपने की कहानी के बारे में जाना था कि किस प्रकार से दीपक की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर भी उसने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने पर वह ध्यान दे रहा था, जिसके कारण वो एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक बना। और जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उसके लिए तालियां बजा रहे थे। श्रोता साथियों, तो गीत से पहले जैसा कि दीपक की कहानी तो हमारी पूरी हो गई थी, अब यहीं बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। बच्चों, हमारी दूसरी कहानी का नाम है ईमानदारी का अनमोल पुरस्कार। ये कहानी शुरू होती है कुछ इस तरीके से, जैसे कि एक नगर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वो स्वभाव से काफी सरल और ईमानदार था। बच्चों, एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे सड़क के किनारे पर एक बटुआ मिला। उसने बटुआ उठाकर देखा तो उसमें काफी पैसे पड़े थे बच्चों, और कुछ जरूरी कागजात भी थे। आरव के मन में एक पल के लिए विचार आया कि इतने पैसों से तो वो अपनी सारी पसंद की चीजें खरीद सकता है, लेकिन अगले ही क्षण उसे अपने पिता की बात याद आई। बच्चों, आरव के पिता उससे कहते थे कि बेटा आरव, मेहनत से कमाया हुआ छोटा धन भी अमूल्य होता है और गलत तरीके से मिला बड़ा धन भी बेकार होता है। और ये बात आरव को अच्छी तरीके से याद थी। जैसे ही उसे अपने पिता की बात याद आई, वो उस बटुए को लेकर घर पहुंचा। उसने उस बटुए के बारे में अपने माता पिता को सारी बात बताई। बच्चों, बटुए में एक पहचान पत्र भी था जिसमें उसके मालिक का पता लिखा हुआ था। अगले दिन क्या हुआ, आरव अपने पिता के साथ उस व्यक्ति के घर पहुंचा। वो व्यक्ति काफी परेशान था क्योंकि उसके बटुए में बहुत जरूरी दस्तावेज उसके पड़े थे। बच्चों, जब आरव ने बटुआ लौटाया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह व्यक्ति काफी खुश हुआ। उस व्यक्ति ने आरव से कहा कि बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी, मैं तुम्हें इनाम देना चाहूंगा। बच्चों, उन्होंने आरव को इनाम के रूप में पैसे देने चाहे, लेकिन आरव ने विनम्रता से कहा कि अंकल, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, मुझे किसी भी प्रकार का कोई इनाम नहीं चाहिए। बच्चों, ये बात सुनकर वो व्यक्ति काफी प्रभावित हुआ आरव से, और ये बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। कुछ दिनों बाद स्कूल के वार्षिक समारोह में आरव को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य ने कहा, पढ़ाई में अच्छे अंक लाना महत्वपूर्ण है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना उससे काफी महत्वपूर्ण होता है। बच्चों, आरव को उस दिन सम्मान मिला वो किसी भी धन से अधिक मूल्यवान था उसके लिए। हम देखते हैं कि ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को लोगों के दिलों में सम्मान दिलाता है, जैसा सम्मान आरव को मिला। पैसा कभी कभी खत्म हो सकता है बच्चों, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर साथ रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन में ईमानदारी को तो हमेशा साथ में रखना ही चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदार होता है ना बच्चों, वही अच्छा इंसान कहलाता है और लोग उसी पर ही विश्वास करते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की दोनों कहानियाँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन दोनों कहानियों के माध्यम से आज आपको ढेर सारी प्रेरणा मिली होगी बच्चों, क्योंकि इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ही हमारा प्रयास रहता है आपसे कि हम आपको अपने जीवन में और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। तो जैसा कि बच्चों, आज इस कार्यक्रम में मेरी आपसे कहानियाँ पूरी हो चुकी हैं। कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो आगे कार्यक्रम में मैं आपसे करूंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में।
1: चो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाय विडिपाय चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगडुम जगडुम चिकिचकचो।

प्यारे बच्चों, इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम से मैं विदा लेना चाहूंगी। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी कि आज के इस कार्यक्रम में जो दो कहानियां हमारी रही, उनसे हमें बहुत सुंदर संदेश मिले। जैसा कि हमने पहली कहानी के माध्यम से जाना कि कठिन परिस्थितियां सफलता का रास्ता नहीं रोक सकती। यदि हमारे भीतर मेहनत और आत्मविश्वास है तो हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता बच्चों। और दूसरी कहानी आरव की कहानी थी, जिसने हमें ये सिखाया कि ईमानदारी और अच्छे संस्कार जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। ऐसे में बच्चों, आप हमेशा याद रखिए कि हर महान व्यक्ति कभी न कभी एक साधारण बच्चा होता ही है। वो महान बनता है उसके अच्छे विचारों, सही निर्णयों और लगातार प्रयासों से। तो बच्चों, अब से आप भी अपने जीवन में एक अच्छा काम करने का संकल्प ले लीजिए कि आप किसी की मदद करेंगे, हमेशा सच्चाई का साथ देंगे और अपने सपनों की ओर एक कदम जरूर बढ़ाएंगे। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ बच्चों, अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो बच्चों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, हमारा पता है कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, बागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के

आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में कुछ नई प्रेरणादायक कहानियों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दीदी कशिश दीदी को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार बच्चों।

0: सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने दात काढ़ी ने जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकीस आ राज ने अपनावंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नो असली राज। वागुर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें। महिलाओं को दे उनका हक, जमीन पर भी जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

साथियों, जिंदगी में सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। हर उपलब्धि के पीछे लगातार की गई मेहनत होती है। कई बार रास्तों में मुश्किल आती है और मन हारने लगता है, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो मुश्किल समय में भी कोशिश जारी रखता है। इसलिए अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। आज की छोटी कोशिश ही कल की बड़ी सफलता बन सकती है।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारे मेहमान में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। लेकर हाजिर हो चुके हूँ श्रोता साथियों कार्यक्रम हमारे मेहमान को लेकर एक नई शख्सियत के साथ में। आज हमारे कार्यक्रम से नए मेहमान अवश्य जुड़ेंगे, तो आइए सबसे पहले सुन लेते हैं उन्हीं के जीवन की ढेर सारी बातों को। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: धन्यवाद।
0: जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और हमारे सभी श्रोता साथी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम हर रविवार को कार्यक्रम के माध्यम से विशेष अतिथि को जोड़ते हैं, उनके जीवन से रूबरू होते हैं। तो आज जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: जी मैम, मेरा नाम मानसिंह निनामा, ब्लॉक आनंदपुरी तुंद्रावकाई रहने वाला हूँ।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बताया, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका बचपन किस कदर बीता।
1: मैं मेरा बचपन शुरुआत से ही मेरा परिवार है वो खेती से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र में ही रहने वाले हैं पूरा परिवार, और मेरा जन्म ही वहीं सुंदराव में ही हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: और माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, पर खेती पशुपालन और जो भी छोटा मोटा काम है वो संभालते हुए हमें कहीं न कहीं विद्यालय से जोड़ा। और विद्यालय में पहले तो पता नहीं, बस हम पढ़ रहे थे, बस स्कूल जाना, खेलना, वापस आ जाना, इस तरह की प्रक्रिया करते रहते थे। बाकी कोई इतना सारा समझ तो उस दिन नहीं थी, पर धीरे धीरे धीरे माता पिता ने भेजा तो हम विद्यालय में पांचवी तक पढ़ाई लिखाई करने के बाद दूसरे विद्यालय में छठी में एडमिशन कराया। पर माता पिता भी जैसे पढ़े लिखे नहीं थे
0: जी जी,
1: पर चलो उनके मार्गदर्शन, चलो शिक्षा जरूरी है, तो उनके दिमाग में होगा कि नहीं मेरे बेटे को पढ़ाना चाहिए, तो बस पढ़ाई लिखाई मैंने करीबन मेरे गांव के अंदर ही 12वीं तक मैंने पढ़ाई की है सुंदराव के अंदर
0: जी जी।
1: उसके बाद मैंने 12वीं क्लियर कर लिया, फिर माता पिता ने सोचा सही है, ये 12वीं तक तो पूर्ण कर ली है तो क्यों नहीं बेटे को कॉलेज तक भी भेजना चाहिए
0: जी जी।
1: तो मैंने कॉलेज भी पूर्ण किया, नहीं बीए कंप्लीट किया। उसके बाद जब ये होता है कि मैंने बीए कंप्लीट किया है तो कहीं ना कहीं कोई डिप्लोमा की आवश्यकता रहती है, तो मैंने ग्रेजुएशन बीएड किया मैंने, तो वो लगभग 2007-08 में कंप्लीट किया उसको।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बीच में यानी कि वैसे भी गांव के अंदर इतनी सुविधाएं थी नहीं
0: जी जी।
1: जब ये विद्युत की बात आती है तो विद्युत की भी प्रॉब्लम थी, मैंने चिमनी से मैं पढ़ा हूँ, और कहीं ना कहीं हमारा जैसे चारा है घास उसको अपने कमरे के अंदर बिछा देते और ठंड के समय में वहीं से पढ़ लेते थे, ऐसा पूरा गांव का माहौल था, घर का परिवार का। उसके बाद धीरे धीरे धीरे समस्या तो बहुत सारी जैसे रही, विद्युत की रही है, प्लस बाहर आना, बांसवाड़ा आना, तो वो भी जैसे कहीं ना कहीं आवागमन की प्रॉब्लम रही, और माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको भी ज्यादा जैसे इस तरह की खेती को लेकर भरपूर उनको दिमाग में था पर एजुकेशन को लेकर नहीं था।
0: बिल्कुल।
1: तो भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया, देते रहे, क्योंकि शिक्षा जरूरी है, तो कहीं न कहीं पढ़ाए तो
0: काम आएगा,
1: बदलाव करेगा बेटा, हम खेती से जुड़े तो खेती में बदलाव या समाज में, तो ये रहा है। पर इसके बीच में पारिवारिक समस्या भी बहुत बड़ी रही है मेरे सामने। जैसे परिवार, जैसे गांव में, घर में, परिवार के अंदर ही जैसे कहीं न कहीं झगड़ा, इस तरह का दबाव या कमजोर करना, ये भी रहा, पर मैंने कहीं न कहीं हार नहीं मानी है और मैंने अच्छे से उसका मुकाबला करना सीखा।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से आपका जो बचपन है वो रहा, आपने 12वीं तक पढ़ाई की, फिर उसके बाद आपने आगे भी बीए बीएड भी किया है, जैसा कि आप हमें बता रहे हैं, यह सारी जो आपने पढ़ाई की है वो ऐसे गांव से की है जहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, साथ ही आपकी स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि आपको बहुत सारी सुविधाएं मिले और फिर आप पढ़ाई करें। तो जैसा कि आपने आपके पढ़ाई के क्षेत्र के बारे में हमें बताया, तो ये जब पढ़ाई आप करते थे तो आपका क्या जीवन का उद्देश्य था, आपके मन में क्या था, अगर आपको सुविधाएं और कई सारी चीजें मिलती तो आप क्या बनना चाहते थे बड़े होकर?
1: इसमें मैं सोच रहा था कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में तो जैसे मैं पढ़ रहा था तो भी दिमाग में चल रहा था मैं शायद देश के लिए कुछ करूं। तो मैंने ये प्रयास भी 2002 में किया जब आर्मी की भर्ती हो रही थी, उसमें मैंने यानी कि मेरी जिंदगी का पहला कदम है वो रखा था कि 250 लाभार्थी के अंदर दौड़ के अंदर तीसरा स्थान प्राप्त किया।
0: बिल्कुल
1: मकसद वही सोच के क्यों नहीं कि मैं देश की रक्षा के लिए काम करूं, पर मेरी बर्थडे ने सहयोग नहीं किया, उम्र बड़ी तो शायद मुझे उस दिन बाहर आना पड़ा था। मेरा सर्टिफिकेट लेके अंदर गया था तो हो जाएगा यूं करके दिमाग से, लेकिन जब संबंधित अधिकारी देखने के बाद वापस दिया तब मुझे इतना यानी कि निराश हो गया उस दिन, क्योंकि ये पोजीशन ये पद ये देश की गरिमा के लिए नौकरी करता तो मैं बाहर जा रहा हूँ। हताश होके बाहर में वापस सर्टिफिकेट के साथ बाहर निकला था, ये उस दिन मेरा कहीं ना कहीं दुख का कारण था।
0: बिल्कुल ये बहुत बड़ी दुख की बात है क्योंकि हमारा सारी चीजें प्रोसेस अच्छा हो गया लेकिन एक उम्र की वजह से आपकी आर्मी में आपका सिलेक्शन होने से रह गया। तो सर जैसा कि आप बहुत अच्छी बातें हमें बता रहे हैं तो इन सारी चीजों से आप बाहर कैसे निकले, आपने अपने जीवन को कैसे बदला और अभी के समय में आप क्या कर रहे हैं?
1: इसमें अगर उस मोड में वापस जाए तो कहीं ना कहीं दिमाग में यानी कि उपदेश या जो ये कहते हैं कि नहीं मुझे इस मंजिल तक जाना है या मुझे मेरे प्रयास को बंद ही करना चाहिए। निरंतर मैं जब दूसरे उद्देश्य से देखे तो मैंने कहीं ना कहीं समुदाय को देखा उस दिन, जब मेरा समाज किस स्थिति में है, अच्छा वो कमजोर क्यों है, अच्छा उनको कहाँ पे वो पीड़ा या जो यातनाएं रोक रही है, तो उसका मुकाबला करते करते मैंने कहीं ना कहीं इस प्राइवेट सेक्टर को देखा। तो मैंने 10 साल तक तो पीएस स्कूल में बच्चों को शिक्षा के लेकर, जहाँ बच्चे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का स्कूल नहीं था और ऐसे स्तर पे इसी जगह पे विद्यालय चालू किया, फिर मैंने 10 साल तक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाया, फिर वहीं से मैंने ये यानी कि निरंतर प्रक्रिया मेरी चलती रही कि बच्चों को गाइड करना, ये करना, बच्चों के साथ बैठना, अभिभावकों के संपर्क करना और हमारे समाज को दिशा देने की सख्त जरूरत है। मेरे मन में भी ये उगता रहता कहीं ना कहीं मैं चलो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नहीं लेकिन मैं उस सेक्टर में जाके भी मेरी बात को समाज के साथ जुड़ा रहूं।
0: बिल्कुल सर आपने सही कहा। तो अभी के समय में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, अभी आप जो कार्य कर रहे हैं क्या आप उससे संतुष्ट हैं?
1: बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। जब धीरे धीरे इस उम्र तक मैं कहीं ना कहीं बच्चे के साथ महिलाओं के साथ महिलाओं बच्चों के साथ और इस सेक्टर में आने के बाद मुझे ये लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम था इससे हटके कर रहा हूँ और ये लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं एक टीचर बनता था, एक मेढक की तरह कुएं में रहता, पर यहाँ आने के बाद मुझे दिख रहा है कि मैं पूरे संसार में या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विभागों में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो भाषा का फर्क है, कामों का फर्क है, विभाग क्या कर रहे, जो नेता क्या कर रहे, उसमें अपने आप में मेरी भी तरक्की हुई, मैं समझने की कोशिश की है, बोलने की क्षमता विकसित हुई है और मैं कहीं ना कहीं जाता हूँ तो जैसे वाग्धारा परिवार की बात होती है, जैसे कृषिवादी स्वराज संगठन की बात होती है, तो हम अगर एक साथ जुड़ेंगे एक साथ रहेंगे तो संगठन में ताकत रहती है और हम एक साथ मिलकर आगे बढ़ सकते हैं। इससे काफी मेरे लिए भी और परिवार के लिए और हमारे समुदाय के लिए भी कहीं ना कहीं ये एक प्रेरणा का स्रोत है।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। तो अभी के समय में आप समाज में क्या बदलाव लाना चाहते हैं और समाज को किस तरीके से आप प्रेरित करते हैं, जो आपका सपना था आर्मी में जाकर देश की सेवा करना वो क्या आप सामाजिक स्तर पर अभी पूरा कर पा रहे हैं?
1: बिल्कुल, अभी जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से हटते हैं अगर वहाँ नहीं, पर अभी मेरा जुड़ाव जैसे धरातल पे परिवार स्तर से बड़े स्तर तक एक परिवार को रास्ता देना, चाहे हमारी खेती में बदलाव या हमारे पोषण में बदलाव या उस व्यक्तित्व को बदलने के प्रयास, उस मेरे में जो है अगर गुण तो मैं उस समुदाय या व्यक्ति को बदलने के लिए प्रयास करता हूँ तो वो व्यक्तित्व बदलता है या उसके शिक्षा जरूरी है पर उसके साथ संस्कार व्यवहार और मानवता अगर जुड़ती है तो उस शायद परिवार या गांव का बदलाव दिखता है, उसको मैं आज भी सोच रहा हूँ और बदलने की कोशिश कर रहा हूँ।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने आपके जीवन परिचय से हमारे सभी श्रोता साथियों को रूबरू कराया है, तो अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो श्रोता साथी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
1: मेरा तो एक ही इसमें संदेश

0: मैम कि व्यक्ति को बैठना नहीं चाहिए, निरंतर अच्छे विचार के साथ बढ़िया कर्म करते हुए चलना चाहिए और अपने आप व्यक्तित्व को बदलने की आवश्यकता है। अगर खुद अपने विचार और व्यक्तित्व को बदलता है तो शायद सामने वाला भी उसको देख के भी बदल सकता है। तो मेरा तो एक ही जो श्रोता है उनसे निवेदन है कि समाज के अंदर अच्छा काम करे, अच्छा व्यवहार रखे, सबको साथ में लेके चले, संगठित रहे और शिक्षा से जुड़ के नौकरी अलग सीजे पर नौकरी नहीं होने के बाद भी समाज में अपने व्यवहारों को और संस्कारों को ध्यान में रखते हुए समाज को मजबूत स्थिति में लाने के लिए आप तैयार रहें।
1: बिल्कुल, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: धन्यवाद।
1: श्रोता साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में मान सिंह जी नीनामा जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना, अंत में यही कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कि मुश्किल समय जिंदगी का अंत नहीं, एक नया सबक होता है। जब परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती तब हमारा हौसला हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। हर परेशानी हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है, इसलिए कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनसे सीखने की कोशिश करें, क्योंकि याद रखिए रात कितनी भी लंबी हो सुबह जरूर होती है, बस उम्मीद और प्रयास दोनों बनाए रखना जरूरी है। तो आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में हमारे जो मेहमान थे उनकी जीवन की जो बातें थी वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, विदा जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

सोचना कि तुम्हारी लड़ाई खत्म हो गई, क्योंकि जो इंसान अंधेरे से लड़ना सीख जाता है वही रोशनी की कीमत समझता है। और याद रखो,

साथियों, इस गीत के साथ ही अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारे मेहमान से विदा लेती हूँ। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम हमारे मेहमान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपरा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर को कार्यक्रम हमारे मेहमान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिया है ये हुके जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बुनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है जल्दी थकान होना शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी सांस फूलना ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
4: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए
3: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को
4: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं ये सुरक्षा है सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं
3: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी महिलाओं के भूमि अधिकार क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
4: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके
4: जल्दी थकान थावी शारीरिक कमजोरी याददाश्त में कमी श्वास फूलवू आ सब एनीमिया ना लक्षण है
0: होवे भाईन बोनू आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे
4: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है
0: होवे एनीमिया ते की बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी गुड़ बाजरा तिल नींबू ने संतरा गोभी तरबूज आंवला टमाटर नु सेवन करवो सुवे
4: होवे आ सब सावधानी रखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
5: थारी में पासो लावो चूनू हवाद सेहत बनेगा एकदम शानदार बाजरा ज्वार रागी नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू बारती नु खवानो सोड़ो देशी अनाज तकी नातू जोड़ो
4: मोटू अनाज अपनावंगा शरीर ने स्वस्थ राकंगा
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
6: हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में
3: साथियों न हिंसा का रास्ता न झूठ का साथ सत्य और शांति बने जीवन की बात बापू का संदेश दिलों में उतारें मिलजुल कर भारत को बेहतर बनाएं

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
0: स्वीकार करिएगा हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन को अपने नियत समय पर राष्ट्रपति प्रकरण के साथ में। जैसा कि कशिश, पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम में हमने इसी प्रकरण में ढेर सारी बातों को जाना, वहीं
1: हाँ।
0: इन बातों को अगर आगे जाने तो श्रोता साथियों, अस्पृश्य कहलाने वाले करोड़ों लोगों के प्रति देश के अधिकांश वर्ण हिंदुओं का व्यवहार अत्यंत अन्यायपूर्ण और शर्मप्रद था। बहुत से स्थानों पर तो उन्हें मनुष्य में ही नहीं गिना जाता था। गांधी जी ने अस्पृश्यता को हिंदू धर्म का कलंक कहा।
1: बिल्कुल।
0: अपनी उम्र के अंतिम 14 वर्षों तक अपने मुखपत्र को उन्होंने अस्पृश्यों हेतु स्वयं के दिए गए हरिजन नाम के साथ जोड़ा। विशेष रूप से उन्हीं की सेवा के लिए उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। अपने आश्रमों में अस्पृश्यों के गिने जाने वाले मल मूत्र सफाई के काम, मृत पशुओं के चमड़े उतारने और चप्पले जूते बनाने के काम, बुनाई आदि काम करवाए थे। कोचरब आश्रम में आते ही उन्होंने आश्रम में एक अस्पर्श परिवार को रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक बहिष्कार और दूसरी तरफ परिवार को क्लेश सहना पड़ा, ऐसी स्थिति आई थी।
1: बिल्कुल।
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि अनेक स्थानों पर उन्हें सार्वजनिक सभाओं में सनातनियों द्वारा काले झंडे आदि दिखाए गए थे। उनके स्थापित

0: आज तक दलितों को शिक्षण आदि कार्य में सहायता देती है।
1: जी हाँ,
0: राष्ट्र निर्माण में ऊंच नीच के भेद को भुलाने के लिए कशिश उन्होंने जो प्रयास किए उनके परिणाम स्वरूप इस देश से अस्पृश्यता समाप्त तो नहीं हुई परंतु वह अप्रतिष्ठित तो हो ही गई।
1: बिल्कुल अंजलि जी। साथियों, राष्ट्रीय एकता का एक ऐसा ही अन्य प्रयास ये भी हुआ, वह भी अधूरा रहा, वह था सांप्रदायिक सौहार्द का।
0: बिल्कुल,
1: इस प्रयास में अंजलि जी वे पूरे सफल नहीं हुए। अंततः इसी प्रयास में उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया था। ये अधूरा या पूरा सफल प्रयास भी इस देश को एक राष्ट्रीयता प्रदान करने में सहायक ही सिद्ध हुआ था, ऐसा कहा जा सकता है। सांप्रदायिक एकता के प्रयोजन से ही उन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था। साथियों,
0: बिल्कुल,
1: इस आंदोलन को शांतिपूर्ण रखने में वे सफल रहे थे और इसी उद्देश्य से उन्होंने एक बार 21 दिनों के और दो बार आमरण अनशन किए थे। इसके लिए ही उन्होंने नोआखली और बिहार के गांवों में तथा कलकत्ता और दिल्ली जैसे महानगरों में भी प्राणों को खतरे में डालकर शांति स्थापना के प्रयास किए थे। अलबत्ता आखिरी प्रयास में उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई, पर उन्होंने विभाजन को स्वीकार नहीं किया था।
0: बिल्कुल।
1: साथियों, विभाजन के पश्चात देश ने उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया था और विभाजित देश के दूसरे भाग ने भी उनको आदर मान ही दिया था। देश को एक राष्ट्र का रूप देने के लिए गांधी जी को अनेक क्षेत्रों में अनेकानेक प्रकार के प्रयास करने पड़े थे। अंजलि जी, वर्ग, जाति, संप्रदाय, भाषा, लिंग, इन सभी के भेदों को समाप्त करने के लिए उन्होंने जो खास खास प्रयास किए थे उनका उल्लेख श्रोता साथियों हम पहले बता चुके हैं। इन तमाम प्रयासों के पीछे गांधी जी ने जो सूक्ष्म चिंता व्यक्त की थी और अनेक मंद मंतातरों और अनेक परस्पर विरोधी हितों के मध्य भी संतुलन बनाए रखते हुए समग्र के हित में एक समूह के हित को कैसा गुण रखा था,
0: बिल्कुल,
1: उस पर अब विचार करते हैं। संक्षेप में गांधी जी ने देश को राष्ट्रत्व प्रदान करने की प्रक्रिया में कैसे कैसे उपकरणों का उपयोग किया था, उस पर भी हम अब विचार करते हैं।
0: जी हाँ कशिश, गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका से स्वदेश आने के बाद एक वर्ष तक तो घूम घूम कर देश को देखा। वे छोटे बड़े और अलग अलग हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं से मिले। विविध प्रकार की अनेक संस्थाओं में उन्होंने खास तौर से निरीक्षक के रूप में भाग लिया। रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे में उन्होंने हजारों मील की यात्रा की। छोटी छोटी सभाओं से लेकर जहां लाखों का जन समुदाय इकट्ठा होता ऐसे कुंभ मेले में भी उन्होंने हाजिरी थी। वे किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, उद्योगपतियों और राजाओं से मिले। देश के अलग अलग सभी प्रांतों में वे घूमे और सभी भाषाएं बोलने वाले से उन्होंने संपर्क साधा। ऐसा करके उन्होंने देश की परिस्थिति का अनुमान लगाया। श्रोता साथियों, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोगों के साथ उन्होंने देश की स्थिति के बारे में चर्चा परिचर्चा की।
1: बिल्कुल,
0: इस प्रकार सूचनाओं से सुसज्जित होकर उन्होंने देश के नेताओं के विचारों से अपने दक्षिणी अफ्रीकी अनुभव की तुलना की। बाहर से आए नेता के रूप में उन्होंने तटस्थ भाव से निरीक्षण भी किया और अनेक वर्गों और विचारधाराओं के बीच घूम फिर कर भीतर से भी निरीक्षण किया।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के आगे अगर बात करें तो एक वर्ष में उन्होंने पूर्ण तैयारी कर ली थी। साथियों,
0: बिल्कुल,
1: उनका सबसे बड़ा अनुभव सत्याग्रह का था। अनायास ही 1917 से 18 के एक वर्ष में उनके समक्ष सत्याग्रह को अमल में लाने के तीन तीन प्रसंग सामने आए थे। इस अनुभव और तैयारी के आधार पर उन्होंने संपूर्ण देश के समक्ष जो पहला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था वो ऐसे विषय को लेकर था जिसके बारे में पूरे देश में एक समान रोष था और वह था रोलट एक्ट। उन्होंने कार्यक्रम भी ऐसा दिया साथियों जिसमें हिंदू, मुसलमान, स्त्री, पुरुष सब शामिल हो सके। अपने परिवार में वार त्योहार जो करने का उनका अभ्यास था उसे ही संपूर्ण देश के विरोध प्रदर्शन के रूप में करने की उन्होंने राष्ट्र से अपील की थी।
0: बिल्कुल,
1: और वह था उपवास या रोजा। कभी कभी अपने निजी या सामूहिक हित में जो साधन लोग प्रयोग में लाते थे हड़ताल का साधन, उसे उन्होंने एक निश्चित तिथि को पूरे राष्ट्र के प्रतिकार स्वरूप काम में लाने का सुझाव दिया।
0: बिल्कुल।
1: वहीं अंजलि जी, भारत की संस्कृति में उपवास या रोजा भारत के महाजनों की हड़ताल और राष्ट्र का उस समय का प्रज्वलित प्रश्न तीनों उनके कार्यक्रम में इकट्ठे हो गए। इससे उन्हें अकल्पनीय सफलता मिली साथियों।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि कशिश कार्यक्रम में

0: साथियों, जैसा कि गीत से पहले हम राष्ट्रपति प्रकरण में ढेर सारी बातों को जान रहे थे, यही बात करें तो इसी काल में उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। प्रांत प्रांत से इसमें शामिल होने वाले लोगों में जाति, संप्रदाय या धर्म का भेदभाव नहीं था। विश्व हित के लिए अविरोधी राष्ट्र सेवा इस आश्रम का उद्देश्य था। इसके लिए तैयार की गई नियमावली में पहले 5 उद्देश्य तो ऐसे थे जो सभी धर्मों द्वारा उद्देशित थे। मात्र इस समय तक जिन नियमों या व्रतों को वैदिक सीमा तक माना जाता था, उन व्रतों को सर्वजन हिताय व्यवहार में लाने के प्रयास हुए। गांधी जी जो कहते थे वही करते थे। उनके इस पारदर्शी ईमानदारी ने उन्हें राष्ट्र में एक अनोखा स्थान प्रदान किया। यह सत्याग्रह इस राष्ट्र का एक अत्यंत लघु रूप था। देश की स्वाधीनता इसका हेतु था। सत्याग्रह इसके लिए कार्यक्रम था और इसमें शामिल होने वाले लोगों में किसी भी तरह के भेदभाव से रहित एकात्म भाव था। गांधी जी ने अपने वर्ष भर के निरीक्षण काल में यह भी देखा कशिश कि संपूर्ण देश की स्वतंत्रता का उद्देश्य सामने रखकर चलने वाली कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसके सामने कोई दूसरा हित आने जैसा नहीं था। मुस्लिम लीग या हिंदू महासभा की भांति यह किसी एक हित की समर्थक संस्था नहीं थी। यह संपूर्ण देश का हित करने वाली संस्था थी। मात्र यह संस्था अभी तक देश की एक पढ़े लिखे छोटे से वर्ग की ही प्रतिनिधि बनी हुई थी। इसे विशाल जन समुदाय का समर्थन नहीं था। यह वर्ष में एक बार इकट्ठी होकर प्रस्ताव पारित करने के अलावा कोई काम नहीं करती थी। यह लोगों की भाषा में भी नहीं बोलती थी।
1: बिल्कुल साथियों, मुख्य रूप से लोकमान्य तिलक के आग्रह से गांधी जी को ऐसी कांग्रेस का विधान तैयार करने का काम सौंपा गया। उन्होंने ऐसा संविधान बना कर दिया जिससे कांग्रेस की काया ही पलट जाए। उन्होंने कांग्रेस को पूरे वर्षों में काम करने वाली संस्था का संविधान दिया।
2: बिल्कुल,
1: इसकी सदस्यता उन सबके लिए खुली रखी गई जो कांग्रेस के उद्देश्य माने और 4 आना शुल्क भरे। दोस्तों, कांग्रेस के 2-2 अधिवेशनों के मंथन के अंत में गांधी जी ने उन्हें असहयोग कार्यक्रम सौंपा। इस कार्यक्रम से मानो देश में बिजली दौड़ गई। राष्ट्र की मुक्ति के लिए राष्ट्र का सामान्य नागरिक भी अपने बूते के अनुसार कर सके, ऐसा यह कार्यक्रम था।
2: बिल्कुल,
1: देश में पहली बार अंग्रेजों के विषय में शिकायत करने वालों ने अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त मान सम्मान छोड़ दिए और पहली बार पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग जेल जा रहा था।
2: बिल्कुल,
1: देश में पहली बार विद्यार्थियों और अध्यापकों ने देश की मुक्ति के लिए अपने विद्यालय महाविद्यालय छोड़ दिए थे। त्याग के आंदोलन लोगों को एक दूसरे को जितने नजदीक लाते थे अंजलि जी, उतनी ही भोग की प्रवृत्तियां कदापि नहीं लाती। दोस्तों, राष्ट्रीयता की भावना जितनी जेलों में या जुलसों में लाठियां झेलते हुए विकसित हुई होंगी, उतने शायद ही कहीं विकसित हुई होंगी। राष्ट्रपिता द्वारा बनाया हुआ कार्यक्रम ही देश को राष्ट्र बनाने के लिए पोषक था। हम कह सकते हैं कि एकात्मकता अकेले पूरे देश को समेट लेने वाली होती है, यही पर्याप्त नहीं था। जिस संस्था के माध्यम से राष्ट्रीयता साधन थी, उस संस्था में पूरी एकात्मक भावना विकसित हो, यह जरूरी था अंजलि जी।
2: बिल्कुल,
1: कांग्रेस में फूट पड़े ऐसे कम से कम 3 प्रसंगों में गांधी जी की कुशलता, उनके व्यक्तित्व और उनकी उदारता से वह फूट टल गई थी।
0: यही बात करें कशिश, तो 1922 से 1924 के बीच जब गांधी जी जेल प्रवास पर थे, तब कांग्रेस कार्यकर्ता परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी 2 दलों में बट गए। अपरिवर्तनवादी ऐसा मानते थे कि कांग्रेस को असहयोग और रचनात्मक कार्यक्रम चालू रखने चाहिए, इसमें कोई फेर बदल नहीं होना चाहिए। अपरिवर्तनवादियों में चक्रवर्ती, राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महादेव देसाई, जमनालाल बजाज जैसे लोग थे। परिवर्तनवाद मानते थे कि कौंसिल के बहिष्कार का कार्यक्रम समाप्त कर देना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: कौंसिल के भीतर प्रवेश करके अंदर से स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। ऐसा मानने वालों में चित्रंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल बुजुर्ग थे। यह मतभेद कभी कभी परस्पर विरोधी तीर निवेदन प्रकाशित करने तक पहुँच जाता था। परिवर्तनवादियों ने तो स्वतंत्र स्वराज पार्टी नामक दल स्थापित करके कौंसिल में जाकर कांग्रेस को सहयोग देने तक की प्रवृत्ति की थी। गांधी जी स्वयं जब जेल में थे, तब किसी भी प्रकार के राजनीतिक सवाल का प्रतिक्रिया न देना अनुशासन मानते थे।
1: बिल्कुल,
0: बीमारी की वजह से जब गांधी जी को बिना शर्त छोड़ दिया गया, तब ये दोनों विचारधारा के लोग गांधी जी की प्रतिक्रिया पूछने लगे। अपरिवर्तनवादियों को ऐसी आशा थी कि वे लोग गांधी जी के द्वारा बताए मार्ग पर चलने की ही बात कहते थे। गांधी जी उनको 100% समर्थन देंगे। गांधी जी गतिशील व्यक्ति थे, उन्होंने संपूर्ण परिस्थिति देखकर दोनों दलों से अपना अपना कार्यक्रम चालू रखने का सुझाव दिया। जिसे काउंसिल में जाना हो वो वैसा करे, और जिन्हें जेल में जाना हो या रचनात्मक कार्यों में शामिल होना हो वे वैसा करें।
1: बिल्कुल,
0: परिवर्तनवादी इससे थोड़े निराश तो हुए, पर इन लोगों की गांधी जी के प्रति श्रद्धा इतनी गहरी थी कि कुछ समय में ही उस निराशा को दूर करके वे रचनात्मक कार्यों या लोक जागृति के कार्यों में जुट गए। इसके विपरीत यदि गांधी जी ने अपरिवर्तनवादियों की बात को ही मान्यता दी होती तो कदाचित उन्हें देश के बहुत बड़े नेताओं का साथ हमेशा हमेशा के लिए गवा देना पड़ता।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन के माध्यम से हम राष्ट्रपति प्रकरण को लेकर ढेर सारी बातें कर पाए हैं, अगले रविवार को हमारी दोस्तों से इसी कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकरण से जुड़ी और ढेर सारी बातों के साथ में।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अभी लेते हैं कार्यक्रम से विदा। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।
2: तो साथियों सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे है जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपे करने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलेस ने हमरो ने हाथे मनी में जावू है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लगाड़वो काटो नती जय वरे अधिकार हमरो अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनो हक जानो हक मांगो जमीन कागज माते अपनो नाम लगाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

भाई ने बोनो घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, ने सोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

वागर रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

0: हर जाति पंथ और मजहब का करता है सम्मान, स्वतंत्र रखे जग को सदा ऐसा है अपना संविधान।
1: जी हाँ, भारत की हर समस्या का है जहाँ समाधान, स्वतंत्र रखे जो हम सबको वो है अपना संविधान।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी, पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम में हमने जाना था कि किस तरीके से संविधान सभा अल्पसंख्यक कहे जाने का विरोध हुआ था, ऐतिहासिक अन्याय के शिकार आदिवासियों को लेकर हमने चर्चा की थी। यही बात करते हैं संविधान आदिवासी पहचान की तलाश के बारे में।
1: जी हाँ, आदिवासी पहचान की तलाश को लेकर अंजलि हम बात करें तो आदिवासी समाज के जीवन का मूल आधार जमीन और अन्य प्राकृतिक संसाधन रहे हैं।
2: जी जी।
1: आजादी के समय से ही यह विचार रखा जाने लगा था कि देश की प्रगति के लिए उद्योग लगाए जाएंगे, इसके लिए जमीन की जरूरत होगी, अतः जमीन सरकार की संपत्ति होगी।
2: जी जी।
1: दूसरी ओर संविधान सभा में प्रावधानों पर बहस के दौरान भी आदिवासी सदस्यों ने बार बार इशारा किया कि संविधान में आदिवासियों के हकों और उनकी परंपरागत व्यवस्थाओं के लिए व्यापक प्रावधान किए जाने चाहिए। संविधान सभा की उपसमिति ने देश में आदिवासियों की स्थिति और खास तौर पर उत्तर पूर्व में निवासरत समाज की स्थिति और मांगों का अध्ययन किया। संविधान में पांचवी और छठी अनुसूची को मुख्य रूप से इसीलिए शामिल किया गया।
0: हाजिर है वही अंजलि जी। भारत की संस्कृति में उपवास या रोजा भारत के महाजनों की हड़ताल और राष्ट्र का उस समय का प्रज्वलित प्रश्न तीनों उनके कार्यक्रम में इकट्ठे हो गए। इससे उन्हें अकल्पनीय सफलता मिली साथियों।
3: बिल्कुल। तो जैसा कि कशिश कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ।

0: साथियों, जैसा कि गीत से पहले हम राष्ट्रपति प्रकरण में ढेर सारी बातों को जान रहे थे, यही बात करें तो इसी काल में उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। प्रांत प्रांत से इसमें शामिल होने वाले लोगों में जाति, संप्रदाय या धर्म का भेदभाव नहीं था। विश्व हित के लिए अविरोधी राष्ट्र सेवा इस आश्रम का उद्देश्य था। इसके लिए तैयार की गई नियमावली में पहले 5 उद्देश्य तो ऐसे थे जो सभी धर्मों द्वारा उद्देशित थे। मात्र इस समय तक जिन नियमों या व्रतों को वैदिक सीमा तक माना जाता था, उन व्रतों को सर्वजन हिताय व्यवहार में लाने के प्रयास हुए। गांधी जी जो कहते थे वही करते थे। उनके इस पारदर्शी ईमानदारी ने उन्हें राष्ट्र में एक अनोखा स्थान प्रदान किया। यह सत्याग्रह इस राष्ट्र का एक अत्यंत लघु रूप था। देश की स्वाधीनता इसका हेतु था। सत्याग्रह इसके लिए कार्यक्रम था और इसमें शामिल होने वाले लोगों में किसी भी तरह के भेदभाव से रहित एकात्म भाव था। गांधी जी ने अपने वर्ष भर के निरीक्षण काल में यह भी देखा कशिश कि संपूर्ण देश की स्वतंत्रता का उद्देश्य सामने रखकर चलने वाली कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसके सामने कोई दूसरा हित आने जैसा नहीं था। मुस्लिम लीग या हिंदू महासभा की भांति यह किसी एक हित की समर्थक संस्था नहीं थी। यह संपूर्ण देश का हित करने वाली संस्था थी। मात्र यह संस्था अभी तक देश की एक पढ़े लिखे छोटे से वर्ग की ही प्रतिनिधि बनी हुई थी। इसे विशाल जन समुदाय का समर्थन नहीं था। यह वर्ष में एक बार इकट्ठी होकर प्रस्ताव पारित करने के अलावा कोई काम नहीं करती थी। यह लोगों की भाषा में भी नहीं बोलती थी।
1: बिल्कुल साथियों, मुख्य रूप से लोकमान्य तिलक के आग्रह से गांधी जी को ऐसे कांग्रेस का विधान तैयार करने का काम सौंपा गया। उन्होंने ऐसा संविधान बनाकर दिया जिससे कांग्रेस की काया ही पलट जाए। उन्होंने कांग्रेस को पूरे वर्षों में काम करने वाली संस्था का संविधान दिया।
2: बिल्कुल,
1: इसकी सदस्यता उन सबके लिए खुली रखी गई जो कांग्रेस के उद्देश्य माने और 4 आना शुल्क भरे। दोस्तों, कांग्रेस के 2-2 अधिवेशनों के मंथन के अंत में गांधी जी ने उन्हें असहयोग कार्यक्रम सौंपा। इस कार्यक्रम से मानो देश में बिजली दौड़ गई। राष्ट्र की मुक्ति के लिए राष्ट्र का सामान्य नागरिक भी अपने बूते के अनुसार कर सके, ऐसा यह कार्यक्रम था।
0: बिल्कुल,
1: देश में पहली बार अंग्रेजों के विषय में शिकायत करने वालों ने अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त मान सम्मान छोड़ दिए और पहली बार पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग जेल जा रहा था।
0: बिल्कुल,
1: देश में पहली बार विद्यार्थियों और अध्यापकों ने देश की मुक्ति के लिए अपने विद्यालय महाविद्यालय छोड़ दिए थे। त्याग के आंदोलन लोगों को एक दूसरे को जितने नजदीक लाते थे अंजलि जी, उतनी ही भोग की प्रवृत्तियां कदापि नहीं लाती। दोस्तों, राष्ट्रीयता की भावना जितनी जेलों में या जुलसों में लाठियां झेलते हुए विकसित हुई होंगी, उतने शायद ही कहीं विकसित हुई होंगी।
0: बिल्कुल,
1: राष्ट्रपिता द्वारा बनाया हुआ कार्यक्रम ही देश को राष्ट्र बनाने के लिए पोषक था। हम कह सकते हैं कि एकात्मकता अकेले पूरे देश को समेट लेने वाली होती है, यही पर्याप्त नहीं था। जिस संस्था के माध्यम से राष्ट्रीयता साधन थी, उस संस्था में पूरी एकात्मक भावना विकसित हो, यह जरूरी था अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: कांग्रेस में फूट पड़े ऐसे कम से कम 3 प्रसंगों में गांधी जी की कुशलता, उनके व्यक्तित्व और उनकी उदारता से वह फूट टल गई थी।
0: यही बात करें कशिश, तो 1922 से 1924 के बीच जब गांधी जी जेल प्रवास पर थे, तब कांग्रेस कार्यकर्ता परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी 2 दलों में बट गए। अपरिवर्तनवादी ऐसा मानते थे कि कांग्रेस को असहयोग और रचनात्मक कार्यक्रम चालू रखने चाहिए, इसमें कोई फेर बदल नहीं होना चाहिए। अपरिवर्तनवादियों में चक्रवर्ती, राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महादेव देसाई, जमनालाल बजाज जैसे लोग थे। परिवर्तनवाद मानते थे कि कौंसिल के बहिष्कार का कार्यक्रम समाप्त कर देना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: कौंसिल के भीतर प्रवेश करके अंदर से स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। ऐसा मानने वालों में चितरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल बुजुर्ग थे। यह मतभेद कभी कभी परस्पर विरोधी तरीके निवेदन प्रकाशित करने तक पहुंच जाता था। परिवर्तनवादियों ने तो स्वतंत्र स्वराज पार्टी नामक दल स्थापित करके कौंसिल में जाकर कांग्रेस को सहयोग देने तक की प्रवृत्ति की थी। गांधी जी स्वयं जब जेल में थे, तब किसी भी प्रकार के राजनीतिक सवाल का प्रतिक्रिया न देना अनुशासन मानते थे।
1: बिल्कुल,
0: बीमारी की वजह से जब गांधी जी को बिना शर्त छोड़ दिया गया, तब ये दोनों विचारधारा के लोग गांधी जी की प्रतिक्रिया पूछने लगे। अपरिवर्तनवादियों को ऐसी आशा थी कि वे लोग गांधी जी के द्वारा बताए मार्ग पर चलने की ही बात कहते थे। गांधी जी उनको 100% समर्थन देंगे। गांधी जी गतिशील व्यक्ति थे, उन्होंने संपूर्ण परिस्थिति देखकर दोनों दलों से अपना अपना कार्यक्रम चालू रखने का सुझाव दिया। जिसे काउंसिल में जाना हो वो वैसा करे, और जिन्हें जेल में जाना हो या रचनात्मक कार्यों में शामिल होना हो वे वैसा करें।
1: बिल्कुल,
0: परिवर्तनवादी इससे थोड़े निराश तो हुए, पर इन लोगों की गांधी जी के प्रति श्रद्धा इतनी गहरी थी कि कुछ समय में ही उस निराशा को दूर करके वे रचनात्मक कार्यों या लोक जागृति के कार्यों में जुट गए। इसके विपरीत यदि गांधी जी ने अपरिवर्तनवादियों की बात को ही मान्यता दी होती तो कदाचित उन्हें देश के बहुत बड़े नेताओं का साथ हमेशा हमेशा के लिए गंवा देना पड़ता।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन के माध्यम से हम राष्ट्रपति प्रकरण को लेकर ढेर सारी बातें कर पाए हैं, अगले रविवार को हमारी दोस्तों से इसी कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकरण से जुड़ी और ढेर सारी बातों के साथ में।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अभी लेते हैं कार्यक्रम से विदा। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।
2: तो साथियों सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।

0: આપે ક્યારે વિચાર કર્યો હે કે જૈયા પેડની છાંવમાં આપણે રહ યા આપણને કેટલી શાંતિ મળે હે, જેની હવામાં આપણે હા લહ એ ભી આપણા થકી કઈ આશ.
1: નમસ્કાર, આઓ ભાઈઓ ઓર બહેનો, સુનતે હૈ કાર્યક્રમ દાદી માં કી રસોઈ.
2: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8, आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM. मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर. तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी आप सभी का कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में, जहां हम बात करते हैं घर की रसोई में बनने वाले स्वादिष्ट पारंपरिक और पौष्टिक व्यंजनों की. जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणेश जी इन दिनों हमारे घर के आंगन में विराजमान है. कहीं गणपति की स्थापना हुई है, कहीं पूजा अर्चना हो रही है, तो कहीं घर की महिलाएं और बच्चे मिलकर भगवान गणेश के लिए प्रसाद तैयार कर रहे हैं. और जब भी हम गणेश जी का नाम लेते हैं तो एक ऐसे मिठाई का नाम हम जरूर याद करते हैं जिसे गणपति बप्पा का प्रिय प्रसाद माना जाता है, और वो है मोदक. इसलिए श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम दादी माँ की रसोई के माध्यम से हमने सोचा कि क्यों ना इस गणेश उत्सव के मौके पर हम घर पर ही स्वादिष्ट मोदक बनाएं, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हम इन्हें थोड़े पौष्टिक अंदाज में कैसे तैयार कर सकते हैं. आज हम बनाएंगे गुड़, नारियल और तिल के मोदक, जिसमें साथियों हम इस्तेमाल करेंगे घर में आसानी से मिलने वाली सामग्री, और मोदक को तलने के बजाय हम भाप में पकाएंगे. तो आज की हमारी रसोई में गणेश उत्सव की खुशबू भी होगी, दादी माँ की पारंपरिक सीख भी होगी साथियों, और स्वाद के साथ सेहत की बात भी होगी. तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में हम आपको पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं, और जैसा कि हम सभी के घर पर गणपति बप्पा तो विराजमान है ही, तो आइए श्रोता साथियों पहले गणपति वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं. तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आपके अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में.

गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको आज के इस कार्यक्रम में हमारी किस विषय पर आपसे बातचीत रहने वाली है ये तो बता ही दिया था। जैसा कि बताया था कि आज हम बनाने वाले हैं गुड़ तिल के मोदक, क्योंकि दोस्तों गणेश उत्सव सिर्फ पूजा और प्रसाद का अवसर ही नहीं होता, बल्कि परिवार के साथ मिलकर अपनी परंपराओं और खान पान की अच्छी आदतों को आगे बढ़ाने का भी समय होता है। तो चलिए सबसे पहले आप जानते हैं कि आज के इन खास मोदकों के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारी रसोई की ये साधारण सी सामग्री हमारे भोजन में क्या महत्व रखती है। लेकिन दोस्तों सामग्री जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज के हमारे सामग्री की सबसे

इस्तेमाल करेंगे और उसमें एक चुटकी नमक आप इस्तेमाल करेंगे साथियों। तो ये तो हमने बाहरी परत के लिए यानी कि मोदक बनाने के लिए जो हमें आटा चाहिए होगा उसको गूंथने के लिए क्या चीजें चाहिए होगी ये पता कर लिया। अब यही बात करते हैं भरावन की। तो साथियों भरावन करने के लिए आपको कद्दूकस किया हुआ एक नारियल चाहिए होगा। इसके बाद श्रोता साथियों आप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप गुड़ ले रहे हैं तो आप इसका उपयोग स्वाद अनुसार भी कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोगों को मीठा ज्यादा पसंद होता है और कुछ लोगों को मीठा कम पसंद होता है, इसलिए आप अपने स्वाद के अनुसार गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप तिल लेंगे जो कि 2 बड़े चम्मच आप लेंगे, इलायची पाउडर आप लेंगे श्रोता साथियों 1 छोटा चम्मच, कटे हुए बादाम या मूंगफली भी कद्दूकस की हुई आप यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही आपको मोदक को पकाने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए होगा, भाप में पकाने का बर्तन चाहिए होगा। अगर आपके पास कोई बर्तन नहीं है तो आप इडली का स्टैंड भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सामग्रियाँ जो कि हमारे घरों में सामान्य रूप से हमें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि इन सामग्री के फायदे क्या होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के आटे की। दोस्तों गेहूं के आटे में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी होता है और साथ ही हमें फाइबर भी मिलता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है। साथ ही जैसा कि हम इसमें नारियल का इस्तेमाल भी करने वाले हैं, तो जो नारियल है वो हमारे पारंपरिक भोजन का हिस्सा रहा है साथियों, ये तो हम सभी जानते हैं। इसमें वसा भी होता है, फाइबर भी होता है और कुछ खनिज भी पाए जाते हैं। साथ ही इसका स्वाद और खुशबू मोदक के भरावन को और भी खास बना देंगे। अगर तिल की बात करूं तो छोटे से दिखने वाले तिल में साथियों स्वस्थ वसा होता है, प्रोटीन होता है और कैल्शियम की मात्रा भी भरपूर होती है। अगर गुड़ की बात करें तो गुड़ के फायदे तो हम सभी जानते हैं। गुड़ का स्वाद मीठा होता है, इसमें कुछ खनिज जरूर होते हैं, लेकिन हमें ये बात याद रखनी है कि गुड़ भी चीनी का एक बहुत अच्छा स्रोत है, इसलिए श्रोता साथियों इसे स्वास्थ्यवर्धक चीनी समझकर हम अधिक मात्रा में नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों ये तो हो गई हमारी सामग्री और उसके फायदे क्या हो सकते हैं। अब आगे कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि हम मोदक कैसे बना सकते हैं। तो बातें और भी होंगी, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारे कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में हमारी स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधि की ओर। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको श्रोता साथियों मोदक बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी ये तो बता दिया था, साथ ही जिन सामग्री का हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसके क्या क्या फायदे हैं ये भी हम जान पाए थे। तो अब श्रोता साथियों समय आ गया है असली रसोई का। चलिए बिल्कुल आसान तरीके से बनाते हैं हमारे गुड़ नारियल तिल के मोदक। दोस्तों सबसे पहले तो हमें भरावन तैयार करना होगा। तो भरावन तैयार करने के लिए आप सबसे पहले कढ़ाई को हल्का गर्म करें, इसमें तिल डालकर धीमी आंच पर हल्का इसे भूनें। ध्यान रखें दोस्तों तिल जलना नहीं चाहिए। जब खुशबू आपको हल्की हल्की आने लगे तो गैस बंद कर दें। अब श्रोता साथियों इसी तरह नारियल को भी आपको हल्का गर्म कर लेना है। इसके बाद कढ़ाई में कद्दूकस किया हुआ गुड़ डालें, धीमी आंच पर इसे पिघलने दें। जब दोस्तों गुड़ थोड़ा पिघल जाए तो इसमें आप नारियल डालें। अब इसमें भुना हुआ तिल डालेंगे और सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथियों जब सभी चीजें एक साथ मिल जाएं अच्छी तरीके से तो आप ऊपर से इलायची पाउडर डालेंगे। अगर आप मेवे डालना चाहते हैं तो इस समय थोड़े कटे हुए बादाम या मूंगफली भी आप डाल सकते हैं। अब इस मिश्रण को ज्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस इतना पकाएं कि सामग्री आपस में अच्छी तरह मिल जाए। तो दोस्तों ये तो हमारा मिश्रण बनकर तैयार हो गया। अब यही हमारी दादी माँ की एक छोटी सी सीख है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। उनका कहना है कि गुड़ वाले भरावन को बहुत ज्यादा गीला नहीं रखना होता है, वरना मोदक बनाते समय परत फट सकती है। अब श्रोता साथियों आप भरावन को एक प्लेट में निकाल कर थोड़ा ठंडा होने दें। तो ये तो हमारा भरावन बनकर तैयार हो गया। अब हम बनाते हैं मोदक की बाहरी परत। साथियों आपको सबसे पहले एक बर्तन में एक कप गेहूं का आटा लेना है, इसमें एक छोटा चम्मच घी और एक चुटकी नमक डालना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपको एक आटा गूंथ लेना है। आटा बहुत सख्त नहीं होना चाहिए और बहुत ढीला भी नहीं होना चाहिए। इसे लगभग आपको 10 मिनट तक ढककर रख देना है ताकि आटा थोड़ा नरम हो जाए। अब श्रोता साथियों आटे की छोटी छोटी लोइयां आप बनाकर तैयार कर लें। हर लोई को हाथ या बेलन से हल्का पतला बेलें। अब इसके बीच में तैयार किया हुआ नारियल और गुड़ का जो भरावन है वो आप रखें। इसके किनारों को अंगुलियों से मोड़ते हुए ऊपर की तरफ बंद कर लें। अगर आपको साथियों पारंपरिक मोदक का आकार बनाना मुश्किल लगे तो आपको चिंता नहीं करनी है, आप इसे छोटी छोटी पोटली या गोल मोदक का आकार भी दे सकते हैं। अब धीरे धीरे आप इसी विधि को अपनाते हुए छोटी छोटी लोइयों से मोदक बनाकर तैयार कर लें। अब साथियों हमारे मोदक बनकर तैयार हैं, लेकिन अभी भाप में पकाना बाकी है। इसके लिए आप एक बर्तन में पानी गर्म करें, उसके ऊपर छलनी या इडली स्टैंड भी रख सकते हैं, उसे हल्का सा घी लगाकर चिकना कर लें। अब मोदक को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखें, फिर ढक्कन लगाकर इन्हें लगभग 10 से 15 मिनट तक भाप में आप पकाएं। साथियों जब बाहरी परत अच्छी तरह पक जाए और मोदक का आकार सेट हो जाए तो आपको गैस बंद कर देनी है और फिर इसे थोड़ा ठंडे होने के लिए आपको रख देना है। फिर आप देखेंगे कि हमारे गर्मा गर्म गुड़ नारियल तिल के मोदक बनकर तैयार हैं। तो दोस्तों ये तो मोदक बनकर तैयार हो गए। आप इसे हल्का गर्म या हल्के ठंडे भी परोस सकते हैं। इन्हें बनाने के बाद बहुत देर तक खुले में रखने के बजाय साफ और ढके हुए बर्तन में आप इसे रखें। तो श्रोता साथियों ये तो हमारे मोदक बनकर तैयार हो गए। आगे कुछ छोटी मोटी बातें और भी हैं जो बनी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद फिर से रुक करती हूँ कार्यक्रम में। जैसा कि गीत से पहले साथियों हमारे पारंपरिक मोदक बनकर तैयार हो गए थे, तो साथियों आज की इस रसोई हमें एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात जरूर सिखाती है कि पौष्टिक भोजन का मतलब हमेशा महंगी चीजें खरीदना नहीं होता। हमारे घर में मौजूद अनाज, तिल, नारियल, दालें, मौसमी फल, सब्जियाँ और दूसरे स्थानीय खाद्य पदार्थों को हम सही तरीके से मिलाकर भी स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में साथियों ढेर सारी हमारी आपसे रही, अब जैसा कि बातें ढेर सारी हो चुकी है और समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मैं विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको हमारे कार्यक्रम का पता बताना चाहूंगी। तो दोस्तों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में एक नए स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधि के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।

वागड़ रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

0: जाति पंथ और मजहब का करता है सम्मान, स्वतंत्र रखे जग को सदा ऐसा है अपना संविधान।
1: जी हाँ, भारत की हर समस्या का है जहाँ समाधान, स्वतंत्र रखे जो हम सबको वो है अपना संविधान।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम में हमने जाना था कि किस तरीके से संविधान सभा अल्पसंख्यक कहे जाने का विरोध हुआ था, ऐतिहासिक अन्याय के शिकार आदिवासियों को लेकर हमने चर्चा की थी। यही बात करते हैं संविधान आदिवासी पहचान की तलाश के बारे में।
1: जी हाँ, आदिवासी पहचान की तलाश को लेकर अंजलि हम बात करें तो आदिवासी समाज के जीवन का मूल आधार जमीन और अन्य प्राकृतिक संसाधन रहे हैं।
2: जी जी।
1: आजादी के समय से ही यह विचार रखा जाने लगा था कि देश की प्रगति के लिए उद्योग लगाए जाएंगे, इसके लिए जमीन की जरूरत होगी, अतः जमीन सरकार की संपत्ति होगी।
2: जी जी।
1: दूसरी ओर संविधान सभा में प्रावधानों पर बहस के दौरान भी आदिवासी सदस्यों ने बार बार इशारा किया कि संविधान में आदिवासियों के हकों और उनकी परंपरागत व्यवस्थाओं के लिए व्यापक प्रावधान किए जाने चाहिए। संविधान सभा की उपसमिति ने देश में आदिवासियों की स्थिति और खास तौर पर उत्तर पूर्व में निवासरत समाज की स्थिति और मांगों का अध्ययन किया। संविधान में पांचवी और छठी अनुसूची को मुख्य रूप से इसीलिए शामिल किया गया। प्रावधान क्या है ये तो संविधान की किताब में दर्ज है अंजलि, किंतु इस विषय पर होने वाली बहस को जानना आवश्यक है।
0: जी बिल्कुल। इसी के साथ जागृति जी, हम देखते हैं कि 30 अप्रैल 1947 को संविधान सभा में जयपाल सिंह ने कहा कि मैं आदिवासी दृष्टिकोण से इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि भूमि आदिवासियों के जीवन का आधार है। मेरा ख्याल है कि असम के प्रधानमंत्री मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि जब तक आदिवासियों को यह आश्वासन नहीं दिया जाता है कि उन्हें जो संरक्षण प्राप्त है उसमें इस धारा से कोई प्रभाव न पड़ेगा, तब तक उन्हें तथा उप समितियों को पृथक तथा आंशिक रूप से पृथक प्रदेशों में जाना असंभव हो जाएगा। मुझसे पहले बोलने वाले मानवीय सदस्य इस बात पर जोर दे चुके हैं कि अभी काफी भ्रम फैल चुका है। मैं तो चाहता हूँ कि उप समितियों की रिपोर्ट मिलने तक इस धारा को स्थगित कर दिया जाए। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि हम जहाँ भी गए यानी कि अध्ययन के लिए उप समिति के रूप में है, वही यही कहा गया है कि अभी कई वर्षों तक आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: यदि मैं इन संरक्षण के लिए लड़ता हूँ तो अधिकांश सदस्य हंसेंगे। आज ही सुबह एक मित्र ने मुझसे कहा था कि आप चाहते हैं कि सृष्टि के अंत तक आदिवासियों की भूमि की बेदखली न हो सके। आदिवासियों की महत्वपूर्ण मांगों का कैसे मजाक उड़ाया जाता है, यह उसका उदाहरण है। हम समानता की बातें करते रहे हैं, ऐसी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, किंतु जब आदिवासियों की भूमि पर अधिकार का प्रश्न उठता है तो मैं भेदभाव की मांग करता हूँ।
1: जी हाँ।
0: इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि उन समितियों की रिपोर्ट प्राप्त होने तक जो आदिवासियों के संबंध में विचार करेगी, इस धारा पर विचार स्थगित रखा जाए, क्योंकि वह आदिवासियों के अधिकारों को प्रभावित करेगा और इस संबंध में कोई भी निश्चित न किया जाए कि चाहे यह निश्चित कितना भी अस्थायी क्यों न हो।
1: बिल्कुल अंजलि, अगर पांचवी अनुसूची को लेकर हम बात करें तो संविधान में पांचवी अनुसूची के जरिए आदिवासी क्षेत्रों अनुसूचित क्षेत्रों को लेकर एक व्यवस्था बनाने की पहल की गई है।
0: जी बिल्कुल।
1: यह इसलिए किया गया है ताकि आदिवासी या आदिम जनजाति समुदाय के साथ होते आए अन्याय और उपेक्षा को खत्म किया जा सके और उनकी अस्मिता की सुरक्षा के साथ वे अपनी व्यवस्थाएं भी बरकरार रख सके।
0: जी जी।
1: इसके तहत आदिम जनजाति मंत्रणा परिषद के गठन की व्यवस्था की गई। संविधान सभा में इस पर बहस के दौरान एवी ठक्कर ने कहा, ये पहला मौका है जब एक ऐसी परिषद को अस्तित्व में लाने की बात कही गई है। जब कबायली जातियों के उत्थान के लिए महात्मा गांधी का आंदोलन चल रहा था उस समय भी शासन को लेकर कहीं उन जातियों की कोई समिति गठित नहीं की गई थी। मैं असम कबायली समिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलोई के साथ पहली बार लूसाई और नागा पहाड़ियों में पहुंचा। मेरे जैसे आदिम की बात तो जाने दीजिए, असम के प्रधानमंत्री भी इससे पहले कभी उन इलाकों में नहीं पहुंचे थे।
0: जी बिल्कुल। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रस्ताव जागृति जी यह था कि आदिवासी मंत्रणा परिषद उन विषयों पर विचार करेगी जो उसे सौंपे जाएंगे, परंतु युधिष्ठिर मिश्र ने कहा कि आदिम जाति मंत्रणा परिषद को यह अधिकार भी होना चाहिए कि वह अपनी सोच और जरूरत के मुताबिक विधियों पर विचार कर और मंत्रणा करके सरकार को सुझाव दे सके। कहीं ऐसा न हो कि राज्यपाल या शासक उसे ऐसे विषय मंत्रणा के लिए सौंपे ही नहीं जिसका अनुसूचित जनजातियों पर असर पड़ता हो।
1: जी हाँ।
0: यदि ऐसा हुआ तो पूरा उद्देश्य खत्म हो जाएगा। सभा में यह भी विचार था कि आदिवासी क्षेत्रों के कल्याण का काम पूरी तरह से केंद्र के ही अधीन कर दिया जाए। इस पर भी बहस हुई कि यह तय है कि कई आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र के बाहर भी रहते होंगे। मंत्रणा परिषद उनके कल्याण के बारे में कैसे काम करेगी? जयपाल सिंह मुंडा का सुझाव था कि एक पक्का उपबंध के अनुसार राज्यपाल के लिए यह अनिवार्य हो कि वह अपनी रिपोर्ट में यह भी बताए कि सभी अनुसूचित जातियों के लिए यानी कि हर राज्य के सभी पिछड़े हुए लोगों के लिए क्या किया गया है।
1: बिल्कुल अंजलि। तो अंजलि, जैसा कि कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में हमारी बातें बहुत ही अच्छी चल रही हैं, तो ये बातें निरंतर यूं ही चलती रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि पांचवी अनुसूची में हम ढेर सारी बातों को जान रहे थे, यही बात करें तो समाज के वंचित तबकों जैसे कि आदिवासी समाज के लिए किए जाने वाले विशेष प्रावधानों के संदर्भ में कुछ आदिवासियों का जागृति जी मानना था कि आदिवासी दलितों के लिए विशेष प्रावधान करने से भेदभाव स्थायी रूप से लेगा। विश्वनाथ दास का कहना था कि हमने 40 साल तक सांप्रदायिक विष को दूर करने की कोशिश की, जो ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1909, 1919 और 1935 में प्रविष्ट कराया था। इस बुराई को दूर करने में देश को विभाजन की भारी क्षति उठानी पड़ी।
1: बिल्कुल।
0: पर अब हम क्या कर रहे हैं? संविधान में आदिम जाति मंत्रणा परिषद में उपबंध करके हम एक नया जहर पैदा कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आदिवासियों के विकास के लिए जमीन की जरूरत है तो जमीन दी जाए, समुन्नति संबंधित योजनाओं की जरूरत है तो उसके लिए धन की व्यवस्था भी की जाए।
1: बिल्कुल। अगर इसी के साथ सामाजिक विविधता और छठी अनुसूची के बारे में हम बात करें, ये एक शाश्वत प्रश्न है कि आदिवासी का मतलब क्या है? एक ही समुदाय है या उसके भीतर व्यापक विविधता है? वास्तव में आजादी के समय आदिवासी समुदाय के भीतर 177 जातियां पहचानी जा चुकी थी, जो देश के अलग अलग प्रांतों में और अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में निवास कर रही थी।
0: जी जी।
1: आज भी यही स्थिति है, लेकिन भारत की व्यवस्था आदिवासियों की पहचान और अस्मिता को स्वीकार्यता दे नहीं पाई।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि K.M. मुंशी का कहना था कि उनका ख्याल है कि सभी कबायली जातियां जो हर प्रांत में 30 से 50 वर्गों में विभक्त है और जिनको वे आदिवासी कहते हैं, वे सब एक समुदाय के अंग है। अपने प्रांत के बारे में जो कुछ जानकारी रखता हूँ उसके आधार पर मैं ये कहूँगा कि उनका यह ख्याल बिल्कुल गलत है। हर प्रांत में अपनी अलग अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जो नस्ल के ख्याल से, भाषा के ख्याल से, सामाजिक एवं धार्मिक रूढ़ियों के ख्याल से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, और समता की कोई बात इसमें नहीं पाई जाती। मेरे प्रांत में दुबला, भील, कोली, बर्दा, गोंड जनजातियाँ हैं। संविधान के अनुसार सभी आदिवासी हैं, किंतु ये सब एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। इन सबको एक समान स्तर पर लाने के लिए भिन्न भिन्न उपाय करने होंगे।
1: जी हाँ।
0: इन सबको एक समुदाय मानना न केवल असत्य बात होगी, बल्कि ऐसा करना तो इन जातियों के लिए सर्वथा अहितकर होगा। हमें इनकी पहचान और संस्कृति को समुन्नति करने में मदद करते हुए इन्हें देश के राष्ट्रीय जीवन में भी अधिकाधिक सहयोग करने के लिए उत्साहित करना है।
1: जी हाँ।
0: यह न होना चाहिए कि राष्ट्र से असंबद्ध होकर ये लोग पृथक पृथक वर्गों के रूप में या छोटे छोटे जनतंत्र के रूप में स्थायी होकर यहाँ रहे।
1: बिल्कुल। इसी के साथ साथ विविधता, संस्कृति और भूगोल से आदिवासी पहचान का जुड़ाव छठी अनुसूची पर चर्चा के समय भी उभर कर आया। असम की बात करते हुए गोपीनाथ बारदोलोई ने सभा को बताया कि छठी अनुसूची के मसौदे की पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है। आपको ये पता नहीं है कि ब्रिटिश सरकार का शासन और विदेशी प्रचारकों की कार्यवाहियां सदा साथ साथ चलती थी।
0: जी जी।
1: इन पर्वतीय क्षेत्रों का मैदान से कोई संपर्क न था। देश की स्वाधीनता तक यही स्थिति थी और तब तक विदेशी शासकों का वहाँ पूरा नियंत्रण था। युद्ध काल में तत्कालीन प्रशासकों और अधिकारियों ने इन आदिम जनजाति के लोगों में अलगाव और उपेक्षित होने की भावना भर दी और उन्हें आश्वासन दे दिया कि युद्ध के अंत में वे स्वतंत्र राज्य बनाकर अपने घर का स्वयं प्रबंधन करेंगे।
0: जी जी।
1: उन्हें विश्वास दिला दिया गया कि समस्त पर्वतीय क्षेत्रों का एक प्रांत बना दिया जाएगा और किसी अनुत्तरदायी राज्यपाल के अधीन रख दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या एकीकरण के प्रयोजन के लिए शक्ति के उपाय असम राइफलों और सैनिक बलों के प्रयोग होने चाहिए या ऐसे उपाय अपनाए जाने चाहिए जिनसे इन लोगों में हार्दिक सहयोग उत्पन्न हो और इन क्षेत्रों की शासन व्यवस्था बन सके।
0: जी बिल्कुल। इसी के साथ हम देखते हैं जागृति जी कि यह उल्लेख करना जरूरी है कि इन क्षेत्रों में, इन जातियों में बहुत अच्छी संस्थाएं हैं, बहुत झगड़े सुलझाने वाली अच्छी प्रणालियां हैं, लोकतंत्र है, गाम्य प्रशासन है। दूसरे शब्दों में वे एक प्रकार की कह सकते हैं कि स्वायत्तता का उपयोग कर रहे हैं, जिसको हमारी समिति के विचार में नष्ट करने की बजाय बनाए रखना चाहिए।
1: जी हाँ।
0: सुशासन के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता है वह वहाँ पहले से ही है। हत्या जैसी वारदात तभी है जब एक उपजाति की दूसरी उपजाति से शत्रुता होती है।
1: बिल्कुल।
0: इस लोगों में वंश परंपरा से सामूहिक घृणा की भावना होती है। जब हमारे सामने प्रश्न था कि क्या हम बल प्रयोग करके उसमें शत्रुता तथा घृणा का भाव पैदा करें या सद्भाव तथा प्रेम द्वारा शासन के विस्तृत सिद्धांतों के अंतर्गत लाएं, हमने बाद वाला विकल्प चुना। यह मान्यता भी थी कि यदि उत्तरी पूर्व

0: क्षेत्रों में पारंपरिक व्यवस्था के मुताबिक शासन करने के लिए स्वायत्तता दी गई, तो यह क्षेत्र भारत के साथ ही नहीं रहेगा।
1: बिल्कुल।
0: परंतु वास्तविकता यह है कि उत्तरी पूर्वी भारत में सांस्कृतिक विविधता तो थी ही, साथ ही ब्रिटिश शासन ने उसमें अलगाव की भावना का बीज भी बो दिया था।
1: जी हाँ, बिल्कुल अंजलि। रोहिणी कुमार चौधरी ने तर्क दिया कि अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों को अपनी जरूरत के मुताबिक गढ़ा है, अंग्रेजी के माध्यम से उन्हें अलग किया गया है, अंग्रेजों की उनकी व्यवस्था खत्म कर दी और अब डॉक्टर अंबेडकर छठी अनुसूची के माध्यम से ब्रिटिश प्रणाली का ही अनुसरण कर रहे हैं। यदि आप उन्हें अलग रखना चाहते हैं तो वे बर्मा यानी कि वर्तमान म्यांमार से मिल जाएंगे, तिब्बत से मिल जाएंगे, पर वे शेष भारत से नहीं मिलेंगे।
2: जी बिल्कुल।
1: साथ ही बात भी स्पष्ट की गई कि आदिवासियों और उत्तर पूर्वी भारत के समाज को हिंदू या मुसलमान मानने की गलती नहीं की जानी चाहिए। इनकी अपनी विशिष्ट पहचान और संस्कृति है। इस बिंदु को सफाई के साथ रखते हुए अंजलि, संविधान सभा के सदस्य रेवरेंड JJM निकलस राय ने कहा, वे उत्तर पूर्वी राज्य के आदिवासी शेष भारत से भिन्न है, वे कभी हिंदू या मुस्लिम राज्य में नहीं रहे।
2: जी,
1: उनके अपने नियम है, भाषा है, न्यायालय है और संस्कृति है। आदिम जातियों को शत्रु मानने का मतलब है कि हम उन्हें जान ही नहीं पाए। मानव प्रकृति ही ऐसी है, जब हम किसी से कुछ करवाने के लिए बल प्रयोग करते हैं तब वह सहायता लेने के लिए किसी और के पास दौड़ता है। यदि मित्रता और एकता की भावना विकसित करते हैं तो संबंध स्थापित होता है। यदि असम या अन्य क्षेत्रों को बल प्रयोग से भारत में मिलाएंगे तो परिणाम स्वरूप ये पहाड़ी आदिम जनजाति भारत से अलग हो जाएगी।
0: जी बिल्कुल। इसी के साथ जागृति जी, हम देखते हैं कि हर समझदार व्यक्ति ये मान रहा था कि आदिवासी और उत्तरी पूर्वी इलाकों को भारतीय बनाने के लिए बल प्रयोग करना बड़ी मूर्खता होगी। जरूरत है उनके साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करते हुए उनकी संस्कृति को मान्यता देने की।
1: जी हाँ,
0: वास्तव में भारत के संविधान की पांचवी और छठी अनुसूची आदिवासी आदिम जाति समुदाय की अस्मिता की सुरक्षा करते हुए भारत के समाज का एक अभिन्न अंग बनाने के मकसद से लागू की गई थी। यह एक स्थापित तथ्य है कि आदिम जाति समुदाय प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहता है, अतः यह जरूरी रहा कि आदिम जातियों के निवास स्थान, रहवास वाले स्थानों के संसाधनों को अन्य क्षेत्रों के समुदायों के अतिक्रमण या उनके व्यवसायिक दखल से संरक्षित किया जाए।
1: जी हाँ,
0: आज भी यह बहुत बड़ी जरूरत है। वर्तमान संदर्भों में यह दिख रहा है जागृति जी कि जितनी परिपक्वता संविधान निर्माताओं ने दिखाई थी उतनी समझ भी आज की व्यवस्थापक और सरकारें नहीं दिखा पा रही है। पूंजीवादी और सांप्रदायिक सोच ने राजनीतिक दलों और सरकारों को आदिवासियों के साथ शोषण की व्यवस्था को एक मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है।
1: बिल्कुल।
0: एक तरफ तो विकास के नाम पर उन्हें जमीन जंगल से बेदखल किया गया है, तो दूसरी तरफ उनकी पहचान को हिंदू या ईसाई पहचान में मिलाने की भी भरकस कोशिश की गई है। वास्तव में आदिवासियों के लिए आज भी सवाल विकास का नहीं, अस्मिता का ही है।
1: बिल्कुल। संविधान निर्माण के दौरान हुई बहसों से अंदाजा लगाया जा सकता है साथियों कि समुदाय किस हद तक उपेक्षित था। संविधान ने उन्हें उनकी मूल पहचान लुटाने का प्रयास किया, इसमें कितनी कामयाबी मिली यह बहस का विषय है।
0: जी बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमारी बहुत अच्छी बातें रही संविधान और आदिवासियों को लेकर, अगले रविवार को हमारी मुलाकात होगी संविधान और चुनाव प्रणाली के बारे में। तब तक के लिए हमारे श्रोता साथियों से हम कार्यक्रम में विदा लेना चाहेंगे।
1: जी हाँ साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।
3: जागृति बुन, आप कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है?
4: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
3: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे ही जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
4: ओ अंजलि बुन, इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
3: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
4: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
3: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ, ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
1: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: भूमि आवंटन हो,
1: दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग की प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाय, यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
5: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: थारी में पासो लावो चूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर, निपोषण भी पक्कू। बारतेनु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
0: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे हैं, जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
3: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपे करने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है। पटवारी, सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मलू न जावो है। फार्म भरो, जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जई वरे अधिकार हमरा अपनावी, जानकारी सबनो हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
2: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो, हक मांगो, जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो।
0: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारी आज की सभा। आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को कैसे लगी, इस बारे में आप अपनी राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता ही वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज की सभा से जाने की। आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

नमस्कार श्रोता साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपनी दोस्त मनीषा पटेल। स्वागत करती हूं आज की सायकालीन सभा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM। श्रोता साथियों, बताना चाहूंगी कि स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बज चुके हैं। श्रोता साथियों, संध्याकालीन सभा की शुरुआत से पहले आइए जानते हैं आज के पुनः प्रसारित कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। सबसे पहले कार्यक्रम हम सुनेंगे भक्ति श्रद्धा व आस्था से जुड़ा कार्यक्रम आराधना। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 5:30 पर। इसी क्रम में श्रोता साथियों, अगला कार्यक्रम होगा प्रेरणादायक व शिक्षाप्रद कहानियों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम कथा कहानी, जिसे आप सुन पाएंगे ठीक 6 बजे प्रस्तुतकर्ता जागृति भट्ट के साथ में। श्रोता साथियों, फिर आपको रूबरू करवाएंगे नन्हे मुन्ने बच्चों से जुड़ा विशेष कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की। इस कार्यक्रम को लेकर आएगी हमारी रेडियो साथी, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 6:30 पर। इसी कड़ी में हम रुक करेंगे विशेष कार्यक्रम हमारे मेहमान की ओर। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे हमारे मेहमानों के जीवन परिचय को। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पारशर, इसे आप सुन पाएंगे ठीक 7 बजे। श्रोता साथियों, जैसा कि कार्यक्रम की रूपरेखा मैं आपको बताई रही हूँ, इसी कड़ी में अगला कार्यक्रम होगा 7:30 पर गांधी जी को पाने का एक प्रयास, गांधी आत्मदर्शन। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारा अगला कार्यक्रम होगा कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। इस कार्यक्रम को आप सुन पाएंगे 8:30 पर। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और अंजलि पारशर। श्रोता साथियों, इन्हीं कार्यक्रमों के बाद हम रुक करेंगे गजलों की ओर, सुनेंगे कुछ प्यार भरी गजलों को रात्रि 9 से 10 बजे तक। तो श्रोता साथियों, यह तो थी हमारे आज के कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। तो आइए अब सुनते हैं आज की सभा की शुरुआत में कार्यक्रम आराधना।

जीवन में आने वाले संघर्षों के लिए जब मनुष्य स्वयं को योग्य नहीं मानता, जब उसे अपने ही बल पर विश्वास नहीं रहता, तब वो सब गुणों को त्याग कर दुर्गुणों को अपनाता है। वस्तुतः मनुष्य के जीवन में दुर्जनता जन्म ही तब लेती है जब उसके अंतर में आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही अच्छाई को धारण करता है। ये आत्मविश्वास है क्या? जब मनुष्य ये मानता है कि जीवन का संघर्ष उसे दुर्बल बनाता है, तो उसे अपने ऊपर विश्वास नहीं रहता। वो संघर्ष के पार जाने के बदले संघर्ष से छूटने के उपाय ढूंढने लगता है। किंतु जब वो ये समझता है कि ये संघर्ष उसे अधिक शक्तिशाली बनाते हैं, ठीक जैसे व्यायाम करने से देह की शक्ति बढ़ती है, तो प्रत्येक संघर्ष के साथ उसका उत्साह बढ़ता है। अर्थात आत्मविश्वास और कुछ भी नहीं, मन की स्थिति, जीवन को देखने का दृष्टिकोण मात्र है। और जीवन का दृष्टिकोण तो मनुष्य के अपने वश में होता है। स्वयं विचार कीजिए।

0: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: जागृति बुन, आप कार्य सोचू है, अगर आप बूंदे रुके जाएगा तो हूँ था है।
2: नाना अंजलि बुन हूँ था का
1: अरे जागृति बोन, आपड़ी जे नदिया है ई हुकी जाएगा, खेतर बंजर थे जाएगा, ने आपड़ो जीवन जे है ई भी रुकी जागा।
2: ओ अंजलि बोन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बोन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
2: होवे अंजलि बोन, आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा की नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नो संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बोन, आपड़े भाई बोनो ने कह कि पानी बचावो ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
3: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: के बीच एक एहसास जो हमें मजबूत बनाता रहा, यही महापुरुषों की अनकही प्रेम का।

साथियों, विकास की असली पहचान तब है जब समाज के अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे। समाज की मजबूती केवल साधन संपन्न लोगों से नहीं जागृति जी, बल्कि उस व्यक्ति से खुशहाल होती है जो सबसे पीछे खड़ा है।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट।
1: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
0: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा
1: नमस्कार। जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा को लेकर अपनी नियत समय पर एक नए व्यक्तित्व के साथ में। जागृति जी, आज हम बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन समाज, राष्ट्र और मानव कल्याण के चिंतन को समर्पित किया। उनका नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय।
2: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, हर वर्ष 25 सितंबर को उनकी जयंती मनाई जाती है। वे एक विचारक, लेखक, संगठनकर्ता और राष्ट्र सेवक के रूप में जाने जाते थे। उनका जीवन सादगी, अनुशासन और समाज के अंतिम व्यक्ति के प्रति संवेदनशीलता से जुड़ा रहा।
2: जी हाँ,
1: उनका चिंतन विशेष रूप से अत्योदय और एकात्म मानवतावाद की अवधारणाओं के लिए जाना जाता है।
2: बिल्कुल।
1: आज के कार्यक्रम में हम उनके प्रारंभिक जीवन से लेकर उनके सामाजिक, राजनीतिक जीवन और उनके विचारों और वर्तमान समय में उनकी प्रासंगिकता को समझने का प्रयास करेंगे।
2: बिल्कुल अंजलि, भारत का इतिहास ऐसे महान व्यक्तित्व से भरा हुआ है जिन्होंने अपने जीवन को व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के बजाय समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित कर दिया था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऐसे ही महान चिंतक, लेखक, संगठनकर्ता और राष्ट्र सेवक थे, जैसा कि आपने बताया।
1: बिल्कुल।
2: उनका जीवन सादगी, ईमानदारी, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण का उदाहरण रहा है। श्रोताओं, उन्होंने भारतीय समाज की परिस्थितियों को समझते हुए ऐसी विकास दृष्टि प्रस्तुत की जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण को विशेष महत्व दिया गया। जन्म और बाल्यकाल की बात करें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के नगला चंद्रभान नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय और माता का नाम राम प्यारी देवी था। बचपन में ही उनके माता पिता का निधन हो गया, इस कारण उनका बचपन अनेक कठिन परिस्थितियों में बीता। इन विपरीत परिस्थितियों के बावजूद उन्होंने शिक्षा के प्रति अपनी रुचि बनाए रखी। वे बचपन से ही पढ़ाई में बहुत प्रतिभाशाली थे। कठिन परिस्थितियां उनके रास्ते में बाधा बनी, लेकिन उन्होंने अपने आत्मविश्वास और मेहनत से आगे बढ़ना जारी रखा।
1: बिल्कुल जागृति जी, उनका जीवन हमें यह संदेश देता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, दृढ़ इच्छा शक्ति और मेहनत व्यक्ति को आगे बढ़ने की शक्ति देती है।
2: बिल्कुल।
1: दीनदयाल उपाध्याय पढ़ाई में अत्यंत मेधावी थे। उनका झुकाव केवल पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं था, वे इतिहास, समाज, संस्कृति, साहित्य और दर्शन जैसे विषयों में भी रुचि रखते थे।
2: बिल्कुल।
1: उन्होंने अपने अध्ययन के दौरान समाज और देश की परिस्थितियों को समझने का प्रयास किया। उनकी सादगी उनके व्यक्तित्व की विशेष पहचान थी। वे दिखावे की बजाय विचार और कार्य को अधिक महत्व देते थे।
2: जी हाँ।
1: उन्होंने अपने जीवन में व्यक्तिगत सुख सुविधाओं की अपेक्षा सामाजिक कार्य और राष्ट्र सेवा को प्राथमिकता थी। अगर यही बात करें राष्ट्र सेवा की और उनके कदम कैसे बढ़े, तो श्रोता साथियों, युवा अवस्था में ही दीनदयाल उपाध्याय सामाजिक और राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़े हुए थे। उन्होंने संगठन के माध्यम से जागृति जी समाज में काम करना शुरू किया। उनका विश्वास था कि किसी भी बड़े परिवर्तन के लिए केवल व्यक्तिगत प्रयास पर्याप्त नहीं होता, लोगों को संगठित करके सामूहिक रूप से कार्य करना आवश्यक है। उन्होंने देश के अलग अलग क्षेत्रों में जाकर लोगों से संपर्क किया और संगठनात्मक कार्य को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
2: बिल्कुल।
1: उनकी कार्यशैली में अनुशासन, सादगी और निरंतर मेहनत प्रमुख थी।
2: जी हाँ अंजलि, जैसा कि उनकी कार्यशैली के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनकी कार्यशैली बहुत सरल थी। वे सामान्य लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझते थे और उनका मानना था कि राष्ट्र की वास्तविक शक्ति केवल बड़े शहरों में नहीं बल्कि गांव, किसानों, श्रमिकों और सामान्य नागरिकों में भी निहित है।
1: बिल्कुल।
2: साथ ही जैसे कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में बात कर रहे हैं, तो दीनदयाल उपाध्याय ने कई स्थानों पर शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए अध्ययन किया। वे मेधावी विद्यार्थी थे और शिक्षा के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी उनकी रुचि बढ़ती गई। अंजलि, विद्यार्थी जीवन में ही उनका संपर्क राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हुआ। संघ के विचारों और अनुशासन ने उनके व्यक्तित्व को गहराई से प्रभावित किया। आगे चलकर उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज और राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित करने का निर्णय लिया।
1: बिल्कुल जागृति जी, यही बात करें एकात्मक मानवतावाद क्या है, तो श्रोता साथियों, दीनदयाल उपाध्याय के चिंतन को समझने के लिए एकात्म मानववाद को समझना महत्वपूर्ण है। सरल भाषा में कहा जाए तो उनके विचार में मनुष्य को केवल आर्थिक आवश्यकताओं वाला व्यक्ति नहीं माना जाना चाहिए, मनुष्य के शरीर के साथ उसका मन, बुद्धि और आत्मिक पक्ष भी होता है।
2: बिल्कुल।
1: इसलिए विकास का अर्थ केवल अधिक पैसा, अधिक उत्पादन या अधिक भौतिक सुविधाएं नहीं होना चाहिए। विकास ऐसा हो जिसमें व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और नैतिक पक्षों का भी ध्यान रखा जाए।
2: जी हाँ।
1: ये विचार आज भी हमें यह सोचने का अवसर देता है श्रोता साथियों कि विकास के साथ मानव मूल्य और सामाजिक जिम्मेदारी को कैसे जोड़ा जाना चाहिए।
2: बिल्कुल अंजलि। तो जैसा कि आपने एकात्मक मानववाद का विचार बताया हमारे श्रोता साथियों को, तो आगे भी पंडित दीनदयाल जी के जीवन परिचय से हमारे श्रोता साथियों को हम अवगत करवाएंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: कसम। साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा में। जैसा कि जागृति जी गीत से पहले हम ढेर सारी बातों को जान पा रहे थे, यही बात करें अंत्योदय की भावना की, तो श्रोता साथियों, दीनदयाल उपाध्याय के विचारों में अंत्योदय का विशेष स्थान रहा।
1: बिल्कुल,
0: अंत्योदय का सरल अर्थ है समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय और कल्याण। कल्पना कीजिए श्रोता साथियों कि किसी गांव में सड़क बन गई, बिजली आ गई, पानी की सुविधा आ गई, लेकिन गांव का सबसे गरीब परिवार इन सुविधाओं से वंचित रह गया।
1: बिल्कुल,
0: तो क्या हम कह सकते हैं कि विकास सब तक पहुंच गया? यही प्रश्न अंत्योदय की सोच को महत्वपूर्ण बनाता है। समाज के विकास का आंकलन केवल इस आधार पर नहीं होना चाहिए जागृति जी कि कितने लोगों को लाभ मिला, बल्कि यह भी होना चाहिए और ये भी चीज देखनी चाहिए कि जो व्यक्ति सबसे कमजोर स्थिति में है, क्या वह भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ पाया है। क्योंकि विकास की यात्रा तब पूरी होती है श्रोता साथियों, जब रास्ते के आखिरी व्यक्ति तक भी अवसर और सम्मान पहुंचता है।
1: जी हाँ अंजलि, जैसे कि हम बात करें पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के बारे में, तो वो सादगी और ईमानदारी के भी प्रतीक थे। दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन अत्यंत सादा था। उन्होंने व्यक्तिगत सुख सुविधाओं को कभी प्राथमिकता नहीं दी। वे साधारण वस्त्र पहनते थे और सामान्य जीवन जीते थे। उनका व्यक्तित्व इस बात का उदाहरण था श्रोताओं कि बड़ा बनने के लिए भौतिक साधनों की नहीं बल्कि उच्च विचारों, उच्च चरित्र और सेवा भावना की आवश्यकता होती है।
0: बिल्कुल,
1: वे अपने व्यवहार में विनम्र और दूसरों के प्रति संवेदनशील रहते हैं। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय केवल राजनेता ही नहीं बल्कि एक अच्छे लेखक और चिंतक भी थे। उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विषयों पर लेखन किया। वे भारतीय संस्कृति और भारतीय जीवन मूल्यों को समझने तथा उन्हें आधुनिक संदर्भ में प्रस्तुत करने का प्रयास करते थे।
0: बिल्कुल,
1: श्रोताओं, उनकी रचनाओं और भाषणों में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक समरसता, आत्मनिर्भरता और मानव कल्याण जैसे विषय प्रमुख रहे हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, भारत की बड़ी आबादी लंबे समय से गांव में रहती आई है। कृषि हमारे ग्रामीण जीवन की महत्वपूर्ण आधारशिला है। दीनदयाल उपाध्याय का चिंतन भारतीय परिस्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विकास की बात करता था।
1: बिल्कुल,
0: आज जब हम किसानों की आय, सिंचाई, ग्रामीण रोजगार, स्थानीय उत्पादन और गांवों की आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, तो यह प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाता है कि विकास का लाभ वास्तव में ग्रामीण परिवारों तक किस तरह पहुँचे। गाँव में यदि किसान को उचित जानकारी, बाजार तक पहुँच, सिंचाई तकनीक और आवश्यक सुविधाएं मिले तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सकती है। इसी तरह स्थानीय स्तर पर छोटे उद्योग, हस्तशिल्प, पशुपालन और अन्य रोजगार के अवसर बढ़ाना भी ग्रामीण विकास में योगदान दे सकता है। सामुदायिक जीवन में दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को एक महत्वपूर्ण सवाल से जोड़ा जा सकता है, वह है कि क्या गांव का विकास गांव के लोगों की भागीदारी के बिना पूरा हो सकता है? क्योंकि श्रोता साथियों, गांव के विकास में ग्राम सभा की भूमिका महत्वपूर्ण है। स्थानीय समस्याओं को पहचानना, प्राथमिकता तय करना, उपलब्ध संसाधनों का सही उपयोग करना समुदाय की भागीदारी से अधिक प्रभावित हो सकता है। यदि गांव के लोग मिलकर जल संरक्षण, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और अन्य स्थानीय मुद्दों पर काम करें तो विकास की प्रक्रिया अधिक मजबूत हो सकती है।
1: जी हाँ अंजलि, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन बहुत लंबा नहीं रहा। 11 फरवरी 1968 को मुगल सराय के पास उनका निधन हुआ। उनकी मृत्यु की परिस्थितियों को लेकर लंबे समय तक चर्चा और जांच होती रही। उनके असामयिक निधन से देश के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था। श्रोताओं, आज भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों पर चर्चा होती है, विशेष रूप से अंत्योदय, आत्मनिर्भरता, सामाजिक समरसता, ग्रामीण विकास और मानव केंद्रित विकास जैसे विचार वर्तमान समय में भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आज जब विकास की चर्चा केवल आर्थिक आंकड़ों तक सीमित नहीं रह सकती, तब ये विचार महत्वपूर्ण हो जाता है अंजलि कि विकास का वास्तविक लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। इसी दृष्टि से दीनदयाल उपाध्याय के विचारों को समझा जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जीवन हमें बताता है श्रोताओं कि कठिन परिस्थितियां व्यक्ति के संकल्प को कमजोर नहीं कर सकती है।
0: बिल्कुल,
1: उन्होंने अपने जीवन में सादगी को अपनाया, संगठन को मजबूत किया और समाज के अंतिम व्यक्ति के कल्याण को महत्व दिया। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी अंजलि की विचार और व्यवहार में सामंजस्य हो। उन्होंने जो कहा उसे अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। उनका जीवन राष्ट्र सेवा, अनुशासन, त्याग और सामाजिक जिम्मेदारी की प्रेरणा देता है। किसी भी राष्ट्र की सच्ची प्रगति तब होती है श्रोता साथियों, जब विकास की रोशनी उस व्यक्ति तक भी पहुंचे जो सबसे पीछे खड़ा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जीवन इसी भावना को समझने और समाज के प्रत्येक व्यक्ति के सम्मान तथा कल्याण के लिए काम करने की प्रेरणा देता है।
0: बिल्कुल जागृति जी, दीनदयाल उपाध्याय का व्यक्तिगत जीवन बहुत सादगीपूर्ण था। उन्होंने अपना जीवन व्यक्तिगत संपत्ति और सुख सुविधाएं जुटाने के बजाय सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित किया। उनके जीवन से यह सीख मिलती है कि बड़ा काम करने के लिए हमेशा बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं होती। ईमानदारी, अनुशासन, मेहनत और उद्देश्य के प्रति समर्पण व्यक्ति को प्रभावशाली बनाते हैं। इसलिए कहा गया है कि सादगी व्यक्ति को छोटा नहीं बनाती बल्कि उसके व्यक्तित्व को दिखावे से ऊपर उठाती है।
1: जी हाँ, तो जैसा कि अंजलि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की और अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से विदा लेने का। विदा जरूर लेंगे पर जाते जाते सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के साथ विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से जो भी बातें रही पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जीवन परिचय को लेकर, वो बातें आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम महापुरुषों की प्रेम गाथा, वागड रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वाकथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों, आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारे ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेषर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट। आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM। लेकर हाजिर हूं श्रोताओं कार्यक्रम कथा

कहानी को एक नई प्रेरणादायी शिक्षाप्रद कहानी के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी कहानी का शीर्षक है हमारा मानक समय यानी कि ISD कैसे तय होगा। श्रोता साथियों, युवाओं के लिए विज्ञान, भूगोल और रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर बहुत रोचक तरीके से समझाया जा सकता है हमारा मानक समय। जैसे कि हमें समय की जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहले इसको लेकर हम बात करें तो यात्रा, व्यापार, स्कूल, कार्यालय और संचार के लिए एक सामान्य जरूरी है समय। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है, ये हम सभी जानते हैं। देशांतर रेखाओं के बारे में बात करें तो पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों का समय उनके देशांतर के अनुसार बदलता है। 360 डिग्री और 24 घंटे का संबंध यानी कि पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है, इसलिए 15 डिग्री देशांतर का अंतर लगभग एक घंटे के समय अंतर के बराबर होता है। 0 डिग्री देशांतर को आधार मानकर विश्व के समय क्षेत्रों की गणना की जाती है, जिसे ग्रीनविच का महत्व कहते हैं। भारत की मानक देशांतर की बात करें तो भारत ने 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को मानक समय का आधार बनाया है। ISD क्या है इसके बारे में बताएं तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि भारतीय मानक समय। शुदा ISD और UTC, ISD UTC में से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। मिर्जापुर का महत्व 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर भारत के मिर्जापुर क्षेत्र के पास से गुजरता है, इसीलिए इसे भारतीय मानक समय के आधार के रूप में चुना गया है। एक देश एक मानक समय, भारत में पूरे देश के लिए आधिकारिक रूप से एक ही मानक समय रखा गया है। पूर्व और पश्चिम के अंतर के बारे में बताएं तो अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय राजस्थान या गुजरात की तुलना में काफी पहले हो सकता है, लेकिन घड़ी के आधिकारिक समय समान रहता है। युवाओं के लिए सीख यही है कि घड़ी का समय केवल अंक नहीं बल्कि विज्ञान, भूगोल और देश की व्यवस्था से जुड़ा विषय है। तो दोस्तों, ये तो कुछ मुख्य बिंदु थे इस कार्यक्रम के माध्यम से। हमने आपको बताया हमारा मानक समय ISD कैसे तय होता है। आगे इसकी कहानी के बारे में बताऊंगी, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत। आप बने रहे कार्यक्रम कथा कहानी में वागर रेडियो 90.8 FM पर।

साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे आज के कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत करवाया था कि आज जो कहानी सुनाने जा रही हूँ उस कहानी का शीर्षक है हमारा मानक समय। श्रोता साथियों, कहानी है 5 घंटे 30 मिनट के राज को लेकर। रवि नाम का एक लड़का है। रवि को हमेशा समय की बड़ी चिंता रहती थी। वो सुबह स्कूल जाने से पहले घड़ी देखता और कहता, अरे 7 बज गए, अब जल्दी करनी होगी। एक दिन भूगोल की कक्षा में शिक्षक ने पूछा, बच्चों क्या तुम्हें पता है कि हमारे देश में घड़ी का समय तय कैसे होता है? रवि ने तुरंत हाथ उठाया, कहा, सर घड़ी तो घड़ी बनाने वाली कंपनी तय करती होगी। पूरी कक्षा हंस पड़ी। शिक्षक भी मुस्कुराए और बोले, नहीं रवि, घड़ी बनाने वाली कंपनी घड़ी बनाती है, लेकिन मानक समय विज्ञान और भूगोल के आधार पर तय होता है। रवि की उत्सुकता और बढ़ गई। श्रोता साथियों, टीचर ने बोर्ड पर पृथ्वी का चित्र बनाया। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में लगभग 24 घंटे लगते हैं। इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी लगभग हर 15 डिग्री देशांतर घूमने में 1 घंटे का समय लेती है। ये रवि के टीचर ने बताया। अब रवि के टीचर ने बोर्ड पर लिखा 0 डिग्री। कह रहे हैं कि ये है ग्रीनविच से गुजरने वाली प्रधान मध्यान रेखा। इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशांतर की गणना का आधार माना जाता है। फिर उन्होंने भारत का नक्शा बनाया और 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर पर निशान लगाया। भारत ने इसी देशांतर को अपना मानक देशांतर माना है और इसी के आधार पर पूरे भारत का मानक समय निर्धारित होता है। साथ ही तभी रवि ने पूछा, लेकिन सर भारत तो बहुत बड़ा देश है, अलग अलग जगहों पर सूरज अलग अलग समय पर निकलता होगा। तभी शिक्षक ने कहा, बिल्कुल, अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय राजस्थान की तुलना में काफी पहले हो जाता है, लेकिन हर राज्य अपनी स्थानीय सूर्य स्थिति के अनुसार अलग घड़ी चलाए तो देश में बहुत भ्रम पैदा हो जाएंगे। अब उसे मानक समय समझ में आ रहा था। तभी शिक्षक ने कहा, इसीलिए पूरे देश के लिए एक समान आधिकारिक समय रखा गया है ISTT, जिसे हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। रवि ने पूछा, और ISTT दुनिया के समय से कितना अलग है? तभी सर ने जवाब दिया, ISTT UTC से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। तभी कक्षा में एकदम सन्नाटा था श्रोताओं, लेकिन रवि के चेहरे पर मुस्कान थी। वो बोला, अब समझ आया सर, जब हम घड़ी में समय देखते हैं तो उसके पीछे पृथ्वी का घूमना, देशांतर रेखाएं और गणित सब काम कर रहे होते हैं। तभी रवि के शिक्षक ने कहा, बिल्कुल, यही विज्ञान की खूबसूरती है। जो चीज हमें रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत साधारण दिखाई देती है, उसके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण जरूर होता है। उस दिन रवि घर गया और अपनी छोटी बहन से बोला, तुम्हें पता है हमारी घड़ी सिर्फ समय नहीं बताती, ये हमें पृथ्वी की गति की कहानी भी सुनाती है। तो दोस्तों, कहा गया है कि समय केवल घड़ी की सुइयों का चलना नहीं, बल्कि पृथ्वी की गति और मानव व्यवस्था का सुंदर समन्वय है। हम सभी के जीवन में समय का बहुत महत्व है। सुबह स्कूल जाने का समय, कार्यालय जाने का समय, ट्रेन पकड़ने का समय, परीक्षा का समय या किसी कार्यक्रम का समय, हर काम किसी न किसी समय से जुड़ा होता है। हम अपनी घड़ी देखकर आसानी से बता देते हैं कि अभी कितने बजे हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि भारत में हमारी घड़ी का समय आखिर तय कैसे होता है? भारत में जिस आधिकारिक समय का उपयोग किया जाता है, उसे भारतीय मानक समय कहते हैं। ये समय किसी एक शहर की घड़ी देखकर मनमाने ढंग से तय नहीं किया जाता दोस्तों, जैसा कि अभी रवि के सर ने बताया था, बल्कि इसके पीछे पृथ्वी की गति, देशांतर रेखाएं, खगोलीय गणना और राष्ट्रीय आवश्यकता का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो साथियों, ये थी कहानी हमारा मानक समय। आगे भी इससे जुड़ी कुछ बातें मैं आपको बताऊंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।

के बाद हम फिर से रुक करते हैं श्रोता साथियों कार्यक्रम कथा कहानी में। और जैसे हम बात कर रहे थे, कहानी मैंने आपको बताई थी कि कैसे तय होता है हमारा मानक समय, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगी श्रोता साथियों कि कल्पना कीजिए कि भारत के हर शहर में अलग अलग समय हो। कोई शहर कहे कि अभी 10 बजे हैं, जबकि दूसरे शहर उसी क्षण 10:30 या 11 बजे हो। ऐसी स्थिति में रेल, हवाई यात्रा, दूरसंचार, स्कूल, कार्यालय, बैंक और अन्य संस्थाओं के संचालन में बहुत सारी परेशानी हो सकती है। इसलिए बड़े देशों में एक या अधिक मानक समय निर्धारित किए जाते हैं, ताकि एक निश्चित क्षेत्र के लिए घड़ी का समय समान रखा जा सके। साथ ही पृथ्वी का घूमना और समय को लेकर हम आपको बताएं, तो समय की गणना को समझने के लिए हमें पृथ्वी की गति को समझना बहुत जरूरी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। पृथ्वी को लगभग 24 घंटे में एक पूरा चक्कर लगाने में समय लगता है। पृथ्वी का पूरा गोलाकार चक्कर 360 डिग्री का होता है। इससे गणित का एक सरल संबंध सामने आता है, 360 डिग्री भाग्या 24 घंटे बराबर 15 डिग्री प्रति घंटा, अर्थात लगभग 15 डिग्री देशांतर का अंतर एक घंटे के समय अंतर के बराबर माना जाता है। इसी कारण पृथ्वी पर अलग अलग हिस्सों में सूर्य के दिखाई देने का समय भी अलग अलग होता है। साथ ही देशांतर रेखाओं की भूमिका को लेकर हम आपको बताएं, तो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई काल्पनिक रेखाओं को देशांतर कहा जाता है। इनके माध्यम से पृथ्वी पर किसी स्थान की पूर्व पश्चिम स्थिति निर्धारित की जाती है। 0 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आधार रेखा माना जाता है, जिसे प्रधान मध्यान रेखा कहा जाता है। ये इंग्लैंड के ग्रीनविच से गुजरती है। किसी स्थान का देशांतर जितना पूर्व की ओर होगा, वहाँ स्थानीय सौर समय उतना ही आगे होगा। पश्चिम की ओर जाने पर समय पीछे हो जाता है। भारत का क्षेत्रफल पूर्व से पश्चिम तक काफी बड़ा है, इसलिए भारत के लोग अलग अलग हिस्सों में स्थानीय सौर समय में अंतर पाया जाता है। भारत ने पूरे देश के लिए एक मानक समय रखने के लिए 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर को मानक देशांतर के रूप में अपनाया है, और ये देशांतर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर क्षेत्र के पास से गुजरता है। इसी मानक देशांतर के आधार पर भारत का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम यानी कि IST निर्धारित किया गया है। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको मानक समय के बारे में बताया। इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि हमारी घड़ी में दिखाई देने वाला समय वास्तव में एक लंबी वैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, 360 डिग्री का विभाजन, देशांतर रेखाएं 0 डिग्री, प्रधान मध्यान रेखा और भारत का 82 डिग्री 30 पूर्वी देशांतर, ये सभी मिलकर हमारे मानक समय की व्यवस्था को समझने में मदद करते हैं। भारत का IST UTC से 5 घंटे 30 मिनट आगे है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, और पूरे देश में आधिकारिक समय के रूप में उपयोग किया जाता है। इसलिए श्रोताओं, अगली बार जब घड़ी में समय देखे तो केवल घंटे और मिनट न देखे। याद रखें कि उस समय के पीछे पृथ्वी की गति, भूगोल, गणित और वैज्ञानिक सोच की पूरी कहानी छिपी है। अंत में आपसे कहना चाहेंगे कि समय को समझिए, समय का सम्मान कीजिए और समय का सदुपयोग कीजिए, क्योंकि सही समय पर उठाया गया एक छोटा कदम भी भविष्य की बड़ी सफलता की शुरुआत बन सकता है। कहा गया है कि घड़ी की हर टिक टिक कहती है समय अनमोल है, इसे व्यर्थ न जाने दो। इसी उम्मीद के साथ आज के इस कार्यक्रम से विदा लेती हूँ। विदा लेने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।

साथियों, इस गीत के साथ ही विदा लेती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आज जो कहानी मैंने आपको सुनाई मानक समय को लेकर वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता है कार्यक्रम कथा कहानी वागर रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें ईमेल दे सकते हैं हमारे मेल आईडी पर। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो साथियों, फिर मुलाकात होगी एक नई शिक्षाप्रद कहानी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपने साथी जागृति भट्ट को कार्यक्रम कथा कहानी से जाने की अनुमति। नमस्कार।

0: भाइन बोनो, घर तक ही निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। मानी दुआ, पितानी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में, जिसे आप सभी सुन रहे हैं आपके अपने सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। जैसा कि साथियों आप सभी जानते हैं कि हम आपका पसंदीदा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की को लेकर जब भी हाजिर होते हैं तो आपके लिए लेकर आते हैं ऐसी कहानियाँ जो आपके मन में अच्छे विचारों के बीज बोती है, साथ ही आपको कुछ नया भी सिखाती है और जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती है। तो आज भी कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर हाजिर हुई हूँ। बातें हम कार्यक्रम के माध्यम से बच्चों आज ढेर सारी करेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि हम सभी के जीवन में कभी ना कभी ऐसी परिस्थितियाँ तो आती है जब हमें ऐसा लगने लगता है कि ये काम हम नहीं कर पाएंगे, या फिर जब आसान रास्ता और सही रास्ता हमारे सामने होता है। ऐसे समय में बच्चों हमारे निर्णय ही हमारे भविष्य को आकार देते हैं। तो आज हम आपके लिए कार्यक्रम के माध्यम से कुछ बेहद प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आए हैं। पहली कहानी जो है वो हमें ये सिखाएगी कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, और दूसरी कहानी हमें ये बताएगी कि ईमानदारी की ताकत किसी भी धन दौलत से बड़ी होती है। तो बच्चों, बातें ढेर सारी हम करेंगे कार्यक्रम के माध्यम से, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में गीत संगीत के साथ हम आपको पहले मनोरंजन करवाते हैं, तो पहले आइए सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में आपकी अपनी दीदी कशिश दीदी के साथ।

बच्चों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से मैं स्वागत करती हूँ कार्यक्रम बात नन्ही दिलोकी में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको बता ही दिया था कि आज के इस कार्यक्रम में हमारी बेहद महत्वपूर्ण दो कहानियाँ रहने वाली है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहली कहानी जो होगी वो हमें बताएगी मेहनत और आत्मविश्वास के बारे में, यानी कि मेहनत और आत्मविश्वास से कोई भी लक्ष्य कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो आइए बच्चों, बिना देर किए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली कहानी। कहानी का नाम है छोटा दीपक और बड़ा सपना। अगर इस कहानी के बारे में मैं आपको बताऊं, तो एक छोटे से गांव में दीपक नाम का एक लड़का रहता था। उसके पिता किसान थे बच्चों। परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। गांव में एक छोटा सा सरकारी स्कूल भी था जहां दीपक पढ़ने जाया करता था। दीपक पढ़ाई में बहुत होशियार था दोस्तों, लेकिन उसके पास पढ़ने के लिए अच्छी किताबें नहीं थी, क्योंकि उसके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। कई बार तो बच्चों वह अपने दोस्तों से किताबें मांगकर पढ़ता था। एक दिन क्या हुआ कि स्कूल में शिक्षक ने बच्चों से पूछा कि तुम सब बड़े होकर क्या बनना चाहते हो। किसी ने डॉक्टर कहा तो किसी ने पुलिस अधिकारी बनने की चाह रखी, तो किसी बच्चे ने ये कहा कि गुरुजी मैं शिक्षक बनना चाहता हूँ। लेकिन वही जब दीपक की बारी आई ना बच्चों, तो उसने कहा कि मैं वैज्ञानिक बनना चाहता हूँ सर। ये सुनकर कक्षा के बहुत सारे बच्चे हंसने लगे और कहने लगे, अरे जिसके पास नई किताबें तक नहीं है वह वैज्ञानिक कैसे बन सकेगा। बच्चों ये बात दीपक को बहुत बुरी लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उस दिन उसने अपने मन ही मन में ये तय कर लिया था कि वह अपने सपने को जरूर पूरा करेगा और एक अच्छा वैज्ञानिक बनकर दिखाएगा। अब दोस्तों वह पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा था। स्कूल से लौटकर वह घर के कामों में माता पिता की मदद करता और फिर देर रात तक पढ़ाई करता। गांव में बिजली की समस्या भी बनी रहती थी बच्चों, कई बार घंटों बिजली नहीं आती थी। ऐसे में दीपक लालटेन की रोशनी से पढ़ता था। उसके शिक्षक उसकी लगन देखकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अपनी कुछ किताबें दीपक को दे दी। धीरे धीरे दीपक की मेहनत रंग लाने लगी, क्योंकि वह मेहनत कर रहा था। फिर उसने जिला स्तर की छात्रवृत्ति परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त कर लिया। अब उसे आगे की पढ़ाई करने के लिए आर्थिक सहायता भी मिलने लगी थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। दीपक ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और विज्ञान के क्षेत्र में वह आगे बढ़ता गया। एक दिन क्या हुआ बच्चों, वही दीपक जो कभी लालटेन की रोशनी में पढ़ता था, आज वह देश की प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्था में वैज्ञानिक बन चुका था। जब वह वर्षों बाद अपने गांव लौटा, तो पूरे गांव ने उसका स्वागत किया। वहां वे बच्चे भी मौजूद थे जो कभी उस पर हंसा करते थे। गांव में दीपक के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। उसे मंच पर बुलाया गया। बच्चों मंच पर दीपक ने जाके लोगों से कहा कि सपने देखने का अधिकार हर किसी को है। सपने बड़े हो या छोटे फर्क नहीं पड़ता, केवल हमारा विश्वास बड़ा हो या छोटा ये फर्क पड़ता है। तो बच्चों ये थी हमारी छोटी सी कहानी, छोटा दीपक और बड़ा सपना। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, यदि हमारे अंदर मेहनत और आत्मविश्वास है ना बच्चों, तो हम अपने लक्ष्य तक जरूर पहुँच सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आप भी बच्चों कुछ करना चाहते हैं अपने जीवन में, आपका भी कुछ सपना है, तो आपको भी दीपक की तरह मेहनत करनी चाहिए। लोग तो कहेंगे, लोग आपका मजाक भी उड़ाएंगे, क्योंकि उन्हें आपके आत्मविश्वास और आपकी मेहनत का पता नहीं होता है। इसलिए बच्चों खूब मेहनत कीजिए और अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचिए। इन्हीं बातों के साथ, जैसा कि आज के इस कार्यक्रम में मेरी आपसे पहली कहानी पूरी हो गई, और आगे अब मैं आपको दूसरी कहानी के बारे में बताऊंगी। तो दूसरी कहानी की ओर हम जरूर बढ़ेंगे साथियों, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो बच्चों आप बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में, सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: बच्चों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हुए मैं बढ़ना चाहूंगी हमारी अगली कहानी की ओर। जैसा कि दोस्तों, गीत से पहले हम दीपक की और उसके सपने की कहानी के बारे में जाना था कि किस प्रकार से दीपक की आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर भी उसने लोगों की बातों पर ध्यान नहीं दिया और सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने पर वह ध्यान दे रहा था, जिसके कारण वो एक बहुत अच्छा वैज्ञानिक बना। और जो लोग उसका मजाक उड़ाते थे, आज वही उसके लिए तालियां बजा रहे थे। श्रोता साथियों, तो गीत से पहले जैसा कि दीपक की कहानी तो हमारी पूरी हो गई थी, अब यहीं बढ़ते हैं हमारी दूसरी कहानी की ओर। बच्चों, हमारी दूसरी कहानी का नाम है ईमानदारी का अनमोल पुरस्कार। ये कहानी शुरू होती है कुछ इस तरीके से, जैसे कि एक नगर में आरव नाम का एक लड़का रहता था। वह स्वभाव से काफी सरल और ईमानदार था। बच्चों, एक दिन स्कूल से लौटते समय उसे सड़क के किनारे पर एक बटुआ मिला। उसने बटुआ उठाकर देखा तो उसमें काफी पैसे पड़े थे बच्चों, और कुछ जरूरी कागजात भी थे। आरव के मन में एक पल के लिए विचार आया कि इतने पैसों से तो वो अपनी सारी पसंद की चीजें खरीद सकता है, लेकिन अगले ही क्षण उसे अपने पिता की बात याद आई। बच्चों, आरव के पिता उससे कहते थे कि बेटा आरव, मेहनत से कमाया हुआ छोटा धन भी अमूल्य होता है, और गलत तरीके से मिला बड़ा धन भी बेकार होता है। और ये बात आरव को अच्छी तरीके से याद थी। जैसे ही उसे अपने पिता की बात याद आई, वो उस बटुए को लेकर घर पहुंचा। उसने उस बटुए के बारे में अपने माता पिता को सारी बात बताई। बच्चों, बटुए में एक पहचान पत्र भी था, जिसमें उसके मालिक का पता लिखा हुआ था। अगले दिन क्या हुआ, आरव अपने पिता के साथ उस व्यक्ति के घर पहुंचा। वो व्यक्ति काफी परेशान था, क्योंकि उसके बटुए में बहुत जरूरी दस्तावेज उसके पड़े थे। बच्चों, जब आरव ने बटुआ लौटाया तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह व्यक्ति काफी खुश हुआ। उस व्यक्ति ने आरव से कहा कि बेटा, तुमने मेरी बहुत बड़ी परेशानी दूर कर दी, मैं तुम्हें इनाम देना चाहूंगा। बच्चों, उन्होंने आरव को इनाम के रूप में पैसे देने चाहे, लेकिन आरव ने विनम्रता से कहा कि अंकल, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है, मुझे किसी भी प्रकार का कोई इनाम नहीं चाहिए। बच्चों, ये बात सुनकर वो व्यक्ति काफी प्रभावित हुआ आरव से, और ये बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। कुछ दिनों बाद स्कूल के वार्षिक समारोह में आरव को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। प्रधानाचार्य ने कहा, पढ़ाई में अच्छे अंक लाना महत्वपूर्ण है, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना उससे काफी महत्वपूर्ण होता है। बच्चों, आरव को उस दिन सम्मान मिला वो किसी भी धन से अधिक मूल्यवान था उसके लिए। हम देखते हैं कि ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को लोगों के दिलों में सम्मान दिलाता है, जैसा सम्मान आरव को मिला। पैसा कभी कभी खत्म हो सकता है बच्चों, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर साथ रहता है। इसलिए हमें अपने जीवन में ईमानदारी को तो हमेशा साथ में रखना ही चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ईमानदार होता है ना बच्चों, वही अच्छा इंसान कहलाता है और लोग उसी पर ही विश्वास करते हैं। तो बच्चों, ये थी हमारी आज की दोनों कहानियाँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि इन दोनों कहानियों के माध्यम से आज आपको ढेर सारी प्रेरणा मिली होगी बच्चों, क्योंकि इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से ही हमारा प्रयास रहता है आपसे कि हम आपको अपने जीवन में और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें। तो जैसा कि बच्चों, आज इस कार्यक्रम में मेरी आपसे कहानियाँ पूरी हो चुकी हैं। कुछ छोटी मोटी बातें हैं जो आगे कार्यक्रम में मैं आपसे करूँगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की में।
1: चकरकचीचाचो चकलोरम गंडो वंडो लकरकटम अक्को टक्को इडिगिडिगिडिगो इडिपाई विडिपाई चिकिचकचो गिलिगिलिमल सुलुसुलुमल मकनक हुकुबुकुरे टुकुबुकुरे चकलक बिक्को चिक्को सिलिसिलिसिलिगो बगडुम चकडुम चिकिचकचो।

प्यारे बच्चों, इस गीत के साथ ही आज के इस कार्यक्रम से मैं विदा लेना चाहूंगी। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी कि आज के इस कार्यक्रम में जो दो कहानियां हमारी रही, उनसे हमें बहुत सुंदर संदेश मिले। जैसा कि हमने पहली कहानी के माध्यम से जाना कि कठिन परिस्थितियां सफलता का रास्ता नहीं रोक सकती। यदि हमारे भीतर मेहनत और आत्मविश्वास है तो हमें अपने लक्ष्य तक पहुँचने से कोई नहीं रोक सकता बच्चों। और दूसरी कहानी आरव की कहानी थी, जिसने हमें ये सिखाया कि ईमानदारी और अच्छे संस्कार जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। ऐसे में बच्चों, आप हमेशा याद रखिए कि हर महान व्यक्ति कभी न कभी एक साधारण बच्चा होता ही है। वो महान बनता है उसके अच्छे विचारों, सही निर्णयों और लगातार प्रयासों से। तो बच्चों, अब से आप भी अपने जीवन में एक अच्छा काम करने का संकल्प ले लीजिए कि आप किसी की मदद करेंगे, हमेशा सच्चाई का साथ देंगे और अपने सपनों की ओर एक कदम जरूर बढ़ाएंगे। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ बच्चों, अब मैं कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ कि आज के इस कार्यक्रम में जो भी मेरी आपसे बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आपको जरूर पसंद आए होंगे। तो बच्चों, आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, हमारा पता है कार्यक्रम बात नन्हे दिलों की, बागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों, मेरी आपसे फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में कुछ नई प्रेरणादायक कहानियों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दीदी कशिश दीदी को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार बच्चों।

0: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तक ही करो, थोड़ू सी व्यायाम ने तात्काली नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकीस आराज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए? एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को? भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
1: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी, महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

साथियों, जिंदगी में सफलता का कोई छोटा रास्ता नहीं होता। हर उपलब्धि के पीछे लगातार की गई मेहनत होती है। कई बार रास्तों में मुश्किल आती है और मन हारने लगता है, लेकिन वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो मुश्किल समय में भी कोशिश जारी रखता है। इसलिए अपने मेहनत पर भरोसा रखिए। आज की छोटी कोशिश ही कल की बड़ी सफलता बन सकती है।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का स्वागत करती हूँ कार्यक्रम हमारे मेहमान में। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारशर। स्वीकार करिएगा मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। लेकर हाजिर हो चुके हूँ श्रोता साथियों कार्यक्रम हमारे मेहमान को लेकर एक नई शख्सियत के साथ में। आज हमारे कार्यक्रम से नए मेहमान अवश्य जुड़ेंगे, तो आइए सबसे पहले सुन लेते हैं उन्हीं के जीवन की ढेर सारी बातों को। नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं वागड़ रेडियो परिवार में।
1: धन्यवाद।
0: जैसा कि आज आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं और हमारे सभी श्रोता साथी जानते हैं कि कार्यक्रम हमारे मेहमान में हम हर रविवार को कार्यक्रम के माध्यम से विशेष अतिथि को जोड़ते हैं, उनके जीवन से रूबरू होते हैं। तो आज जैसा कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपका परिचय जानना चाहूंगी।
1: जी मैम, मेरा नाम मानसिंह निनामा, ब्लॉक आनंदपुरी सुंदराव का ही रहने वाला हूँ।
0: बिल्कुल। तो जैसा कि आपने आपका परिचय हमें बताया, तो सबसे पहले मैं कार्यक्रम के माध्यम से आपके बचपन के बारे में जानना चाहूंगी कि आपका बचपन किस कदर बीता।
1: मैं मेरा बचपन शुरुआत से ही मेरा परिवार है वो खेती से जुड़ा हुआ है और ग्रामीण क्षेत्र में ही रहने वाले हैं पूरा परिवार, और मेरा जन्म ही वही सुंदराव में ही हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: और माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, पर खेती पशुपालन और जो भी छोटा मोटा काम है वो संभालते हुए हमें कहीं न कहीं विद्यालय से जोड़ा। और विद्यालय में पहले तो पता नहीं, बस हम पढ़ रहे थे, बस स्कूल जाना, खेलना, वापस आ जाना, इस तरह की प्रक्रिया करते रहते थे। बाकी कोई इतना सारा समझ तो उस दिन नहीं थी, पर धीरे धीरे धीरे माता पिता ने भेजा तो हम विद्यालय में पाँचवीं तक पढ़ाई लिखाई करने के बाद दूसरे विद्यालय में छठी में एडमिशन कराया। पर माता पिता भी जैसे पढ़े लिखे नहीं थे
0: जी जी,
1: पर चलो उनके मार्गदर्शन, चलो शिक्षा जरूरी है, तो उनके दिमाग में होगा कि नहीं मेरे बेटे को पढ़ाना चाहिए, तो बस पढ़ाई लिखाई मैंने करीबन मेरे गांव के अंदर ही 12वीं तक मैंने पढ़ाई की है सुंदराव के अंदर
0: जी जी।
1: उसके बाद मैंने 12वीं क्लियर कर लिया, फिर माता पिता ने सोचा सही है, ये 12वीं तक तो पूर्ण कर ली है तो क्यों नहीं बेटे को कॉलेज तक भी भेजना चाहिए
0: जी जी।
1: तो मैंने कॉलेज भी पूर्ण किया, नहीं बीए कंप्लीट किया। उसके बाद जब ये होता है कि मैंने बीए कंप्लीट किया है तो कहीं ना कहीं कोई डिप्लोमा की आवश्यकता रहती है, तो मैंने ग्रेजुएशन बीएड किया मैंने, तो वो लगभग 2007-08 में कंप्लीट किया उसको।
0: बिल्कुल।
1: और उसके बीच में यानी कि वैसे भी गांव के अंदर इतनी सुविधाएं थी नहीं
0: जी जी।
1: जब ये विद्युत की बात आती है तो विद्युत की भी प्रॉब्लम थी, मैंने चिमनी से मैं पढ़ा हूँ, और कहीं ना कहीं हमारा जैसे चारा है घास उसको अपने कमरे के अंदर बिछा देते और ठंड के समय में वहीं से पढ़ लेते थे, ऐसा पूरा गांव का माहौल था, घर का परिवार का। उसके बाद धीरे धीरे धीरे समस्या तो बहुत सारी जैसे रही, विद्युत की रही है, प्लस बाहर आना, बांसवाड़ा आना, तो वो भी जैसे कहीं ना कहीं आवागमन की प्रॉब्लम रही, और माता पिता इतने पढ़े लिखे नहीं थे तो उनको भी ज्यादा जैसे इस तरह की खेती को लेकर भरपूर उनको दिमाग में था पर एजुकेशन को लेकर नहीं था।
0: बिल्कुल।
1: तो भी उन्होंने मार्गदर्शन दिया, देते रहे, क्योंकि शिक्षा जरूरी है, तो कहीं ना कहीं पढ़ाए तो
0: काम आएगा,
1: बदलाव करेगा बेटा, हम खेती से जुड़े तो खेती में बदलाव या समाज में, तो ये रहा है। पर इसके बीच में पारिवारिक समस्या भी बहुत बड़ी रही है मेरे सामने। जैसे परिवार, जैसे गांव में, घर में, परिवार के अंदर ही जैसे कहीं ना कहीं झगड़ा, इस तरह का दबाव या कमजोर करना, ये भी रहा, पर मैंने कहीं ना कहीं हार नहीं मानी है और मैंने अच्छे से उसका मुकाबला करना सीखा।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि आप हमें बता रहे हैं कि किस तरीके से आपका जो बचपन है वो रहा, आपने 12वीं तक पढ़ाई की, फिर उसके बाद आपने आगे भी बीए बीएड भी किया है, जैसा कि आप हमें बता रहे हैं, यह सारी जो आपने पढ़ाई की है वो ऐसे गांव से की है जहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी, साथ ही आपकी स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी कि आपको बहुत सारी सुविधाएं मिले और फिर आप पढ़ाई करें। तो जैसा कि आपने आपके पढ़ाई के क्षेत्र के बारे में हमें बताया, तो ये जब पढ़ाई आप करते थे तो आपका क्या जीवन का उद्देश्य था, आपके मन में क्या था, अगर आपको सुविधाएं और कई सारी चीजें मिलती तो आप क्या बनना चाहते थे बड़े होकर?
1: इसमें मैं सोच रहा था कहीं न कहीं मेरे दिमाग में तो जैसे मैं पढ़ रहा था तो भी दिमाग में चल रहा था मैं शायद देश के लिए कुछ करूं। तो मैंने ये प्रयास भी 2002 में किया जब आर्मी की भर्ती हो रही थी, उसमें मैंने यानी कि मेरी जिंदगी का पहला कदम है वो रखा था कि 250 लाभार्थी के अंदर दौड़ के अंदर तीसरा स्थान प्राप्त किया।
0: बिल्कुल
1: मकसद वही सोच के क्यों न कि मैं देश की रक्षा के लिए काम करूं, पर मेरी बर्थडे ने सहयोग नहीं किया, उम्र बड़ी तो शायद मुझे उस दिन बाहर आना पड़ा था। मेरा सर्टिफिकेट लेकर अंदर गया था तो हो जाएगा यूं कह दिमाग से, लेकिन जब संबंधित अधिकारी ने देखने के बाद वापस दिया तब मुझे इतना यानी कि निराश हो गया उस दिन, क्योंकि ये पोजीशन ये पद ये देश की गरिमा के लिए नौकरी करता तो मैं बाहर जा रहा हूँ। हताश होके बाहर में वापस सर्टिफिकेट के साथ बाहर निकला था, ये उस दिन मेरा कहीं ना कहीं दुख का कारण था।
0: बिल्कुल ये बहुत बड़ी दुख की बात है क्योंकि हमारा सारी चीजें प्रोसेस अच्छा हो गया लेकिन एक उम्र की वजह से आपकी आर्मी में आपका सिलेक्शन होने से रह गया। तो सर जैसा कि आप बहुत अच्छी बातें हमें बता रहे हैं तो इन सारी चीजों से आप बाहर कैसे निकले, आपने अपने जीवन को कैसे बदला और अभी के समय में आप क्या कर रहे हैं?
1: इसमें अगर उस मोड में वापस जाए तो कहीं न कहीं दिमाग में यानी कि उद्देश्य या जो ये कहते हैं कि नहीं मुझे इस मंजिल तक जाना है या मुझे मेरे प्रयास को बंद ही करना चाहिए। निरंतर मैं जब दूसरे उद्देश्य से देखे तो मैंने कहीं न कहीं समुदाय को देखा उस दिन, जब मेरा समाज किस स्थिति में है, अच्छा वो कमजोर क्यों है, अच्छा उनको कहाँ पे वो पीड़ा या जो यातनाएं रोक रही है, तो उसका मुकाबला करते करते मैंने कहीं न कहीं इस प्राइवेट सेक्टर को देखा। तो मैंने 10 साल तक तो पीएस स्कूल में बच्चों को शिक्षा के लेकर, जहाँ बच्चे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का स्कूल नहीं था और ऐसे स्तर पे इसी जगह पे विद्यालय चालू किया, फिर मैंने 10 साल तक विद्यालय के बच्चों को पढ़ाया, फिर वहीं से मैंने ये यानी कि निरंतर प्रक्रिया मेरी चलती रही कि बच्चों को गाइड करना, ये करना, बच्चों के साथ बैठना, अभिभावकों के संपर्क करना और हमारे समाज को दिशा देने की सख्त जरूरत है। मेरे मन में भी ये उगता रहता कहीं ना कहीं, मैं चलो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का नहीं लेकिन मैं उस सेक्टर में जाके भी मेरी बात को समाज के साथ जुड़ा रहूं।
0: बिल्कुल सर आपने सही कहा। तो अभी के समय में आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया, अभी आप जो कार्य कर रहे हैं क्या आप उससे संतुष्ट हैं?
1: बिल्कुल मैं संतुष्ट हूँ। जब धीरे धीरे इस उम्र तक मैं कहीं न कहीं बच्चे के साथ, महिलाओं के साथ, महिलाओं बच्चों के साथ और इस सेक्टर में आने के बाद मुझे ये लग रहा है कि मैं कहीं न कहीं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का काम था इससे हटके कर रहा हूँ और ये लग रहा है कि मैं कहीं ना कहीं एक टीचर बनता था, मेढक की तरह कुएं में रहता, पर यहाँ आने के बाद मुझे दिख रहा है कि मैं पूरे संसार में या अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग विभागों में अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो भाषा का फर्क है, कामों का फर्क है, विभाग क्या कर रहे हैं, जो नेता क्या कर रहे हैं, उसमें अपने आप में मेरी भी तरक्की हुई, मैं समझने की कोशिश की है, बोलने की क्षमता विकसित हुई है और मैं कहीं ना कहीं जाता हूँ तो जैसे वाग्धारा परिवार की बात होती है, जैसे कृषिवादी स्वराज संगठन की बात होती है, तो हम अगर एक साथ जुड़ेंगे एक साथ रहेंगे तो संगठन में ताकत रहती है और हम एक साथ

0: जो है अगर गुण, तो मैं उस समुदाय या व्यक्ति को बदलने के लिए प्रयास करता हूँ तो वो व्यक्तित्व बदलता है, या उसके शिक्षा जरूरी है पर उसके साथ संस्कार व्यवहार और मानवता अगर जुड़ती है तो उस शायद परिवार या गांव का बदलाव दिखता है। उसको मैं आज भी सोच रहा हूँ और बदलने की कोशिश कर रहा हूँ।
1: बिल्कुल, तो जैसा कि आपने आपके जीवन परिचय से हमारे सभी श्रोता साथियों को रूबरू कराया है, तो अंत में आप कार्यक्रम के माध्यम से हमारे जो श्रोता साथी ये कार्यक्रम सुन रहे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: मेरा तो एक ही इसमें संदेश है मैम कि व्यक्ति को बैठना नहीं चाहिए, निरंतर अच्छे विचार के साथ बढ़िया कर्म करते हुए चलना चाहिए और अपने आप व्यक्तित्व को बदलने की आवश्यकता है। अगर खुद अपने विचार और व्यक्तित्व को बदलता है तो शायद सामने वाला भी उसको देख के भी बदल सकता है। तो मेरा तो एक ही जो श्रोता है उनसे निवेदन है कि समाज के अंदर अच्छा काम करे, अच्छा व्यवहार रखे, सबको साथ में लेके चले, संगठित रहे और शिक्षा से जुड़ के नौकरी अलग सीजे पर नौकरी नहीं होने के बाद भी समाज में अपने व्यवहार को और संस्कारों को ध्यान में रखते हुए समाज को मजबूत स्थिति में लाने के लिए आप तैयार रहें।
1: बिल्कुल, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: धन्यवाद।
1: श्रोता साथियों, जैसा कि अभी हमारे बीच में मान सिंह जी नीनामा जुड़े हुए थे और उनके माध्यम से हमने ढेर सारी बातों को जाना, अंत में यही कहना चाहूंगी श्रोता साथियों कि मुश्किल समय जिंदगी का अंत नहीं एक नया सबक होता है। जब परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती तब हमारा हौसला हमारी सबसे बड़ी ताकत बनता है। हर परेशानी हमें कुछ न कुछ सिखा कर जाती है, इसलिए कठिनाइयों से घबराने के बजाय उनसे सीखने की कोशिश करें, क्योंकि याद रखिए रात कितनी भी लंबी हो सुबह जरूर होती है, बस उम्मीद और प्रयास दोनों बनाए रखना जरूरी है। तो आशा करते हैं कि आज कार्यक्रम में हमारे जो मेहमान थे उनकी जीवन की जो बातें थी वो आपको अवश्य पसंद आई होगी। अब समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, विदा जरूर लूंगी लेकिन जाने से पहले सुन लेते हैं एक और प्यारा सा गीत।

सोचना कि तुम्हारी लड़ाई खत्म हो गई, क्योंकि जो इंसान अंधेरे से लड़ना सीख जाता है वही रोशनी की कीमत समझता है। और याद रखो,

जिंदगी सबसे बड़ी सच्चाई क्या है जानते हो? जो इंसान टूटने के बाद भी मुस्कुराना सीख जाता है, उसे कोई हरा नहीं सकता। पर याद रखना,

साथियों, इस गीत के साथ ही अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम हमारे मेहमान से विदा लेती हूँ। आपको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा, उसके लिए आप अपने राय सुझाव हमें जरूर पहुँचाइएगा पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखें, कार्यक्रम हमारे मेहमान, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपरा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नई शख्सियत के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर को कार्यक्रम हमारे मेहमान से जाने की अनुमति। इसी अनुमति के साथ नमस्कार।

0: जागृति बुन, आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बोन हूँ था का
0: अरे जागृति बोन आपड़ी जे नदिया है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बोन एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बोन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बोन आपड़े भाई बोन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नो संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नो जीवन सफल थी जागा।
0: होवे होवे जागृति बोन आपड़े भाई बोनों ने कहो कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: दोस्तों अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: एक माँ जो पूरी उम्र परिवार के लिए अपना सब कुछ दे देती है, क्या उसे अपने ही घर में अपने नाम की जमीन नहीं मिलनी चाहिए?
3: एक बेटी जो सपने लेकर बड़ी होती है, क्या उसे वाकई उतना हक मिलता है जितना उसके भाई को?
4: भूमि अधिकार सिर्फ दस्तावेज नहीं, ये सुरक्षा है, सम्मान है और महिला की उस पहचान का प्रमाण जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं।
3: आइए आज हम बदलाव की शुरुआत करें, महिलाओं को दे उनका हक जमीन पर भी जिंदगी में भी। महिलाओं के भूमि अधिकार, क्योंकि बराबरी का वादा पूरा भी होना चाहिए। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
0: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके,
1: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
0: होवे भाई बोनो आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
1: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
0: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
1: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातु जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा।
3: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: हाजिर है साथियों कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन में।
3: साथियों न हिंसा का रास्ता न झूठ का साथ, सत्य और शांति बने जीवन की बात। बापू का संदेश दिलों में उतारें, मिलजुल कर भारत को बेहतर बनाएं।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर।
1: मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर।
0: स्वीकार करिएगा हमारा प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन को अपने नियत समय पर राष्ट्रपति प्रकरण के साथ में। जैसा कि कशिश, पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम में हमने इसी प्रकरण में ढेर सारी बातों को जाना, वहीं
1: हाँ।
0: इन बातों को अगर आगे जाने तो श्रोता साथियों, अस्पर्श कहलाने वाले करोड़ों लोगों के प्रति देश के अधिकांश वर्ण हिंदुओं का व्यवहार अत्यंत अन्यायपूर्ण और शर्मप्रद था। बहुत से स्थानों पर तो उन्हें मनुष्य में ही नहीं गिना जाता था। गांधी जी ने अस्पृश्यता को हिंदू धर्म का कलंक कहा।
1: बिल्कुल।
0: अपनी उम्र के अंतिम 14 वर्षों तक अपने मुखपत्र को उन्होंने अस्पृश्यों हेतु स्वयं के दिए गए हरिजन नाम के साथ जोड़ा। विशेष रूप से उन्हीं की सेवा के लिए उन्होंने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। अपने आश्रमों में अस्पृश्यों के गिने जाने वाले मल मूत्र सफाई के काम, मृत पशुओं के चमड़े उतारने और चप्पले जूते बनाने के काम, बुनाई आदि काम करवाए थे। कोचरब आश्रम में आते ही उन्होंने आश्रम में एक अस्पर्श परिवार को रखा था, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक बहिष्कार और दूसरी तरफ परिवार को क्लेश सहना पड़ा, ऐसी स्थिति आई थी।
1: बिल्कुल।
0: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि अनेक स्थानों पर उन्हें सार्वजनिक सभाओं में सनातनियों द्वारा काले झंडे आदि दिखाए गए थे। उनकी स्थापित संस्था आज तक दलितों को शिक्षण आदि कार्य में सहायता देती है।
1: जी हाँ।
0: राष्ट्र निर्माण में ऊंच नीच के भेद को भुलाने के लिए कशिश उन्होंने जो प्रयास किए, उनके परिणाम स्वरूप इस देश से अस्पृश्यता समाप्त तो नहीं हुई, परंतु वह अप्रतिष्ठित तो हो ही गई।
1: बिल्कुल अंजलि जी। साथियों, राष्ट्रीय एकता का एक ऐसा ही अन्य प्रयास ये भी हुआ, वह भी अधूरा रहा। वह था सांप्रदायिक सौहार्द्र का।
0: बिल्कुल।
1: इस प्रयास में अंजलि जी वे पूरे सफल नहीं हुए। अंततः इसी प्रयास में उन्होंने अपना जीवन बलिदान कर दिया था। ये अधूरा या पूरा सफल प्रयास भी इस देश को एक राष्ट्रीयता प्रदान करने में सहायक ही सिद्ध हुआ था, ऐसा कहा जा सकता है। सांप्रदायिक एकता के प्रयोजन से ही उन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया था। साथियों,
0: बिल्कुल,
1: इस आंदोलन को शांतिपूर्ण रखने में वे सफल रहे थे और इसी उद्देश्य से उन्होंने एक बार 21 दिनों के और दो बार आमरण अनशन किए थे। इसके लिए ही उन्होंने नोआखली और बिहार के गांवों में तथा कलकत्ता और दिल्ली जैसे महानगरों में भी प्राणों को खतरे में डालकर शांति स्थापना के प्रयास किए थे। अलबत्ता आखिरी प्रयास में उनको सफलता प्राप्त नहीं हुई, पर उन्होंने विभाजन को स्वीकार नहीं किया था।
0: बिल्कुल।
1: साथियों, विभाजन के पश्चात देश ने उन्हें राष्ट्रपिता के रूप में सम्मानित किया था और विभाजित देश के दूसरे भाग ने भी उनको आदर मान ही दिया था। देश को एक राष्ट्र का रूप देने के लिए गांधी जी को अनेक क्षेत्रों में अनेकानेक प्रकार के प्रयास करने पड़े थे। अंजलि जी, वर्ग, जाति, संप्रदाय, भाषा, लिंग, इन सभी के भेदों को समाप्त करने के लिए उन्होंने जो खास खास प्रयास किए थे, उनका उल्लेख श्रोता साथियों हम पहले बता चुके हैं। इन तमाम प्रयासों के पीछे गांधी जी ने जो सूक्ष्म चिंता व्यक्त की थी और अनेक मंद मतांतरों और अनेक परस्पर विरोधी हितों के मध्य भी संतुलन बनाए रखते हुए समग्र के हित में एक समूह के हित को कैसा गुण रखा था, उस पर अब विचार करते हैं। संक्षेप में, गांधी जी ने देश को राष्ट्रत्व प्रदान करने की प्रक्रिया में कैसे कैसे उपकरणों का उपयोग किया था, उस पर भी हम अब विचार करते हैं।
0: जी हाँ कशिश, गांधी जी ने दक्षिणी अफ्रीका से स्वदेश आने के बाद एक वर्ष तक तो घूम घूम कर देश को देखा। वे छोटे बड़े और अलग अलग हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले नेताओं से मिले। विविध प्रकार की अनेक संस्थाओं में उन्होंने खास तौर से निरीक्षक के रूप में भाग लिया। रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे में उन्होंने हजारों मील की यात्रा की। छोटी छोटी सभाओं से लेकर जहां लाखों का जन समुदाय इकट्ठा होता, ऐसे कुंभ मेले में भी उन्होंने हाजिरी थी। वे किसानों, मजदूरों, व्यापारियों, उद्योगपतियों और राजाओं से मिले। देश के अलग अलग सभी प्रांतों में वे घूमे और सभी भाषाएं बोलने वाले से उन्होंने संपर्क साधा। ऐसा करके उन्होंने देश की परिस्थिति का अनुमान लगाया। श्रोता साथियों, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोगों के साथ उन्होंने देश की स्थिति के बारे में चर्चा परिचर्चा की।
1: बिल्कुल।
0: इस प्रकार सूचनाओं से सुसज्जित होकर उन्होंने देश के नेताओं के विचारों से अपने दक्षिणी अफ्रीकी अनुभव की तुलना की। बाहर से आए नेता के रूप में उन्होंने तटस्थ भाव से निरीक्षण भी किया और अनेक वर्गों और विचारधाराओं के बीच घूम फिर कर भीतर से भी निरीक्षण किया।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, इसी के आगे अगर बात करें तो एक वर्ष में उन्होंने पूर्ण तैयारी कर ली थी साथियों।
0: बिल्कुल,
1: उनका सबसे बड़ा अनुभव सत्याग्रह का था। अनायास ही 1917 से 18 के एक वर्ष में उनके समक्ष सत्याग्रह को अमल में लाने की

0: प्रसंग सामने आए थे। इस अनुभव और तैयारी के आधार पर उन्होंने संपूर्ण देश के समक्ष जो पहला कार्यक्रम प्रस्तुत किया था वो ऐसे विषय को लेकर था जिसके बारे में पूरे देश में एक समान रोष था, और वह था रोलट एक्ट। उन्होंने कार्यक्रम भी ऐसा दिया साथियों जिसमें हिंदू मुसलमान स्त्री पुरुष सब शामिल हो सके। अपने परिवार में वार त्योहार जो करने का उनका अभ्यास था उसे ही संपूर्ण देश के विरोध प्रदर्शन के रूप में करने की उन्होंने राष्ट्र से अपील की थी।
1: बिल्कुल।
0: और वह था उपवास या रोजा। कभी कभी अपने निजी या सामूहिक हित में जो साधन लोग प्रयोग में लाते थे हड़ताल का साधन, उसे उन्होंने एक निश्चित तिथि को पूरे राष्ट्र के प्रतिकार स्वरूप काम में लाने का सुझाव दिया।
1: बिल्कुल।
0: वहीं अंजलि जी, भारत की संस्कृति में उपवास या रोजा भारत के महाजनों की हड़ताल और राष्ट्र का उस समय का प्रज्वलित प्रश्न तीनों उनके कार्यक्रम में इकट्ठे हो गए। इससे उन्हें अकल्पनीय सफलता मिली साथियों।
1: बिल्कुल। तो जैसा कि कशिश कार्यक्रम में बहुत अच्छी बातें चल रही है,

0: साथियों, जैसा कि गीत से पहले हम राष्ट्रपति प्रकरण में ढेर सारी बातों को जान रहे थे, यही बात करें तो इसी काल में उन्होंने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। प्रांत प्रांत से इसमें शामिल होने वाले लोगों में जाति, संप्रदाय या धर्म का भेदभाव नहीं था। विश्व हित के लिए अविरोधी राष्ट्र सेवा इस आश्रम का उद्देश्य था। इसके लिए तैयार की गई नियमावली में पहले 5 उद्देश्य तो ऐसे थे जो सभी धर्मों द्वारा उद्देशित थे। मात्र इस समय तक जिन नियमों या व्रतों को वैदिक सीमा तक माना जाता था, उन व्रतों को सर्वजन हिताय व्यवहार में लाने के प्रयास हुए। गांधी जी जो कहते थे वही करते थे। उनके इस पारदर्शी ईमानदारी ने उन्हें राष्ट्र में एक अनोखा स्थान प्रदान किया। यह सत्याग्रह इस राष्ट्र का एक अत्यंत लघु रूप था। देश की स्वाधीनता इसका हेतु था। सत्याग्रह इसके लिए कार्यक्रम था और इसमें शामिल होने वाले लोगों में किसी भी तरह के भेदभाव से रहित एकात्म भाव था। गांधी जी ने अपने वर्ष भर के निरीक्षण काल में यह भी देखा कशिश कि संपूर्ण देश की स्वतंत्रता का उद्देश्य सामने रखकर चलने वाली कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसके सामने कोई दूसरा हित आने जैसा नहीं था। मुस्लिम लीग या हिंदू महासभा की भांति यह किसी एक हित की समर्थक संस्था नहीं थी। यह संपूर्ण देश का हित करने वाली संस्था थी। मात्र यह संस्था अभी तक देश की एक पढ़े लिखे छोटे से वर्ग की ही प्रतिनिधि बनी हुई थी। इसे विशाल जन समुदाय का समर्थन नहीं था। यह वर्ष में एक बार इकट्ठी होकर प्रस्ताव पारित करने के अलावा कोई काम नहीं करती थी। यह लोगों की भाषा में भी नहीं बोलती थी।
1: बिल्कुल साथियों, मुख्य रूप से लोकमान्य तिलक के आग्रह से गांधी जी को ऐसी कांग्रेस का विधान तैयार करने का काम सौंपा गया। उन्होंने ऐसा संविधान बना कर दिया जिससे कांग्रेस की काया ही पलट जाए। उन्होंने कांग्रेस को पूरे वर्षों में काम करने वाली संस्था का संविधान दिया।
0: बिल्कुल,
1: इसकी सदस्यता उन सबके लिए खुली रखी गई जो कांग्रेस के उद्देश्य माने और 4 आना शुल्क भरे। दोस्तों, कांग्रेस के 2-2 अधिवेशनों के मंथन के अंत में गांधी जी ने उन्हें असहयोग कार्यक्रम सौंपा। इस कार्यक्रम से मानो देश में बिजली दौड़ गई। राष्ट्र की मुक्ति के लिए राष्ट्र का सामान्य नागरिक भी अपने बूते के अनुसार कर सके, ऐसा यह कार्यक्रम था।
0: बिल्कुल,
1: देश में पहली बार अंग्रेजों के विषय में शिकायत करने वालों ने अंग्रेजों द्वारा प्रदत्त मान सम्मान छोड़ दिए और पहली बार पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग जेल जा रहा था।
0: बिल्कुल,
1: देश में पहली बार विद्यार्थियों और अध्यापकों ने देश की मुक्ति के लिए अपने विद्यालय महाविद्यालय छोड़ दिए थे। त्याग के आंदोलन लोगों को एक दूसरे को जितने नजदीक लाते थे अंजलि जी, उतनी ही भोग की प्रवृत्तियां कदापि नहीं लाती। दोस्तों, राष्ट्रीयता की भावना जितनी जेलों में या जुलसों में लाठियां झेलते हुए विकसित हुई होंगी, उतने शायद ही कहीं विकसित हुई होंगी।
0: बिल्कुल,
1: राष्ट्रपिता द्वारा बनाया हुआ कार्यक्रम ही देश को राष्ट्र बनाने के लिए पोषक था। हम कह सकते हैं कि एकात्मकता अकेले पूरे देश को समेट लेने वाली होती है, यही पर्याप्त नहीं था। जिस संस्था के माध्यम से राष्ट्रीयता साधन थी, उस संस्था में पूरी एकात्मक भावना विकसित हो, यह जरूरी था अंजलि जी।
0: बिल्कुल,
1: कांग्रेस में फूट पड़े ऐसे कम से कम 3 प्रसंगों में गांधी जी की कुशलता, उनके व्यक्तित्व और उनकी उदारता से वह फूट टल गई थी।
0: यही बात करें कशिश, तो 1922 से 1924 के बीच जब गांधी जी जेल प्रवास पर थे, तब कांग्रेस कार्यकर्ता परिवर्तनवादी और अपरिवर्तनवादी 2 दलों में बट गए। अपरिवर्तनवादी ऐसा मानते थे कि कांग्रेस को असहयोग और रचनात्मक कार्यक्रम चालू रखने चाहिए, इसमें कोई फेर बदल नहीं होना चाहिए। अपरिवर्तनवादियों में चक्रवर्ती, राजगोपालचारी, वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महादेव देसाई, जमनालाल बजाज जैसे लोग थे। परिवर्तनवाद मानते थे कि कौंसिल के बहिष्कार का कार्यक्रम समाप्त कर देना चाहिए, कौंसिल के भीतर प्रवेश करके अंदर से स्वराज के लिए लड़ना चाहिए। ऐसा मानने वालों में चित्रंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल बुजुर्ग थे। यह मतभेद कभी कभी परस्पर विरोधी तीव्र निवेदन प्रकाशित करने तक पहुंच जाता था। परिवर्तनवादियों ने तो स्वतंत्र स्वराज पार्टी नामक दल स्थापित करके कौंसिल में जाकर कांग्रेस को सहयोग देने तक की प्रवृत्ति की थी। गांधी जी स्वयं जब जेल में थे, तब किसी भी प्रकार के राजनीतिक सवाल का प्रतिक्रिया न देना अनुशासन मानते थे।
1: बिल्कुल,
0: बीमारी की वजह से जब गांधी जी को बिना शर्त छोड़ दिया गया, तब ये दोनों विचारधारा के लोग गांधी जी की प्रतिक्रिया पूछने लगे। अपरिवर्तनवादियों को ऐसी आशा थी कि वे लोग गांधी जी के द्वारा बताए मार्ग पर चलने की ही बात कहते थे। गांधी जी उनको 100% समर्थन देंगे। गांधी जी गतिशील व्यक्ति थे, उन्होंने संपूर्ण परिस्थिति देखकर दोनों दलों से अपना अपना कार्यक्रम चालू रखने का सुझाव दिया। जिसे काउंसिल में जाना हो वो वैसा करे, और जिन्हें जेल में जाना हो या रचनात्मक कार्यों में शामिल होना हो वे वैसा करें।
1: बिल्कुल,
0: परिवर्तनवादी इससे थोड़े निराश तो हुए, पर इन लोगों की गांधी जी के प्रति श्रद्धा इतनी गहरी थी कि कुछ समय में ही उस निराशा को दूर करके वे रचनात्मक कार्यों या लोक जागृति के कार्यों में जुट गए। इसके विपरीत यदि गांधी जी ने अपरिवर्तनवादियों की बात को ही मान्यता दी होती तो कदाचित उन्हें देश के बहुत बड़े नेताओं का साथ हमेशा हमेशा के लिए गवा देना पड़ता।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि कार्यक्रम गांधी आत्मदर्शन के माध्यम से हम राष्ट्रपति प्रकरण को लेकर ढेर सारी बातें कर पाए हैं, अगले रविवार को हमारी दोस्तों से इसी कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी इसी प्रकरण से जुड़ी और ढेर सारी बातों के साथ में।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अभी लेते हैं कार्यक्रम से विदा। तो दोस्तों फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपनी साथी अंजलि पाराशर को।
1: नमस्कार।
2: तो साथियों सुनना ना भूलिएगा कार्यक्रम गांधी आत्म दर्शन वागड़ रेडियो 90.8 FM पर। नमस्कार।
3: हमरो गरीबों ने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
4: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपने करने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है, एकलस ने हमरो ने हाथे मालूम जावो है, फार्म भरो जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जय वरे अधिकार हमरा अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
3: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो हक मांगो, जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं वागड़ की आवाज और आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

स्वागत रेडियो 90.8 एफएम प्रस्तुत करता है जनता जनार्दन का जनता के लिए कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। जी हां साथियों, भारतीय संविधान से जुड़ी तमाम जानकारियों को समुदाय तक पहुंचाने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इसका उद्देश्य यही है कि सभी लोग संविधान की विकास गाथा को जानें और उसके उद्देश्यों को समझें।

0: हर जाति पंथ और मजहब का करता है सम्मान, स्वतंत्र रखे जग को सदा ऐसा है अपना संविधान।
1: जी हाँ, भारत की हर समस्या का है जहाँ समाधान, स्वतंत्र रखे जो हम सबको वो है अपना संविधान।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि जागृति जी, पिछले रविवार विशेष कार्यक्रम में हमने जाना था कि किस तरीके से संविधान सभा अल्पसंख्यक कहे जाने का विरोध हुआ था, ऐतिहासिक अन्याय के शिकार आदिवासियों को लेकर हमने चर्चा की थी। यही बात करते हैं संविधान आदिवासी पहचान की तलाश के बारे में।
1: जी हाँ, आदिवासी पहचान की तलाश को लेकर अंजलि हम बात करें तो आदिवासी समाज के जीवन का मूल आधार जमीन और अन्य प्राकृतिक संसाधन रहे हैं।
2: जी जी।
1: आजादी के समय से ही यह विचार रखा जाने लगा था कि देश की प्रगति के लिए उद्योग लगाए जाएंगे, इसके लिए जमीन की जरूरत होगी, अतः जमीन सरकार की संपत्ति होगी।
2: जी जी।
1: दूसरी ओर संविधान सभा में प्रावधानों पर बहस के दौरान भी आदिवासी सदस्यों ने बार बार इशारा किया कि संविधान में आदिवासियों के हकों और उनकी परंपरागत व्यवस्थाओं के लिए व्यापक प्रावधान किए जाने चाहिए। संविधान सभा की उपसमिति ने देश में आदिवासियों की स्थिति और खास तौर पर उत्तर पूर्व में निवासरत समाज की स्थिति और मांगों का अध्ययन किया। संविधान में पांचवी और छठी अनुसूची को मुख्य रूप से इसीलिए शामिल किया गया, प्रावधान क्या है ये तो संविधान की किताब में दर्ज है अंजलि, किंतु इस विषय पर होने वाली बहस को जानना आवश्यक है।
0: जी बिल्कुल। इसी के साथ जागृति जी, हम देखते हैं कि 30 अप्रैल 1947 को संविधान सभा में जयपाल सिंह ने कहा कि मैं आदिवासी दृष्टिकोण से इस बात पर जोर देना चाहता हूँ कि भूमि आदिवासियों के जीवन का आधार है। मेरा ख्याल है कि असम के प्रधानमंत्री मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि जब तक आदिवासियों को यह आश्वासन नहीं दिया जाता है कि उन्हें जो संरक्षण प्राप्त है उसमें इस धारा से कोई प्रभाव न पड़ेगा, तब तक उन्हें तथा उप समितियों को पृथक तथा आंशिक रूप से पृथक प्रदेशों में जाना असंभव हो जाएगा। मुझसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य इस बात पर जोर दे चुके हैं कि अभी काफी भ्रम फैल चुका है। मैं तो चाहता हूँ कि उप समितियों की रिपोर्ट मिलने तक इस धारा को स्थगित कर दिया जाए। उदाहरण के लिए कहा जाता है कि हम जहाँ भी गए यानी कि अध्ययन के लिए उप समिति के रूप में हैं, वही यही कहा गया है कि अभी कई वर्षों तक आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल नहीं किया जाना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: यदि मैं इन संरक्षण के लिए लड़ता हूँ तो अधिकांश सदस्य हंसेंगे। आज ही सुबह एक मित्र ने मुझसे कहा था कि आप चाहते हैं कि सृष्टि के अंत तक आदिवासियों की भूमि की बेदखली न हो सके, आदिवासियों की महत्वपूर्ण मांगों का कैसे मजाक उड़ाया जाता है, यह उसका उदाहरण है। हम समानता की बातें करते रहे हैं, ऐसी बातें बड़ी अच्छी लगती हैं, किंतु जब आदिवासियों की भूमि पर अधिकार का प्रश्न उठता है तो मैं भेदभाव की मांग करता हूँ।
1: जी हाँ।
0: इसलिए मैं अनुरोध करता हूँ कि उन समितियों की रिपोर्ट प्राप्त होने तक जो आदिवासियों के संबंध में विचार करेगी, इस धारा पर विचार स्थगित रखा जाए, क्योंकि वह आदिवासियों के अधिकारों को प्रभावित करेगा और इस संबंध में कोई भी निश्चित न किया जाए कि चाहे यह निश्चित कितना भी अस्थायी क्यों न हो।
1: बिल्कुल अंजलि, अगर पांचवी अनुसूची को लेकर हम बात करें तो संविधान में पांचवी अनुसूची के जरिए आदिवासी क्षेत्रों अनुसूचित क्षेत्रों को लेकर एक व्यवस्था बनाने की पहल की गई है।
0: जी बिल्कुल।
1: यह इसलिए किया गया है ताकि आदिवासी या आदिम जनजाति समुदाय के साथ होते आए अन्याय और उपेक्षा को खत्म किया जा सके और उनकी अस्मिता की सुरक्षा के साथ वे अपनी व्यवस्थाएं भी बरकरार रख सके।
0: जी जी।
1: इसके तहत आदिम जनजाति मंत्रणा परिषद के गठन की व्यवस्था की गई। संविधान सभा में इस पर बहस के दौरान एवी ठक्कर ने कहा, ये पहला मौका है जब एक ऐसी परिषद को अस्तित्व में लाने की बात कही गई है। जब कबायली जातियों के उत्थान के लिए महात्मा गांधी का आंदोलन चल रहा था, उस समय भी शासन को लेकर कहीं उन जातियों की कोई समिति गठित नहीं की गई थी। मैं असम कबायली समिति के अध्यक्ष गोपीनाथ बारदोलोई के साथ पहली बार लूसाई और नागा पहाड़ियों में पहुंचा। मेरे जैसे आदिम की बात तो जाने दीजिए, असम के प्रधानमंत्री भी इससे पहले कभी उन इलाकों में नहीं पहुंचे थे।
0: जी बिल्कुल। इसी के साथ हम देखते हैं कि प्रस्ताव जागृति जी यह था कि आदिवासी मंत्रणा परिषद उन विषयों पर विचार करेगी जो उसे सौंपे जाएंगे, परंतु युधिष्ठिर मिश्र ने कहा कि आदिम जाति मंत्रणा परिषद को यह अधिकार भी होना चाहिए कि वह अपनी सोच और जरूरत के मुताबिक विधियों पर विचार कर और मंत्रणा करके सरकार को सुझाव दे सके। कहीं ऐसा न हो कि राज्यपाल या शासक उसे ऐसे विषय मंत्रणा के लिए सौंपे ही नहीं जिसका अनुसूचित जनजातियों पर असर पड़ता हो।
1: जी हाँ।
0: यदि ऐसा हुआ तो पूरा उद्देश्य खत्म हो जाएगा। सभा में यह भी विचार था कि आदिवासी क्षेत्रों के कल्याण का काम पूरी तरह से केंद्र के ही अधीन कर दिया जाए। इस पर भी बहस हुई कि यह तय है कि कई आदिवासी अनुसूचित क्षेत्र के बाहर भी रहते होंगे। मंत्रणा परिषद उनके कल्याण के बारे में कैसे काम करेगी? जयपाल सिंह मुंडा का सुझाव था कि एक पक्का उपबंध के अनुसार राज्यपाल के लिए यह अनिवार्य हो कि वह अपनी रिपोर्ट में यह भी बताए कि सभी अनुसूचित जातियों के लिए यानी कि हर राज्य के सभी पिछड़े हुए लोगों के लिए क्या किया गया है।
1: बिल्कुल अंजलि। तो अंजलि, जैसा कि कार्यक्रम हम और हमारे संविधान में हमारी बातें बहुत ही अच्छी चल रही है तो ये बातें निरंतर यूं ही चलती रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में। जैसा कि पांचवी अनुसूची में हम ढेर सारी बातों को जान रहे थे, यही बात करें तो समाज के वंचित तबकों जैसे कि आदिवासी समाज के लिए किए जाने वाले विशेष प्रावधानों के संदर्भ में कुछ आदिवासियों का जागृति जी मानना था कि आदिवासी दलितों के लिए विशेष प्रावधान करने से भेदभाव स्थायी रूप से लेगा। विश्वनाथ दास का कहना था कि हमने 40 साल तक सांप्रदायिक विष को दूर करने की कोशिश की, जो ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1909, 1919 और 1935 में प्रविष्ट कराया था। इस बुराई को दूर करने में देश को विभाजन की भारी क्षति उठानी पड़ी।
1: बिल्कुल।
0: पर अब हम क्या कर रहे हैं? संविधान में आदिम जाति मंत्रणा परिषद में उपबंध करके हम एक नया जहर पैदा कर रहे हैं। बेहतर होगा कि आदिवासियों के विकास के लिए जमीन की जरूरत है तो जमीन दी जाए, समुन्नति संबंधित योजनाओं की जरूरत है तो उसके लिए धन की व्यवस्था भी की जाए।
1: बिल्कुल। अगर इसी के साथ सामाजिक विविधता और छठी अनुसूची के बारे में हम बात करें, ये एक शाश्वत प्रश्न है कि आदिवासी का मतलब क्या है? एक ही समुदाय है या उसके भीतर व्यापक विविधता है? वास्तव में आजादी के समय आदिवासी समुदाय के भीतर 177 जातियां पहचानी जा चुकी थी, जो देश के अलग अलग प्रांतों में और अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में निवास कर रही थी।
0: जी जी।
1: आज भी यही स्थिति है, लेकिन भारत की व्यवस्था आदिवासियों की पहचान और अस्मिता को स्वीकार्यता दे नहीं पाई।
0: जी बिल्कुल जागृति जी, आपने सही कहा। हम देखते हैं कि K.M. मुंशी का कहना था कि उनका ख्याल है कि सभी कबायली जातियां जो हर प्रांत में 30 से 50 वर्गों में विभक्त है और जिनको वे आदिवासी कहते हैं, वे सब एक समुदाय के अंग है। अपने प्रांत के बारे में जो कुछ जानकारी रखता हूँ उसके आधार पर मैं ये कहूँगा कि उनका यह ख्याल बिल्कुल गलत है। हर प्रांत में अपनी अलग अनुसूचित जनजातियाँ हैं, जो नस्ल के ख्याल से, भाषा के ख्याल से, सामाजिक एवं धार्मिक रूढ़ियों के ख्याल से एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं, और समता की कोई बात इसमें नहीं पाई जाती। मेरे प्रांत में दुबला, भील, कोली, बर्दा, गोंड जनजातियाँ हैं। संविधान के अनुसार सभी आदिवासी हैं, किंतु ये सब एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। इन सबको एक समान स्तर पर लाने के लिए भिन्न भिन्न उपाय करने होंगे।
1: जी हाँ।
0: इन सबको एक समुदाय मानना न केवल असत्य बात होगी, बल्कि ऐसा करना तो इन जातियों के लिए सर्वथा अहितकर होगा। हमें इनकी पहचान और संस्कृति को समुन्नति करने में मदद करते हुए इन्हें देश के राष्ट्रीय जीवन में भी अधिकाधिक सहयोग करने के लिए उत्साहित करना है।
1: जी हाँ।
0: यह न होना चाहिए कि राष्ट्र से असंबद्ध होकर ये लोग पृथक पृथक वर्गों के रूप में या छोटे छोटे जनतंत्र के रूप में स्थायी होकर यहाँ रहे।
1: बिल्कुल। इसी के साथ साथ विविधता, संस्कृति और भूगोल से आदिवासी पहचान का जुड़ाव छठी अनुसूची पर चर्चा के समय भी उभर कर आया। असम की बात करते हुए गोपीनाथ बारदोलोई ने सभा को बताया कि छठी अनुसूची के मसौदे की पृष्ठभूमि को जानना जरूरी है। आपको ये पता नहीं है कि ब्रिटिश सरकार का शासन और विदेशी

0: प्रचारकों की कार्यवाही सदा साथ साथ चलती थी। इन पर्वतीय क्षेत्रों का मैदान से कोई संपर्क न था। देश की स्वाधीनता तक यही स्थिति थी और तब तक विदेशी शासकों का वहाँ पूरा नियंत्रण था। युद्ध काल में तत्कालीन प्रशासकों और अधिकारियों ने इन आदिम जनजाति के लोगों में अलगाव और उपेक्षित होने की भावना भर दी और उन्हें आश्वासन दे दिया कि युद्ध के अंत में वे स्वतंत्र राज्य बनाकर अपने घर का स्वयं प्रबंधन करेंगे। उन्हें विश्वास दिला दिया गया कि समस्त पर्वतीय क्षेत्रों का एक प्रांत बना दिया जाएगा और किसी अनुत्तरदायी राज्यपाल के अधीन रख दिया जाएगा। सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या एकीकरण के प्रयोजन के लिए शक्ति के उपाय असम राइफलों और सैनिक बलों के प्रयोग होने चाहिए या ऐसे उपाय अपनाए जाने चाहिए जिनसे इन लोगों में हार्दिक सहयोग उत्पन्न हो और इन क्षेत्रों की शासन व्यवस्था बन सके।
1: जी बिल्कुल। इसी के साथ हम देखते हैं जागृति जी कि यह उल्लेख करना जरूरी है कि इन क्षेत्रों में इन जातियों में बहुत अच्छी संस्थाएं हैं, बहुत झगड़े सुलझाने वाली अच्छी प्रणालियां हैं, लोकतंत्र है, गाम्य प्रशासन है। दूसरे शब्दों में वे एक प्रकार की कह सकते हैं कि स्वायत्तता का उपयोग कर रहे हैं जिसको हमारी समिति के विचार में नष्ट करने की बजाय बनाए रखना चाहिए।
0: जी हाँ,
1: सुशासन के लिए जिस वस्तु की आवश्यकता है वह वहाँ पहले से ही है। हत्या जैसी वारदात तभी है जब एक उपजाति की दूसरी उपजाति से शत्रुता होती है।
0: बिल्कुल।
1: इस लोगों में वंश परंपरा से सामूहिक घृणा की भावना होती है। जब हमारे सामने प्रश्न था कि क्या हम बल प्रयोग करके उसमें शत्रुता तथा घृणा का भाव पैदा करें या सद्भाव तथा प्रेम द्वारा शासन के विस्तृत सिद्धांतों के अंतर्गत लाएं, हमने बाद वाला विकल्प चुना। यह मान्यता भी थी कि यदि उत्तरी पूर्व क्षेत्रों में पारंपरिक व्यवस्था के मुताबिक शासन करने के लिए स्वायत्तता दी गई तो यह क्षेत्र भारत के साथ ही नहीं रहेगा।
0: बिल्कुल।
1: परंतु वास्तविकता यह है कि उत्तरी पूर्वी भारत में सांस्कृतिक विविधता तो थी ही, साथ ही ब्रिटिश शासन ने उसमें अलगाव की भावना का बीज भी बो दिया था।
0: जी हाँ बिल्कुल अंजलि, रोहिणी कुमार चौधरी ने तर्क दिया कि अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों को अपनी जरूरत के मुताबिक गढ़ा है। अंग्रेजी के माध्यम से उन्हें अलग किया गया है, अंग्रेजों की उनकी व्यवस्था खत्म कर दी और अब डॉक्टर अंबेडकर छठी अनुसूची के माध्यम से ब्रिटिश प्रणाली का ही अनुसरण कर रहे हैं। यदि आप उन्हें अलग रखना चाहते हैं तो वे बर्मा यानी कि वर्तमान म्यांमार से मिल जाएंगे, तिब्बत से मिल जाएंगे, पर वे शेष भारत से नहीं मिलेंगे।
1: जी बिल्कुल।
0: साथ ही बात भी स्पष्ट की गई कि आदिवासियों और उत्तर पूर्वी भारत के समाज को हिंदू या मुसलमान मानने की गलती नहीं की जानी चाहिए। इनकी अपनी विशिष्ट पहचान और संस्कृति है। इस बिंदु को सफाई के साथ रखते हुए अंजलि, संविधान सभा के सदस्य रेवरेंड JJM निकलस राय ने कहा, वे उत्तर पूर्वी राज्य के आदिवासी शेष भारत से भिन्न है, वे कभी हिंदू या मुस्लिम राज्य में नहीं रहे।
1: जी।
0: उनके अपने नियम है, भाषा है, न्यायालय है और संस्कृति है। आदिम जातियों को शत्रु मानने का मतलब है कि हम उन्हें जान ही नहीं पाए। मानव प्रकृति ही ऐसी है, जब हम किसी से कुछ करवाने के लिए बल प्रयोग करते हैं तब वह सहायता लेने के लिए किसी और के पास दौड़ता है। यदि मित्रता और एकता की भावना विकसित करते हैं तो संबंध स्थापित होता है। यदि असम या अन्य क्षेत्रों को बल प्रयोग से भारत में मिलाएंगे तो परिणाम स्वरूप ये पहाड़ी आदिम जनजाति भारत से अलग हो जाएगी।
1: जी। इसी के साथ जागृति जी, हम देखते हैं कि हर समझदार व्यक्ति ये मान रहा था कि आदिवासी और उत्तरी पूर्वी इलाकों को भारतीय बनाने के लिए बल प्रयोग करना बड़ी मूर्खता होगी। जरूरत है उनके साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार करते हुए उनकी संस्कृति को मान्यता देने की।
0: जी हाँ,
1: वास्तव में भारत के संविधान की पांचवी और छठी अनुसूची आदिवासी आदिम जाति समुदाय की अस्मिता की सुरक्षा करते हुए भारत के समाज का एक अभिन्न अंग बनाने के मकसद से लागू की गई थी। यह एक स्थापित तथ्य है कि आदिम जाति समुदाय प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर रहता है, अतः यह जरूरी रहा कि आदिम जातियों के निवास स्थान, रहवास वाले स्थानों के संसाधनों को अन्य क्षेत्रों के समुदायों के अतिक्रमण या उनके व्यावसायिक दखल से संरक्षित किया जाए।
0: जी हाँ,
1: आज भी यह बहुत बड़ी जरूरत है। वर्तमान संदर्भों में यह दिख रहा है जागृति जी कि जितनी परिपक्वता संविधान निर्माताओं ने दिखाई थी उतनी समझ भी आज की व्यवस्थापक और सरकारें नहीं दिखा पा रही है। पूंजीवादी और सांप्रदायिक सोच ने राजनीतिक दलों और सरकारों को आदिवासियों के साथ शोषण की व्यवस्था को एक मुकाम तक पहुंचाने का काम किया है।
0: बिल्कुल।
1: एक तरफ तो विकास के नाम पर उन्हें जमीन जंगल से बेदखल किया गया है तो दूसरी तरफ उनकी पहचान को हिंदू या ईसाई पहचान में मिलाने की भी भरकस कोशिश की गई है। वास्तव में आदिवासियों के लिए आज भी सवाल विकास का नहीं अस्मिता का ही है।
0: बिल्कुल।
1: संविधान निर्माण के दौरान हुई बहसों से अंदाजा लगाया जा सकता है साथियों कि समुदाय किस हद तक उपेक्षित था। संविधान ने उन्हें उनकी मूल पहचान लुटाने का प्रयास किया, इसमें कितनी कामयाबी मिली यह बहस का विषय है।
2: जी बिल्कुल। तो जागृति जी, जैसा कि आज कार्यक्रम हम और हमारा संविधान में हमारी बहुत अच्छी बातें रही संविधान और आदिवासियों को लेकर, अगले रविवार को हमारी मुलाकात होगी संविधान और चुनाव प्रणाली के बारे में। तब तक के लिए हमारे श्रोता साथियों से हम कार्यक्रम में विदा लेना चाहेंगे।
1: जी हाँ साथियों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम हम और हमारा संविधान। अगले रविवार को फिर मुलाकात होगी संविधान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।
3: सेहत नु राज हूँ है बोन, असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की परबात नी शुरुआत पानी तकी करो, थोड़ू सू व्यायाम ने तात काड़ी नी जीवन जीवा, फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा, जंक फूड तकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू, आज जीवन नो सहारो है, आज थकी आ राज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो, क्योंकि आज है सेहत नु असली राज।
1: वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
4: हमरो घनी बोले पूछे है जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
5: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपे करने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलेस ने हमरा ने हाथे मनी में जावू है, फार्म भरो जानकारी लो, जमी माते नाम लकड़वो काटो नती, जई वरे अधिकार हमरा अपनावे, जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
4: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो हक मांगो, जमीन कागज माते अपनो नाम लकाड़ो।
1: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
0: नमस्कार, आओ भाइयों और बहनों, सुनते हैं कार्यक्रम दादी माँ की रसोई।
1: नमस्कार साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.88 FM। मैं हूँ आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर। तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी आप सभी का कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में, जहाँ हम बात करते हैं घर की रसोई में बनने वाले स्वादिष्ट पारंपरिक और पौष्टिक व्यंजनों की। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गणेश जी इन दिनों हमारे घर के आंगन में विराजमान है, कहीं गणपति की स्थापना हुई है, कहीं पूजा अर्चना हो रही है, तो कहीं घर की महिलाएं और बच्चे मिलकर भगवान गणेश के लिए प्रसाद तैयार कर रहे हैं। और जब भी हम गणेश जी का नाम लेते हैं तो एक ऐसे मिठाई का नाम हम जरूर याद करते हैं जिसे गणपति बप्पा का प्रिय प्रसाद माना जाता है, और वो है मोदक। इसलिए श्रोता साथियों, आज कार्यक्रम दादी माँ की रसोई के माध्यम से हमने सोचा कि क्यों न इस गणेश उत्सव के मौके पर हम घर पर ही स्वादिष्ट मोदक बनाएं, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हम इन्हें थोड़े पौष्टिक अंदाज में कैसे तैयार कर सकते हैं। आज हम बनाएंगे गुड़ नारियल और तिल के मोदक, जिसमें साथियों हम इस्तेमाल करेंगे घर में आसानी से मिलने वाली सामग्री, और मोदक को तलने के बजाय हम भाप में पकाएंगे। तो आज की हमारी रसोई में गणेश उत्सव की खुशबू भी होगी, दादी माँ की पारंपरिक सीख भी होगी साथियों, और स्वाद के साथ सेहत की बात भी होगी। तो बातें ढेर सारी होंगी, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में हम आपको पहले गीत संगीत के साथ मनोरंजन करवाते हैं, और जैसा कि हम सभी के घर पर गणपति बप्पा तो विराजमान है ही, तो आइए श्रोता साथियों पहले गणपति वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में आपके अपनी दोस्त कशिश पारशर के साथ में।

दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको आज के इस कार्यक्रम में हमारी किस विषय पर आपसे बातचीत रहने वाली है ये तो बता ही दिया था। जैसा कि बताया था कि आज हम बनाने वाले हैं गुड़ तिल के मोदक। क्योंकि दोस्तों, गणेश उत्सव सिर्फ पूजा और प्रसाद का अवसर ही नहीं होता, बल्कि परिवार के साथ मिलकर अपनी परंपराओं और खान पान की अच्छी आदतों को आगे बढ़ाने का भी समय होता है। तो चलिए सबसे पहले आप जानते हैं कि आज के इन खास मोदकों के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि हमारी रसोई की ये साधारण सी सामग्री हमारे भोजन में क्या महत्व रखती है। लेकिन दोस्तों, सामग्री जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि आज के हमारे इस सामग्री की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसमें मिठास के लिए हम गुड़ का इस्तेमाल करने वाले हैं, और भरावन के लिए नारियल और तिल का। आप चाहें तो इसमें थोड़े कटे हुए मेवे भी डाल सकते हैं, और साथ ही हम इसमें घर में मिलने वाले गेहूं का आटा इस्तेमाल करने वाले हैं। और एक और खास बात यह है कि हम मोदकों को भाप में पकाने वाले हैं साथियों, इससे इन्हें बनाने में ज्यादा तेल या घी का इस्तेमाल भी हमें नहीं करना पड़ेगा। तो आइए अब जानते हैं आज के इस कार्यक्रम में हमारी खास रेसिपी की सामग्री के बारे में। तो अब सबसे पहले श्रोता साथियों, आप कॉपी और पेन ले लीजिए, और मैं आपको बताऊंगी कि आपको किन किन चीजों की आवश्यकता होगी। साथियों, सबसे पहले हम बाहरी परत बनाने के लिए सामग्री लिख लेते हैं। तो आपको गेहूं का आटा लेना है, थोड़ा सा घी लेना है, पानी आप आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल करेंगे, और उसमें एक चुटकी नमक आप इस्तेमाल करेंगे साथियों। तो ये तो हमने बाहरी परत के लिए, यानी कि मोदक बनाने के लिए जो हमें आटा चाहिए होगा उसको गूंथने के लिए क्या चीजें चाहिए होगी ये पता कर लिया। अब यही बात करते हैं भरावन की। तो साथियों, भरावन करने के लिए आपको कद्दूकस किया हुआ एक नारियल चाहिए होगा। इसके बाद श्रोता साथियों, आप गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप गुड़ ले रहे हैं तो आप इसका उपयोग स्वाद अनुसार भी कर सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि कुछ लोगों को मीठा ज्यादा पसंद होता है और कुछ लोगों को मीठा कम पसंद होता है, इसलिए आप अपने स्वाद के अनुसार गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आप तिल लेंगे, जो कि 2 बड़े चम्मच आप लेंगे। इलायची पाउडर आप लेंगे श्रोता साथियों 1 छोटा चम्मच। कटे हुए बादाम या मूंगफली भी कद्दूकस की हुई आप यहाँ पर ले सकते हैं। साथ ही आपको मोदक को पकाने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिए होगा, भाप में पकाने का बर्तन चाहिए होगा। अगर आपके पास कोई बर्तन नहीं है तो आप इडली का स्टैंड भी इस्तेमाल में ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सामग्रियाँ जो कि हमारे घरों में सामान्य रूप से हमें मिल जाएंगी। अब बात करते हैं कि इन सामग्री के फायदे क्या होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के आटे की। दोस्तों, गेहूं के आटे में कार्बोहाइड्रेट के साथ साथ प्रोटीन भी होता है, और साथ ही हमें फाइबर भी मिलता है जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी फायदेमंद है। साथ ही जैसा कि हम इसमें नारियल का इस्तेमाल भी करने वाले हैं, तो जो नारियल है वो हमारे पारंपरिक भोजन का हिस्सा रहा है साथियों, ये तो हम सभी जानते हैं। इसमें वसा भी होता है, फाइबर भी होता है, और कुछ खनिज भी पाए जाते हैं। साथ ही इसका स्वाद और खुशबू मोदक के भरावन को और भी खास बना देंगे। अगर तिल की बात करूं, तो छोटे से दिखने वाले तिल में साथियों स्वस्थ वसा होता है, प्रोटीन होता है, और कैल्शियम की मात्रा भी भरपूर होती है। अगर गुड़ की बात करें तो गुड़ के फायदे तो हम सभी जानते हैं। गुड़ का स्वाद मीठा होता है, इसमें कुछ खनिज जरूर होते हैं, लेकिन हमें यह बात याद रखनी है कि गुड़ भी चीनी का एक बहुत अच्छा स्रोत है, इसलिए श्रोता साथियों इसे स्वास्थ्यवर्धक चीनी समझकर हम अधिक मात्रा में नहीं ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो हो गई हमारी सामग्री और उसके फायदे क्या हो सकते हैं। अब आगे कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कि हम मोदक कैसे बना सकते हैं। तो बातें और भी होंगी, लेकिन अभी मनोरंजन कर लेते हैं एक और गीत के साथ में। तो आप बने रहिएगा कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में, और सुनते रहिएगा आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारे कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में हमारे स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधि की ओर। जैसा कि गीत से पहले मैंने आपको श्रोता साथियों मोदक बनाने के लिए हमें किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होगी ये तो बता दिया था, साथ ही जिन सामग्री का हम इस्तेमाल करने वाले हैं उसके क्या क्या फायदे हैं ये भी हम जान पाए थे। तो अब श्रोता साथियों समय आ गया है असली रसोई का। चलिए बिल्कुल आसान तरीके से बनाते हैं हमारे गुड़ नारियल तिल के मोदक। दोस्तों सबसे पहले तो हमें भरावन तैयार करना होगा। तो भरावन तैयार करने के लिए आप सबसे पहले कढ़ाई को हल्का गर्म करें, इसमें तिल डालकर धीमी आंच पर हल्का इसे भूने। ध्यान रखें दोस्तों तिल जलना नहीं चाहिए। जब खुशबू आपको हल्की हल्की आने लगे तो गैस बंद कर दें। अब श्रोता साथियों इसी तरह नारियल को भी आपको हल्का गर्म कर लेना है। इसके बाद कढ़ाई में कद्दूकस किया हुआ गुड़ डालें, धीमी आंच पर इसे पिघलने दें। जब दोस्तों गुड़ थोड़ा पिघल जाए तो इसमें आप नारियल डालें। अब इसमें भुना हुआ तिल डालेंगे और सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथियों जब सभी चीजें एक साथ मिल जाएं अच्छी तरीके से तो आप ऊपर से इलायची पाउडर डालेंगे। अगर आप मेवे डालना चाहते हैं तो इस समय थोड़े कटे हुए बादाम या मूंगफली भी आप डाल सकते हैं। अब इस मिश्रण को ज्यादा देर तक नहीं पकाना है, बस इतना पकाएं कि सामग्री आपस में अच्छी तरह मिल जाए। तो दोस्तों ये तो हमारा मिश्रण बनकर तैयार हो गया। अब यही हमारी दादी माँ की एक छोटी सी सीख है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। उनका कहना है कि गुड़ वाले भरावन को बहुत ज्यादा गीला नहीं रखना होता है, वरना मोदक बनाते समय परत फट सकती है। अब श्रोता साथियों आप भरावन को एक प्लेट में निकाल कर थोड़ा ठंडा होने दें। तो ये तो हमारा भरावन बनकर तैयार हो गया। अब हम बनाते हैं मोदक की बाहरी परत। साथियों आपको सबसे पहले एक बर्तन में एक कप गेहूं का आटा लेना है, इसमें एक छोटा चम्मच घी और एक चुटकी नमक डालना है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आपको एक आटा गूंथ लेना है। आटा बहुत सख्त नहीं होना चाहिए और बहुत ढीला भी नहीं होना चाहिए। इसे लगभग आपको 10 मिनट तक ढककर रख देना है ताकि आटा थोड़ा नरम हो जाए। अब श्रोता साथियों आटे की छोटी छोटी लोइयां आप बनाकर तैयार कर लें। हर लोई को हाथ या बेलन से हल्का पतला बेलें। अब इसके बीच में तैयार किया हुआ नारियल और गुड़ का जो भरावन है वो आप रखें। इसके किनारों को अंगुलियों से मोड़ते हुए ऊपर की तरफ बंद कर लें। अगर आपको साथियों पारंपरिक मोदक का आकार बनाना मुश्किल लगे तो आपको चिंता नहीं करनी है, आप इसे छोटी छोटी पोटली या गोल मोदक का आकार भी दे सकते हैं। अब धीरे धीरे आप इसी विधि को अपनाते हुए छोटी छोटी लोइयों से मोदक बनाकर तैयार कर लें। अब साथियों हमारे मोदक बनकर तैयार हैं, लेकिन अभी भाप में पकाना बाकी है। इसके लिए आप एक बर्तन में पानी गर्म करें, उसके ऊपर छलनी या इडली स्टैंड भी रख सकते हैं, उसे हल्का सा घी लगाकर चिकना कर लें। अब मोदक को थोड़ी थोड़ी दूरी पर रखें, फिर ढक्कन लगाकर इन्हें लगभग 10 से 15 मिनट तक भाप में आप पकाएं। साथियों जब बाहरी परत अच्छी तरह पक जाए और मोदक का आकार सेट हो जाए तो आपको गैस बंद कर देनी है और फिर इसे थोड़ा ठंडे होने के लिए आपको रख देना है। फिर आप देखेंगे कि हमारे गर्मा गर्म गुड़ नारियल तिल के मोदक बनकर तैयार हैं। तो दोस्तों ये तो मोदक बनकर तैयार हो गए। आप इसे हल्का गर्म या हल्के ठंडे भी परोस सकते हैं। इन्हें बनाने के बाद बहुत देर तक खुले में रखने के बजाय साफ और ढके हुए बर्तन में आप इसे रखें। तो श्रोता साथियों ये तो हमारे मोदक बनकर तैयार हो गए। आगे कुछ छोटी मोटी बातें और भी हैं जो बनी रहेंगी, लेकिन अभी मनोरंजन करते हैं एक और पैरेस से गीत के साथ में।

तो दोस्तों इस गीत के बाद फिर से रुक करती हूँ कार्यक्रम में। जैसा कि गीत से पहले साथियों हमारे पारंपरिक मोदक बनकर तैयार हो गए थे, तो साथियों आज की इस रसोई हमें एक छोटी सी लेकिन जरूरी बात जरूर सिखाती है कि पौष्टिक भोजन का मतलब हमेशा महंगी चीजें खरीदना नहीं होता। हमारे घर में मौजूद अनाज, तिल, नारियल, दालें, मौसमी फल, सब्जियाँ और दूसरे स्थानीय खाद्य पदार्थों को हम सही तरीके से मिलाकर भी स्वादिष्ट भोजन बना सकते हैं। तो जैसा कि बातें आज के इस कार्यक्रम में साथियों ढेर सारी हमारी आपसे रही, अब जैसा कि बातें ढेर सारी हो चुकी है और समय हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो मैं विदा जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले आपको हमारे कार्यक्रम का पता बताना चाहूंगी। तो दोस्तों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम दादी माँ की रसोई, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। तो दोस्तों फिर से मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम दादी माँ की रसोई में एक नए स्वास्थ्यप्रद व्यंजन विधि के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार साथियों।